इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की नवी तिथि, तदनुसार 31 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आप सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 6:02 पर प्रोग्राम सुप्रभात लेकर आपके साथ रहेंगी ज्योति। सात बजकर 2 मिनट पर समय रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का, लेकर रहेंगे आपके साथ कंचन। 8:02 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आनंद आपके साथ रहेंगी। 9 बजे समय रहेगा हिंदी में मुख्य समाचारों का और 9:02 पर कंचन के साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल की तराने, गाने नए पुराने।

10 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में न्यूज हेडलाइंस और 10:02 पर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक लेकर आपके साथ रहेंगी निहारिका। प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर माला नेगी आपके साथ रहेंगी 11:02 पर और 12 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में न्यूज हेडलाइंस। 12:02 पर समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का निहारिका के साथ।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली FM रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार, 6 बज चुके हैं। पेश है एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किर्गिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर बिश्केक पहुंचे। श्री मोदी आज और कल किर्गिस्तान में आयोजित हो रहे 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। कल 5वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। इस बीच त्रिशूली नदी में कल आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया। अमेरिका ने आज हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया। करीब एक महीने में अमेरिका की यह पहली सैन्य कार्रवाई है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गाइड्स ने बताया कि लॉरक द्वीप पर अमेरिकी हमले में उसके कई जवान और नागरिक मारे गए तथा अन्य घायल हुए हैं। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में CID ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। उड़ीसा में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बालेश्वर, क्योंझर और म्यूरभंज में वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महिला क्रिकेट में भारत ने कल रात दुबई में थाईलैंड को

94 रनों से हराकर T20 एशिया कप 2026 अभियान की शानदार शुरुआत की। जर्मनी लगातार दूसरी बार HIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। कल शाम बेल्जियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सेरे ममन में आयोजित तुआकू मुहरिज ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। और अंत में फुटबॉल में भारत की अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय टीम आज ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में सीरिया के खिलाफ ASC अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत करेगी। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

हे लिसनर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं और मंडे की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। 6:10 हुए हैं और सुप्रभात में आज कौन है आपके साथ? आवाज़ से तो देखो आप पहचाने गए हैं, मैसेज करके भी आप बता देंगे क्योंकि आकाशवाणी रेनबो के इतने सारे रंगों में से हर रोज़ आपसे कोई ना कोई एक नया रंग मिलने आता है। इनफैक्ट हर घंटे वो रंग बदलता है। तो आज है आपके साथ ज्योति और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुप्रभात। और सुप्रभात में आज हम फिर से कोशिश करते हैं आज के दिन को, आज की सोमवार की सुबह को, आज की ज़िंदगी को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने की और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और आसान बनाने की। तो बस बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक और खूबसूरत सा गाना, उसके बाद हम अपनी बातचीत को आगे जारी रखते हैं। आप सुनते रहें सुप्रभात।

क्या आपकी आँख खुल गई है? अगर नहीं खुली है तो बस सुप्रभात सुनना शुरू कर दीजिए। जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी रंग आपको कम लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी मिलाइए एफएम रेनबो से 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ आपको हर घंटे नया रंग मिलता है और उस नए रंग के साथ नया मूड और नई इन्फॉर्मेशन, नया एंटरटेनमेंट भी मिलता है। तो जिंदगी की हम बात कर रहे हैं और आज हो गई है मंडे, सोमवार हो गया है आज है और 31 अगस्त हो चुका है। मतलब ये साल में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। पता लगा आपको जिंदगी कहाँ जा रही है? मगर जिंदगी कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, जरूरी है कि उसमें हमारा बैलेंस बना रहे, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ की अति हो जाए ना तो वो हमारे लिए मतलब एक पॉइजन का काम करती है, वो विष बन जाती है। तो इसलिए लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने आसपास देखेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है ना हमारे आसपास, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग, वो हमको यही बता रही है कि बैलेंस इज सो इम्पॉर्टेंट। और अगर किसी भी चीज़ की एक्सेस हम कर देंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तो वो हमारे लिए बुरी ही बन जाएगी। उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, नुकसान ही होगा। तो किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो विष के समान है। जीवन का ये बहुत बहुत बहुत गहरा सिद्धांत है। खुशी हो या दुख, प्रेम हो या अपेक्षा, काम हो या आराम, जब भी कोई चीज़ अपनी सीमा पार कर जाती है तो वही चीज़ लाभ के बजाय नुकसान देने लगती है। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि जीवन में हर चीज़ की अपनी एक सीमा है। सीमा में वही चीज़ सुख देती है और अगर वो सीमा से बाहर चली जाए तो वही चीज़ दुख का कारण बन जाती है। इसीलिए संतुलन यानी कि बैलेंस ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर अमृत भी लिया जाए तो वो भी विष बन जाता है। इसलिए जीवन में स्वाद नहीं, संतुलन ज़रूरी है। तो क्या आप हैं समझदार?

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं ज्योति आपके साथ कार्यक्रम सुप्रभात। और आपको याद है बचपन में जब आप वो साइकिल चलाते थे, पहली बार जिंदगी में साइकिल चलाना शुरू किया था और उसके साइड में थे वो दो छोटे से वो जो छोटे छोटे पहिए होते हैं जिससे बैलेंस बनता है, जिससे आप गिर नहीं जाते हैं क्योंकि आपको बैलेंस करना नहीं आता है। तो अगर वो आपने नहीं हटाए होते या प्रैक्टिस नहीं की होती तो क्या आप बैलेंस कर पाते? बैलेंस कर पाते हैं तभी तो साइकिल चला पाए, स्कूटर चला पाए और ज़िंदगी में बैलेंस का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आया। तो लाइफ में हर चीज़ जो है ना वो बैलेंस मांगती है। किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाए तो वो बुरी हो जाती है। जैसे कि हमारे आसपास इतने सारे एग्जांपल्स हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लेंगे या शहद जैसे मीठा है और बहुत फ़ायदेमंद होता है लेकिन बहुत ज़्यादा तो वो भी नुकसान करेगा। पानी

कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मगर अगर वही पानी आप बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपके शरीर को दिक्कत होने लगेगी। धूप हमारे लिए ज़रूरी है, मगर याद है आपको कि वो गर्मियों की चिलचिलाती धूप हमें कितना नुकसान करती है, तो इससे ज़्यादा धूप भी हमें अच्छी नहीं लगती है। आराम हमें अच्छा लगता है हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को, मगर वो भी इतना ज़्यादा ना बन जाए कि आप आलसी बन जाएँ। और उसी तरह से आजकल हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिसमें इतनी सारी नॉलेज और इतना सारा एंटरटेनमेंट है, वो एक इतना इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट बन चुका है, गैजेट बन चुका है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों पर स्ट्रेन आएगा, आप थक जाएंगे, आपका आपको फॉगिंग फील हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको बहुत सारा टाइम भी देता है, तो इसलिए जो ज़रूरी है वही करें। इसी तरह से प्यार कितना खूबसूरत है, किसी को आप प्यार करते हैं मगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप प्यार करेंगे तो वो सामने वाले पर्सन के लिए एक घुटन पैदा कर देता है, पोजेशन बन जाता है, तो इसीलिए उसमें भी बैलेंस ज़रूरी है। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, मगर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा हमें लालच आएगा और हमारी शांति छीन देगा। बोलना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बोलना कई बार मुश्किलें पैदा करता है, रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे एक म्यूज़िकल ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोली तो आप शायद बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए ये बातचीत जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं सुप्रभा ज्योति के साथ एक और खूबसूरत सा गाना, आपके और हमारे बीच, ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो।

कुमार सानू की प्यारी सी आवाज में हमने ये गाना सुना, ए काश के हम। और ऐसे कई सारे काश हैं जो हम सबके मन में आते हैं काश हम ये कर लें, काश हम वो कर लें मुझे मीठा बहुत पसंद है और जब मैं खाना शुरू करती हूँ तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ मुझे रुक जाना चाहिए तो उसमें भी बैलेंस ज़रूरी है ताकि मैं बीमार न पड़ जाऊँ और अगली बार मीठे को फिर से इंजॉय कर सकूँ। तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि बोलना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी कई बार रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा कर देता है। अगर आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो भी मनमुटाव होंगे और डिस्टेंस आएगा आपके रिश्तों में। इसलिए बोलना भी ज़रूरी है, सही बोलना भी ज़रूरी है और लिमिटेड बोलना ज़रूरी है। और ज़रूरी बात करने में कैसी परेशानी। और इसीलिए मैं भी आपको उससे जब थोड़ी सी बात करती हूँ उसके बाद एक मैं सॉन्ग प्ले करती हूँ ताकि कोई भी चीज़ एक्सेस ना हो जाए, बैलेंस बना रहे हमारी इन्फॉर्मेशन का, हमारी बातचीत का, दिल से दिल तक की टॉक जो हम करते हैं, बातचीत करते हैं, और हमारे साथ जो म्यूज़िकल सॉन्ग्स होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं उस म्यूज़िक को हम इंजॉय कर सके, तो वो भी हमें बहुत सुकून देते हैं। इतने खूबसूरत गाने हैं, उनके बोल इतने प्यारे हैं, वो हमें इतना कुछ सिखाते हैं। तो बैलेंस बनाना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा जो होती है ना कभी कभी आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा तो देती है, लेकिन अगर इसकी भी अति हो जाए तो इंसान कभी संतुष्ट नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सैटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है कि ओके, अगर हमारे मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं हुई है तो इट्स ओके। क्योंकि इसी बात से लेकर भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं कि हमने इतने साल एक पर्टिकुलर चीज़ को इतनी तैयारी करी, इतना समय दिया और फिर हम उसमें रिजल्ट्स नहीं ला पाए या क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर वो उनको कभी संतुष्टि नहीं होती है। और सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, इसलिए हम कहते थे ना बचपन में कि पढ़ो भी और खेलो भी बैलेंस होना चाहिए। तो बस लाइफ में हर चीज़ बैलेंस मांगती है और हमें देखना है कि हम कहाँ पे डिसबैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि जीवन में समस्या अक्सर चीज़ों के होने से नहीं होती है, उनके ज़रूरत से ज़्यादा होने से पैदा होती है या फिर उनकी कमी से। तो बैलेंस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। चलिए एक और गाना सुनाती हूँ आपको, बहुत खूबसूरत सा, सोनू निगम की आवाज़ में, कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर।

ये जो हमने खूबसूरत सा गाना सुना ये है सोचा ना था मूवी से, और जब मैंने ये मूवी देखी तो मैंने ये सोचा कि इस मूवी को मैंने पहले क्यों नहीं देखा। और ये मूवी इतनी मतलब अमेजिंग है ना, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा सोचा ना था, क्योंकि इसमें जो वो सोचते हैं वो तो होता नहीं है। मतलब आपको छोटा सा मैं बता देती हूँ कि उनके घर वाले चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए, जो मेन लीड में है अभय देओल और आयशा टाकिया, तो उनके घर वाले चाहते थे, दोनों राज़ी थे कि इनकी शादी हो जाए, मगर तब इन दोनों ने शादी नहीं करी। कुछ उनके अपने अलग अलग रीज़न्स थे, और उसके बाद जब घर वाले नहीं चाहते थे कि अब ये शादी ना करें, आपस में जब थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, उसके बाद इन दोनों ने भाग कर शादी कर दी। तो इट्स एन अमेजिंग मूवी, और लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर चीज़ अगर आप कोशिश करेंगे ना सीखने की, तो मतलब ये भी एक एग्जांपल है कि बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है, और रिश्तों में भी प्यार में भी, क्योंकि किसी की परवाह करना बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा या हर समय दूसरे के जीवन को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिश्तों में तनाव हो सकता है। तो इसलिए प्यार में अपनापन हो मगर अधिकार नहीं। इसी तरह से हम जब किसी समस्या पर किसी बात पर विचार करना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि इसका समाधान तो हम खोज ही लेंगे, मगर कभी कभी सोचते सोचते

ज़्यादा हमारा मन उलझ जाता है कि हम इतनी दूर निकल जाते हैं कि वो ओवर थिंकिंग कभी स्टॉप ही नहीं होती है. और आप कभी गौर कीजिएगा कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको रुकना पड़ेगा और आपको कहीं पेपर पर लिखना पड़ेगा अपनी समस्या को. अगर आपने अपनी समस्या सही सही लिख ली तो आपको आधा समाधान तो मिल ही जाएगा. तो इसी तरह से बैलेंस बनाया हमने. हर चीज़ की एक तरकीब है बैलेंस बनाने की. और सोच में हमें फंसे ना रहें, ये भी हमें सोचना है कि हम सोच में ना फंसे रहें. इसी तरह से जैसे हमने बात करी कि आराम भी शरीर और दिमाग को तरोताज़ा करता है, लेकिन हमेशा आराम करते रहेंगे तो हम अपने ज़रूरी काम कब पूरे करेंगे वो तो हमसे बहुत दूर चले जाएंगे. तो इसलिए आराम विराम है मंजिल नहीं. एक और छोटा सा एग्जांपल है हमारी लाइफ में. हमारे आसपास इतनी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, अगर उन्हीं पौधों को हम पानी बहुत ज़्यादा देंगे तो उनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी और जड़ें गल जाएंगी, और कम पानी देंगे तो भी पत्तियाँ सूख जाएंगी और गिर जाएंगी. तो इसलिए हर चीज़ की सही मात्रा ही उसे सुंदर बनाती है, और हमारी इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी ही है. तो कमी परेशान कर सकती है लेकिन अति बर्बाद भी कर सकती है. इसलिए हमारी लाइफ में सबसे ज़रूरी है बैलेंस होना.

है कि जो आज है वो कल हो ना हो, इसीलिए आज के दिन को, आज के मोमेंट को, आज की पूरी ज़िंदगी को हम जितना खुशनुमा हैपनिंग बना सकते हैं वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो आपके मैसेजेस हम ऐसे जुड़े हैं और डॉली लिखती हैं कि बहुत सारे कामों के बीच में टाइम निकालना मैसेज के लिए भी एक बैलेंस है। एब्सोल्युटली बिल्कुल आपने सही कहा, और रेडियो के साथ यही एक फ़ायदा है कि रेडियो सुनते सुनते भी आप अपने काम कर सकते हैं, आपका हाथ नहीं रुकता है कान आपके FM रेनबो पर ही लगे रहते हैं। और इससे अच्छा बैलेंस और क्या होगा कि हम कुछ अपनी पसंद का सुन रहे हैं और अपने दिल से दिल तक का कनेक्शन है, अपने दिल की बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने काम भी कर रहे हैं। और इसी से मुझे याद आया कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैं भी पढ़ाई करते करते FM सुना करती थी और कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से रेडियो में आएंगे, मगर शायद किस्मत में वही था और इसीलिए मैं वो 12th में सुन रही थी। यू नेवर नो आपकी लाइफ में क्या हो, जो आप सोचते हैं वो नहीं होता है, जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है मगर जो हो जाता है ना, और जो अपनी लाइफ हम चलाते हैं उसमें भी हमें बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मैसेजेस हमारे जुड़े हैं, पंकज जुड़े हैं हमारे साथ, उन्हें शो अच्छा लगा और उन्होंने एक अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कल मैंने किसी वजह से बहुत किसी काम के लिए बहुत कोशिश की और फैसला जो आया वो मन को रास नहीं आया और मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने गुस्से में सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और फिर माफ़ी भी मांगी लेकिन दिल को बहुत पछतावा हुआ था। पछतावा हुआ तभी आपने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग के आई थिंक आपके दिल को थोड़ी राहत तो मिल गई होगी। एंड दिस इज़ अ लेसन कि हमें कभी भी रिएक्शन नहीं देना है, रिएक्ट नहीं करना है, सोच लीजिए, थोड़ा सा पॉज दे दीजिए ताकि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि जो हो गया वो तो हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं और हम अगर एक चीज़ हम ज़रूर बदल सकते हैं, FM रेनबो पर हम हमेशा बैलेंस बनाकर रखते हैं कि आप कभी बोर ना हो जाए, तो हर घंटे आपसे एक नया रंग मिलने आता है। तो 7:02 से आपके साथ होंगी कंचन कानन लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR विद lots of useful information and of course music. और उसके बाद 8 फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का सेकेंड आवर। बस आप यूं ही आकाशवाणी रेनबो पूरा दिन सुनते रहें, बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए शेड्यूल्ड हैं और ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं सुप्रभा ज्योति के साथ और समय मिला लेते हैं एक बार 6:52, एक और खूबसूरत सा गाना एंजॉय करते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किर्गिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर बिश्केक पहुंचे। श्री मोदी आज और कल किर्गिस्तान में आयोजित हो रहे 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापक व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान देश के सबसे बड़े राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ द हाईएस्ट डिग्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है। बुधवार को आई भीषण बाढ़ के बाद नेपाल में त्रिशूली 3A समेत कई विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नेपाल में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। कल 5वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। इस बीच त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया। अमेरिका ने आज होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में CID ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बालेश्वर, क्योझर और मयूरभंज में वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महिला क्रिकेट में भारत ने कल रात दुबई में

थाईलैंड को 94 रनों से हराकर टी20 एशिया कप 2026 अभियान की शानदार शुरुआत की। जर्मनी लगातार दूसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। कल शाम बेल्जियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सेरेमन में आयोजित तुआंकू मुहारिज ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। और अंत में फुटबॉल में भारत की अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय टीम आज ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में सीरिया के खिलाफ AFC 2020 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत करेगी। तो ये थे फिल्म रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। एक नई सुबह, नई उम्मीद, एक नए दिन की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ कि जो कल हुआ बहुत अच्छा हुआ और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे अपने पूरे परिवार के साथ और दिल से जुड़े हैं FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। मैं आपके साथ कंचन।

हर सुबह एक नई शुरुआत ने दिन की बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ, उम्मीद के साथ, जोश के साथ और अपनी अपनों का हाथ थाम कर एक नई शुरुआत जीवन के पथ पर। दोस्तों, हर दिन बहुत बहुत खास होता है क्योंकि वो दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज रहता है। हर तारीख हमें अतीत में ले जाती है जब हम खुद को जोड़ते हैं कई घटनाओं से। और आज की तारीख की अगर बात करें तो आज के ही दिन 1956 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी थी। वहीं 1957 में आज के दिन मलेशिया ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, और यानी मलेशिया को आज़ादी मिली थी। और 1962 में ट्रिनिडाड और टोबैगो ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होकर संप्रभुता हासिल की। वहीं 1991 में उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से अलग होने की घोषणा की। और 1997 में ब्रिटेन की राजकुमारी और वेल्स की प्रिंसेस डायना का पेरिस में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। बहुत ही दुखद खबर थी। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके साथ कंचन, और जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

दोस्तों, हर साल 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक पूरे देश में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। ये बात हम लोगों को बहुत तकलीफ देती है ना कि ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं। वाकई बहुत तकलीफ देती है। तो राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का मकसद भी यही है कि नेत्रदान के महत्व के बारे में लोग जागरूक हो सकें और नेत्रदान से जुड़े जो भी मिथक हैं उन्हें दूर किया जा सके। नेत्रदान पखवाड़े में लोगों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि हम समझ सकें कि जीवन के बाद भी किसी को दृष्टि के अनमोल उपहार दिए जा सकते हैं। हम लोग अक्सर नेत्रदान पर चर्चा कहाँ करते हैं, बहुत सारी बातें हम घर परिवार में करते हैं, बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श और चर्चाएं करते हैं, लेकिन नेत्रदान जैसे मुद्दे पर ना तो हम चर्चा करते हैं ना इसके प्रति हम जागरूक होते हैं। नेत्रदान पखवाड़ा का मकसद यही होता है कि परिवार में नेत्रदान पर खुलकर हम चर्चा कर सकें और दाता की इच्छाओं को पहले से हम समझ सकें और समय आने पर किसी ज़रूरतमंद को दृष्टि का अनमोल उपहार बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। नेत्रदान पखवाड़े में हम सभी प्रण लें कि हम नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें और खुद भी नेत्रदान के लिए आगे आएं। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके साथ कंचन। और आज का दिन 31 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन 31 अगस्त 2020 को हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी दुनिया को अलविदा कह गए थे। बहुत लंबा राजनीतिक करियर इनका रहा, 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। पहली बार 1969 में राज्यसभा पहुंचे और 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। वित्त, विदेश और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला और 31 अगस्त 2020 को दुनिया को अलविदा कह गए भारत रत्न प्रणब मुखर्जी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर

0: अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो उनकी रचनाओं के बारे में क्या कहें, उनकी रचनाओं का था संसार हमारे लिए समृद्ध विरासत है। पिंजर, रसीदी टिकट, नीना, काला गुलाब, कोरे कागज, नौ सपने, दाग, 49 दिन, 5 बरस की लंबी सड़क,

मैं तनु फिर मिलांगी कागज़ ते कैनवास। जी आप समझ गए हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमृता प्रीतम की। आज उनकी जयंती है और आकाशवाणी से अमृता प्रीतम जी का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि वो कार्यरत थी आकाशवाणी में और आज एफएम रेनबो पर हम याद कर रहे हैं लेखिका अमृता प्रीतम को उनकी जयंती पर। जिंदगी को अलविदा कहने से पहले अमृता प्रीतम जी ने अपने उपन्यासों, कविताओं और ख़तों में वो सब कुछ लिख डाला जो किसी आम भारतीय महिला के लिए 21वीं सदी के अंत में भी संभव नहीं होगा। गुजरावाला में उनका जन्म हुआ 31 अगस्त 1919 को और अमृता प्रीतम ने हर विषय पर लेखन की। इंसानियत के दर्द, उनकी तकलीफ, मासूम प्रेम की रचनाओं जो हमारे मन को कभी छलनी करती है तो कभी अनकहे प्रेम की प्यास जगाती है उनकी रचनाएं। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

दोस्तों, एक ऐसे डायरेक्टर, एक्टर और गीतकार जो बांग्ला सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले गए, हम बात कर रहे हैं ऋतुपर्ण घोष की। आज जयंती है ऋतुपर्ण घोष की। 31 अगस्त 1963 को जन्म हुआ था इनका कोलकाता में, और बच्चों की फिल्म हीरे अंगठी से करियर की शुरुआत की, और फिल्म 19 अप्रैल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दहन, चोखेर बाली, रेनकोट जैसी उम्दा फिल्म देने वाले ऋतुपर्ण घोष की आज जयंती है, और FM रेनबो पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। अपने 2 दशक के छोटे से करियर में उन्होंने 12 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। FM रेनबो आज उन्हें याद कर रहा है। सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और आज जन्मदिन है बॉलर जवागल श्रीनाथ का और एक्टर राजकुमार राव का। एफएम रेनबो की तरफ से हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और मैं कंचन यहीं पर लेती हूं विदा। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक, फिर मिलेंगे 9 बजे, जुड़े रहिए दिल से।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स,
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का नमस्ते स्वीकार कीजिए। स्पोर्ट्स पल्स का एक और संस्करण लेकर हम हाजिर हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता हमारे पास, लेकिन कोशिश होती है कि गागर में सागर भरी जाए, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें खेलों के मैदान से आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाए, और खेल दुनिया की हर धड़कन को करीब से महसूस करने का नाम है स्पोर्ट्स पल्स। साथियों, खेल का मैदान हमेशा की तरह जीवंत बना हुआ है, रोमांच से भरपूर, एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट चल रहे हैं। कुछ टूर्नामेंट समापन की ओर अग्रसर हैं, कुछ समाप्त हो चुके हैं, कुछ का आगाज होने वाला है, और बहुत ही बिजी स्पोर्ट्स कैलेंडर रहता है साल भर। आमतौर पर जो गतिविधियां होती हैं, जो यूजुअल टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे अगर अब टेनिस का जिक्र करें तो आज की तारीख में अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, उसका आगाज हो चुका है न्यूयॉर्क में फ्लशिंग मीडोज पर। साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है ये। सबसे पहले हम सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के महीने में मेलबर्न में फ्लिंडर्स पार्क पर, उसके बाद बारी आती है फ्रेंच ओपन की पेरिस में रोलां गैरो की लाल बजरी पर, उसके बाद बारी आती है हरी घास की यानी विंबलडन की ऑल इंग्लैंड विंबलडन क्लब में लंदन में, और उसके बाद कारवां आता है न्यूयॉर्क में फ्लैशिंग मीडोज पर। और आखिरी ये जो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है साल का, शुरू से काफ़ी यूनिक रहा है, और अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों को प्राइज मनी बराबर देना या फिर सबसे ज़्यादा प्राइज मनी वाला टूर्नामेंट, इस तरीके की बातें अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के साथ जुड़ी रही हैं। इस बार का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट एक मामले में बड़ा खास है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स डबल्स का जो फॉर्मेट है उसमें परिवर्तन किया गया, और आपको जानकर के हैरानी होगी कि मिक्स डबल्स का जो इवेंट है वो दरअसल समाप्त हो चुका है इस टूर्नामेंट के मेन बोर्ड के जो मुकाबले थे उनके आगाज के पहले ही, और इस बार फॉर्मेट में बदलाव किया गया। जो तीन सेट होते हैं आमतौर पर टेनिस में, उसमें आप सभी जानते हैं कि फैसला होता है 6-2 या 6-3, 6-4 का जो भी स्कोर होगा, टाई ब्रेकर होगा तो 7-6 होगा, लेकिन यहां पर मिक्स डबल्स में जो सेट समाप्त हो रहा था वो 4 के स्कोर पर हो रहा था, यानी पहले जो टीम 4 गेम जीत ले रही थी या खिलाड़ी जीत ले रहा था वो अपने पक्ष में वो सेट कर ले रहा था। अगर 4-4 की बराबरी है तो फिर टाई ब्रेकर होगा और 5-4 पर खेल समाप्त होगा। और एक जो सुपर टाई ब्रेक का नियम है जो मिक्स डबल्स में और डबल्स में अडॉप्ट किया जाता है, जहां पर जो टीम पहले 10 पॉइंट ले लेती है वही जीत दर्ज करती है, तो तीसरा और निर्णायक जो डिसाइडर सेट है वो यूएस ओपन

0: पर हमेशा उतरते हुए नजर आते हैं। एक सेट वो हार चुके हैं, कुछ सीडेड खिलाड़ी हैं जैसे कैमरून नूरी हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है पहले ही दौर में। तो अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो कि इस समय शुरू हुआ है और अगले 10 दिनों तक जो दुनिया भर के टेनिस प्रेमी हैं वो शानदार टेनिस का नमूना देख पाएंगे। इसके अलावा विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता चल रही थी और बेल्जियम और नेदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। दो महाशक्ति जैसे देश हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जगत में, महिला और पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में वहां पर खिताब जीता अर्जेंटीना ने, नेदरलैंड को पराजित किया। पांचवें स्थान पर भारत रहा, बहुत ही क्रेडिटेबल भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन रहा इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा पुरुष टीम, भारतीय पुरुष टीम हॉकी में 8वें स्थान पर रही हॉकी विश्व कप में। जैसा हम लगातार इस प्रोग्राम में आपसे जिक्र करते रहे हैं कि भारत ने विश्व कप हॉकी में एकमात्र स्वर्ण पदक 1975 में जीता था, 1973 में भारत ने सिल्वर मेडल जीता था, 1971 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 3 पदक भारत ने विश्व कप हॉकी में जीते हैं, लेकिन इस बार के संस्करण में पुरुष वर्ग में अपेक्षित प्रदर्शन भारत का नहीं रहा। अब एशियाड होने वाले हैं, यानी एशियाई खेलों का आयोजन जापान में होने वाला है और सितंबर के महीने में, इसी महीने इन खेलों का, इनफैक्ट अगले महीने, क्योंकि आज हम 31 अगस्त को हैं, तो अगले महीने सितंबर के महीने में एशियाई खेलों का आयोजन होना है। और एशियाई खेल भी एक लिहाज से बड़े अहम होते हैं, क्योंकि अगर आप कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतते हैं तो आप ओलंपिक्स के लिए सीधे क्वालिफाई कर जाते हैं। तो भारतीय टीम के लिए वो भी टूर्नामेंट खासा अहम होगा, पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में, जहां पर टीम एक बार फिर अपनी चुनौती पेश करती हुई नजर आएगी। खेलों को लेकर हम सभी जानते हैं साथियों, हमारे देश में बहुत जागरूकता का प्रादुर्भाव पिछले वर्षों में हुआ है और सर्वोच्च नेतृत्व हमारे देश का खेलों में लगातार दिलचस्पी लेता रहा है और उसी का सुपरिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2030 में भारत में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है, 2010 में इससे पहले दिल्ली में ही राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। तो खेलों को लेकर के भारत 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए भी बिड करने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के दौरे पर हैं और उज्बेकिस्तान के दौरे पर जब वो थे तो उन्होंने आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर तो जोर दिया ही, साथ ही खेलों के संबंध में भारत और उज्बेकिस्तान की जो एक रिलेशनशिप है, जो एक रिश्तेदारी है, जो एक नाता है, उसका भी जिक्र किया। क्या किया, क्या कहा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत उज्बेकिस्तान खेल संबंध के बारे में, आइए स्वयं सुन लीजिए।
1: पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी। अगले महीने समरकंद में होने जा रहे चेस ओलंपियाड में इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे थे उज्बेकिस्तान के सिंदारोव और भारत के गुकेश के बीच होने वाले विश्व कप मैच का, जो नवंबर में, प्रिसाइसली डेट्स की बात करें 24 नवंबर से 12 दिसंबर तक जिनेवा में इसका आयोजन होगा। और चूंकि प्रधानमंत्री महोदय उज्बेकिस्तान के दौरे पर थे तो उन्होंने खेलों का भी जिक्र किया आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के अलावा। खेल के मैदान पर अगर हम एक ऑफिशियल इंटरवेंशन की बात करें तो युवा खेल मंत्रालय भी काफ़ी सक्रिय नजर आ रहा है और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री मनसुख मांडविया संडे ऑन साइकिल्स में आपको हमेशा नजर आएंगे। खेल से संबंधित कोई भी आयोजन होगा, चाहे वो राष्ट्रीय खेल दिवस हो, चाहे वो खेलों में फिटनेस की बात हो, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। और इनफैक्ट खेल दिवस के दिन एक क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर। इसके अलावा संडे ऑन साइकिल का एक और संस्करण कल यानी रविवार को संपन्न हुआ और इस समय माननीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं।
2: आज देश में 25,000 से अधिक स्थानों पर 88 संडे ऑन साइकिल एडिशन का प्रारंभ हुआ। देश में साइकिलिंग एक क्रेज बन रहा है। संडे ऑन साइकिलिंग धीरे धीरे धीरे जनता में पैशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान है। तो चलो हम सब युवा साथियों दिन में 1 घंटे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से हटके खेल के मैदान में जाएं, साइकिलिंग करें, खेलें और अपने स्वयं को फिट रखें।
0: तो खेल मंत्री जी कह

0: कहे थे कि खेलों के माध्यम से आप फिट तो रह ही सकते हैं, साथ ही प्रदूषण यानी पोल्यूशन का भी सॉल्यूशन है ये खेल। और जाहिर सी बात है कि अगर आप खेलों पर ध्यान देते हैं, थोड़ा समय डिवोट करते हैं, कुछ फिटनेस के प्रति समर्पित रहते हैं, तो यकीनन आप अपने आप को एक अलग मकाम पर ले जा सकते हैं। कुछ अन्य खेलों की बात करें, इंग्लिश प्रीमियर लीग का जिक्र कर लेते हैं। आगाज हो चुका है नए सीजन का। लिवरपूल नॉटिंगहम फॉरेस्ट के साथ 2-2 से बराबरी पर खेले हैं एनफील्ड पर, और चेल्सी ने ब्राइटन को 4-3 से हराया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल रात को इप्सविच को पराजित किया 5-2 से, जहां ब्रूनो फर्नांडेज ने हैट्रिक लगाई, और लीड्स और ब्रेंटफोर्ड के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। संडरलैंड ने फुलहम को पराजित किया 1-0 से। एक बीच में साथियों, पिछले सप्ताह एक खराब खबर आई भारतीय कंटेक्स्ट में। नीरज चोपड़ा, हमने एशियाई खेलों का जिक्र किया था, नीरज चोपड़ा वहां पर एक सुपर बेट थे भारत के लिहाज से जेवलिन थ्रो में। पिछले 2 एशियाई खेलों में नीरज ने स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन अब वो इंजरी की वजह से एशियाई खेलों से बाहर हो चुके हैं, और ये एक बिग ब्लो कहा जा सकता है भारत के मेडल होप को ध्यान में रखते हुए। एक और अच्छी खबर, भारत की तन्वी पत्री ने बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है, और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन परिदृश्य में जो नए भारतीय खिलाड़ी उभर करके सामने आ रहे हैं उनमें तन्वी शामिल हो चुकी हैं। 2024 में उन्होंने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भी पदक जीता था, उसके बारे में अगर समय मिलेगा तो ज़रूर हम बात करेंगे। क्रिकेट का जिक्र कर लेते हैं, भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का समापन हुआ, और ये श्रृंखला 1-0 से भारत ने जीतने में कामयाबी हासिल की। पहला टेस्ट मैच जीता, दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर उसे पहुंचना है तो ये दोनों टेस्ट मैचेस जीतने ज़रूरी थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और इस श्रृंखला में भारत का डोमिनेंस तो रहा, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच बड़े ग्रिटी परफॉर्मेंस के साथ श्रीलंका ने ड्रॉ कराने में कामयाबी हासिल की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत तलाश रहे थे, वो तो उनको मिल गई, लेकिन 2-0 की जीत हासिल नहीं हुई। ये हैं शुभमन गिल।
1: उनके बैट्समैन बहुत अच्छा खेले। जनरली जब आप डे 3-4-5 में खेलते हैं, हमको जो लगा जो मोड ऑफ डिसमिसल थे, LBW और बोल्ड तो बिल्कुल गेम से बाहर था, क्योंकि जो बॉल घूम रही थी वो बहुत ज़्यादा स्लो और बाउंस लेके घूम रही थी। तो एक ही मोड ऑफ डिसमिसल बचता अगर बैट्समैन बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं, वो है या तो स्लिप ऑन शॉट लग या स्लिप पे। फिर हमने शुरू में काफ़ी अटैक किया, वी ट्राइड आर बेस्ट, दे प्लेड ऑल्सो रियली वेल। ऐसा नहीं कि विकेट बहुत फ्लैट था। ऑन डे 4 वी थॉट कि हमने चांसेस क्रिएट किए, काफी कैच, 3-4 कैच इधर गिरे उधर गिरे, वहां पे अगर मोमेंटम प्रेशर थोड़ा और बिल्ड होता, विकेट आ जाते, तो मे बी द रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट।
0: तो इफ्स एंड बट्स वाली जो कहानी है वो तो खेल के मैदान पर चलती ही रहती है, जिसका जिक्र कर रहे थे शुभमन गिल। और अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। नवंबर के महीने में टेस्ट मैच खेले जाएंगे। 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में पहला टेस्ट मैच होगा, और 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में टेस्ट मैच खेला जाएगा। एक और टूर्नामेंट कल शुरू हुआ है जिसे हम जानते हैं महिला एशिया कप के नाम से। वहां पर भारत ने कल जो मैच खेला थाईलैंड को हरा करके जीत के साथ शुरुआत की है, और यहां पर 2 बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियोस थे साथियों। प्रतिका रावल भारत की एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, दिल्ली की ही रहने वाली हैं। हम आपको बता दें कि वो तीनों फॉर्मेट में जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं उनमें शामिल हो चुकी हैं। कल उन्होंने T20 में डेब्यू किया, और T20 में डेब्यू को लेकर के प्रतिका रावल क्या कह रही थी, आइए सुनते हैं। उसके बारे में, उसके बाद उनके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं शेयर करूंगा।
2: Feels, you know, great to be here. It's always a privilege to play for your country, but to be able to play for 3 formats in this game feels like a blessing right now. I just hope that I take every responsibility, and I hope that I keep my team always ahead of me. Debut test format, I think in Feb, it feels one of the same feelings that I had in the test match, and to be able to stand here receiving the debut cap from the captain, it feels great. When you are wearing your India jersey, you feel an immense kind of confidence, and this is what I always wanted to feel as a young kid.
0: प्रतिका रावल वो खिलाड़ी हैं साथियों जिन्होंने पिछले विश्व कप में, जो कि ODI वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, उसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ डिसाइसिव मैच में सेंचुरी जमाई थी। टेस्ट मैचेस में डेब्यू कर चुकी हैं, और कल उन्होंने T20 में डेब्यू किया, ODI में डेब्यू किया था दिसंबर 2024 में 22 दिसंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ, और वो भारत की 150वीं खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने ODI में डेब्यू किया था। प्रतिका रावल दिल्ली में रहने वाली हैं, दिल्ली के रहने वाली, यहाँ पर उन्होंने क्रिकेट सीखी है। नेशनल स्कूल गेम्स में जनवरी 2019 में उन्होंने बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था, और अब वो क्रिकेट के हर फॉर्मेट में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और टेस्ट कैप T20 कैप जो थी भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सौंपी थी प्रतिका रावल को। हरमन प्रतिका से क्या कह रही थी, आइए सुनते हैं।
2: एक्चुअली

0: you on the field, you remind me one thing. Somebody who likes to take the responsibility whenever team need. Like how you have taken responsibility during ODI World Cup, Test game, or other international you have played. The same way, carry the same approach. You always talk about, you know, enjoy karke khelna. But I feel with enjoyment, responsibility is also something, you know, which we always need to keep in our mind. So you are somebody who always like to take the responsibility. So welcome to the team.
1: जी हाँ, स्वागत किया हरमनप्रीत कौर ने प्रतिका रावल का। और एक और खिलाड़ी थी जिन्होंने कल अपना 150वां T20 मुकाबला खेला और वो हैं दीप्ति शर्मा। आइए सुने दीप्ति को।
2: हर एक प्लेयर सोचता है इंडिया के लिए डेब्यू करना और ऑब्वियसली 100-150 गेम खेलने के लिए, लंबे करियर के लिए सोचता है हर एक प्लेयर। जितनी बार भी हर एक मैच में खेलती हो, वो हर एक बार जर्सी पहनने का मौका मिलता है, उससे अच्छी प्राउड फीलिंग क्या हो सकती है।
1: जी हाँ, एक प्राउड फीलिंग जब आप भारतीय जर्सी को पहन करके मैदान में उतरते हैं, ऐसा कहना दीप्ति शर्मा का, जो कि अपना 150वां T20 मुकाबला खेल रही थी। भारत ने थाईलैंड को हरा करके यह मैच जीता। बर्थडे की बात करें, 31 अगस्त आज जवागल सिन्हा तो अपना बर्थडे मना रहे हैं। पीसी तुलसी भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी, रूपेश कुमार बैडमिंटन खिलाड़ी, उनका बर्थडे है। एडविन मोजेस एथलीट अपना बर्थडे मना रहे हैं। 1 सितंबर को मनजीत सिंह का बर्थडे होगा। 2 सितंबर को ईशान शर्मा अपना बर्थडे मनाएंगे और 5 सितंबर को प्रज्ञान ओझा और रोड्रिगेज अपना बर्थडे मनाएंगे। फिलहाल शिवेंद्र को अनुमति, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
4: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
5: स्पोर्ट्स पल्स।
6: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

एफएम रेनबो पर पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किर्गिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर बिश्केक पहुंचे। श्री मोदी आज और कल किर्गिस्तान में आयोजित हो रहे 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान देश के सबसे बड़े राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ द हाईएस्ट डिग्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में CID ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। कल 5वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। इस बीच त्रिशूली नदी में कल आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया। बुधवार को आई भीषण बाढ़ के बाद नेपाल में त्रिशूली 3A समेत कई पन विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने आज हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया। करीब एक महीने में अमेरिका की ये पहली सैन्य कार्रवाई है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि लॉरक द्वीप पर अमरीकी हमले में उसके कई जवान और नागरिक मारे गए तथा अन्य घायल हुए हैं। ओडिशा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महिला क्रिकेट में भारत ने कल रात दुबई में थाईलैंड को 94 रनों से

हराकर T20 एशिया कप 2026 अभियान की शानदार शुरुआत की है। जर्मनी लगातार दूसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। कल शाम बेल्जियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। स्क्वाश में भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सेरे मबन में आयोजित तुआकू मुहरिज ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। और अंत में फुटबॉल में भारत की अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय टीम आज ताशकंद के दोस्त लेक स्टेडियम में सीरिया के खिलाफ AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत करेंगी। तो ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

Hey listeners, good morning and welcome back. मंडे का दिन है और मंडे को अक्सर हमारा मन जो रहता है ना वो शांत नहीं होता है तो मैंने सोचा आपको वेलकम करने के लिए ये वाला गाना मैं प्ले करती हूँ. ओल्ड है पर गोल्ड है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर हमें. तो अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं या काम में उलझे हैं या बस यूं ही बैठे हैं तो चिंता क्यों कर रहे हो, एफएम रेनबो है ना, हम आपके बोरिंग पलों को भी एंटरटेनिंग बना देंगे. आप सुन रहे हैं 102.6 पर. समय हुआ 8:14, ज्योति आपके साथ है. गुड मॉर्निंग डेली आंसर शुरू हो चुका है और इतने खूबसूरत गाने को बजाने के लिए चलाने के लिए एक और वजह भी थी क्योंकि मौसम अच्छा है. तो बस मौसम अच्छा है, मौसम को एंजॉय करते हैं और एक और खूबसूरत सा गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ और उसके बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में वो सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है बहुत काम की मैं लेकर आई हूँ और उसको मैं आपको बताऊँगी. बस आप यूँ ही बने रहिए मेरे साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी.

जा बुरा करते हाँ, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

आपकी आंखों में चाहे कोई भी हो मगर आपके दिल में बसता है आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और आज का मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मूड बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं गाने बजा के अच्छे अच्छे से गाने बजा के आपका मूड अच्छा कर दूंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स मंडे मॉर्निंग और मंडे मॉर्निंग को हमें मंडे ब्लूज होता है, इसलिए हम नए नए तरीके ढूंढते हैं किस तरह से अपने मन को हम यू नो हैप्पी रख सकें और शांत रख सकें। तो आज का मौसम जो है मुझे तो फिलहाल बहुत खुशी और शांति दे रहा है, क्योंकि स्टूडियो के बाहर इतना प्यारा सा एनवायरनमेंट लग रहा है ना, और बादल दिख रहे हैं और धूप नहीं है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आज दिन में बारिश हो जाएगी। ऐसा मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में मुख्य रूप से साफ और थोड़ा सा गर्म भी रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स बारिश आती है तो उसके बाद उमस भी अपने साथ लेकर आती है, और कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मेरे पास तो अभी भी छाए हुए हैं, और अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो 29 डिग्री सेल्सियस अभी है फिलहाल, जो 34 डिग्री सेल्सियस तक जैसा लग रहा है, और हवा में नमी भी है, और इसी तरह से हवाएं चलती रहेंगी, कहीं कहीं बारिश जल्दी आ जाएगी, कहीं कहीं देर में आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पे इस एरिया में तो हो ही जाएगी। फिलहाल आप सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि आप और हम साथ हैं, हमारा साथ बहुत खूबसूरत है इस मंडे मॉर्निंग को, आज के दिन को और लवली और हैपनिंग बनाते हैं, और जो भी हो सकता है उसको अच्छा बनाने के लिए वो करते हैं ना।

में गर्मा गर्म चाय का प्याला हो या कॉफ़ी का प्याला हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारे एक लिसनर हैं राजकुमार जी, जो हमें महाराष्ट्र से मैसेज कर रहे हैं और उन्होंने अपने मंडे को किस तरह से हैप्पी बनाया है हमें बता रहे हैं कि मैं अदरक इलायची वाली चाय का लुत्फ उठा रहा हूँ। दैट्स सो गुड। तो मतलब अलग अलग तरीके हैं अपने मंडे मॉर्निंग को हैप्पी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि हम आज के दिन की शुरुआत कर सकें और आज का पूरा दिन हमारा यूँ ही अच्छा अच्छा बीते, अच्छा सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे तो दिन भी अच्छा जाएगा। और एक ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब एक समस्या तो है ही, जो अक्सर दिल्ली वालों को, दिल्ली NCR वालों को अक्सर जूझनी पड़ती है, और वो है पानी की किल्लत। और उससे निपटने के लिए कुछ तैयारियां की जा रही हैं ताकि आने वाले समय में आपको पानी की अगर कभी किल्लत होती है तो आप उसमें किस तरह की सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड ने पेयजल संकट से निपटने के लिए 600 इलेक्ट्रिक पानी के टैंकर किराए पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, और इसमें 300 टैंकर पानी की कमी वाले रिहायशी इलाकों में और 300 टैंकर्स व्यावसायिक और संस्थागत क्षेत्रों में सेवा देंगे। और ख़ास बात यह है कि इन टैंकरों में GPS सिस्टम होगा और आप इन्हें मोबाइल ऐप के ज़रिए बुक कर सकते हैं और उनको लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं कि जब आपने कोई सर्विस बुक की है तो वो आप तक कब तक कैसे पहुँच रही है। तो जल बोर्ड की इस पहल का मकसद सिर्फ यही है कि जब आने वाले समय में गर्मियों में पानी की कमी वाले इलाकों में समय पर जब पानी नहीं पहुंच पाता है तो इस सर्विस के थ्रू पहुंच पाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इसे आप ऐप के थ्रू बुक कर सकते हैं और इसको लाइव ट्रैक भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो कहीं कहीं इलाकों में तो अभी भी दिक्कत है, हो रही है, होगी, मगर अभी मानसून का टाइम है, मगर आने वाले टाइम में अगले साल तक आपको ये समस्या इतनी परेशान नहीं करेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है।

0: देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर, और हमारे एक लिसनर ने लिखा कि जो शो का सबसे पहला गाना था उन्हें पसंद तो बहुत आया, मगर उनको लगा कि शोर बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए अपने रेडियो सेट से या फिर फोन से या फोन पे मत सुनिए।
1: ये तेरा मेरा
0: तो बात हमें करी के बैलेंस बनाना है।

दिल तो बिल्कुल नहीं लगता है हमारा आपके बिना, आपका हमारे बिना। आपके मैसेजेस हमारे साथ जुड़े हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और बस 8 बज चुके हैं, 8:40 बस होने ही वाले हैं और एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज है, मुश्किलों से जो हार गया वह जिंदा मर गया, मुश्किलों को जिसने हरा दिया वो शहंशाह बन गया, जीवन है जब तक मेरे मुश्किलें आती जाती रहेंगी, मुश्किलों पर जो भारी पड़ा वो सफल हो गया। अनिल शर्मा जी मैसेज जुड़े हैं सरिता विहार से और लिखते हैं इतनी खूबसूरत सी बात जिसने आज की मंडे मॉर्निंग को और अच्छा बना दिया है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी सैड फील हो रहा था या मंडे ब्लूज़ फील हो रहा था तो आई थिंक वो अब दूर हो चुका है और बिल्कुल आपका हमारा साथ यूँ ही बना रहेगा। बस एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके साथ फिर से जुड़ती हूँ और बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे खूबसूरत से गाने भी।

0: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

बता सकते हो आपको आकाशवाणी रेनबो से प्यार क्यों है और कैसे हो गया ज़रूर बताइए। और जो चीज़ आपको नहीं पता है वो बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। और एक नया अपडेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड यानी NCWEB की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के अकॉर्डिंग NCWEB का 5वां कट ऑफ आज यानी 31 अगस्त को जारी किया जाएगा और ये कट ऑफ जो अवेलेबल सीट्स हैं उनके बेसिस पर ही जारी किया जाएगा। इससे पहले जो 4था कट ऑफ था वो 24 अगस्त को जारी किया गया था जिसमें छात्राओं को 25 और 26 अगस्त को आवेदन करने का मौका दिया गया था। तो अब 5वें कट ऑफ का इंतजार जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं BA और BCOM के आपके लिए अवेलेबल सीट्स के लिए जो लिस्ट है वो जारी होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। तो आप बस नज़र बनाए रखिए DU NCWEB के अगले कट ऑफ पर। ये आपके लिए एक ज़रूरी अपडेट है, तो क्योंकि सब चाहते हैं कि टाइम पर एडमिशन हो जाए और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाए और उसके बाद आप कॉलेज लाइफ को इन्जॉय कर सकें। जब दिल मिले मिले, मिले।

आपके हमारे दिल 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर तो मिल ही जाते हैं, मगर बहुत गुस्सा आता है जब हमारा नेटवर्क नहीं मिलता है। हम कहीं पे कॉल करते हैं तो कॉल नहीं लगती है, उधर से कॉल रिसीव नहीं होती है, और अगर कॉल कनेक्ट भी हो जाती है तो आवाज़ नहीं आती है। तो बस थोड़ी सी इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल नेटवर्क की कवरेज और 5G सिग्नल से जुड़ी हालिया जो सरकारी नीतियाँ हैं उसमें थोड़े से बदलाव हुए हैं, और भारत ने मोबाइल नेटवर्क के लिए EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिमिट्स को वैश्विक मानकों के अनुरूप करने का फैसला किया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो मौजूदा जो टावर्स हैं उससे ज़्यादा प्रभावी कवरेज देने की कोशिश करेंगी, सक्षम हो सकती हैं। तो सवाल है कि क्या बेसमेंट में भी 5G मिलेगा? तो बिल्कुल संभावना बेहतर होगी, और कोशिश तो हमेशा ही बेहतरी की हम करते हैं, हमेशा बेहतर होने की करते हैं। तो बेसमेंट, पार्किंग और मोटी दीवारों वाली इमारतों में सिग्नल जैसे अब कभी कभी हमें कमज़ोर फील होते हैं, तो वहाँ पर 5G की अवेलेबिलिटी, टावर की दूरी, इस्तेमाल किए जा रहे 5G बैंड्स, इन सब पर डिपेंड करता है। तो नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, उसकी वजह से टेलीकॉम कंपनीज को अब कम टावर से बड़े क्षेत्र में बेहतर कवरेज देने में मदद मिलेगी, और इससे खासकर जो घनी आबादी हैं और इंडोर कवरेज वाले क्षेत्र हैं वहाँ फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो 5G की पहुँच बढ़ाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर जगह 5G सिग्नल मिलने लगेगा। अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, मगर इसमें कोशिशें हो रही हैं। फिलहाल 8:55 हो चुके हैं और मेरे जाने का समय जो है वो बस नज़दीक है, क्योंकि 9:00 आपके साथ होंगी कंचन कानन लेकर दिल के तनाने, गाने नए पुराने, बहुत सारे खूबसूरत नगमों का आप मज़ा लेंगे, और उसके बाद 10:02 से आपके साथ जुड़ेंगे निहारिका लेकर मैचलेस म्यूज़िक आर, 11:02 से माला नेगी आपके साथ जुड़ेंगे लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स, और उसके बाद 12:02 से निहारिका फिर जुड़ेंगे आपके साथ लेकर वेस्टर्न म्यूज़िक का शो प्ले इट कूल, 1:02 से माला नेगी फिर आपके साथ जुड़ेंगी लेकर शो रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज का टॉपिक है व्हाई लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट। लिसनिंग के इम्पॉर्टेंस तो आप जानते हैं, ध्यान से सुनते हैं तभी तो सारी अपडेट्स आपको पता लगती हैं। इसमें एक्सपर्ट होंगे दिलीप कुमार पाठक, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इसके बाद सृजन राजपूत आपके साथ जुड़ेंगी 2:02 से लेकर शो आशियाना, और उसके बाद आप सुन सकते हैं रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज का टॉपिक है आई डोनेशन। इसमें एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश, डायरेक्टर हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी LHMC न्यू दिल्ली। अल्फाजन लेकर सृजन आपके साथ फिर जुड़ेंगी 4:02 से, और हिना मौत के साथ आप सिटी की सारी खबरें जान सकते हैं सिटी लाइट्स शो में 5:02 से। फिलहाल बस मेरे जाने का समय नज़दीक, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयरवेज पर, तब तक बाय बाय।

नमस्कार, 9 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ द हाईएस्ट डिग्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में CID ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर रही बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई। 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। बुधवार को आई भीषण बाढ़ के बाद नेपाल में त्रिशूली 3A समेत कई विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में लाराक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिमी एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ओडिशा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। दुबई में महिला T20 एशिया कप में भारत ने अपने प्रारंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रनों से हराया। जर्मनी लगातार दूसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। कल शाम बेल्जियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सेरेम्बन में आयोजित तुआंकू मुहारिस ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। और फुटबॉल में भारत की अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय टीम आज ताशकंद के दोस्लिक स्टेडियम में सीरिया के खिलाफ AFC अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत करेगी। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम दिल की तराने, गाने नए पुराने। इस प्रोग्राम के साथ मैं कंचन। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और दिल से जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ। तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक।

0: देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हो रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने, और इस प्रोग्राम के ठीक बाद आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिकर, और इसमें निहारिका आपके साथ होंगी। 11 बजे माला नेगी आपके साथ रहेंगी और प्रोग्राम होगा बॉलीवुड ट्रेल्स। और दोस्तों, सुनना बहुत ज़रूरी है किसी को भी बहुत ध्यान से, लेकिन सुनना क्यों ज़रूरी है इसी विषय पर आज बात होगी प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। और इसमें हमारे ख़ास मेहमान रहेंगे मोटिवेशनल स्पीकर दिलीप कुमार पाठक, और इसमें इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी एक बार फिर से माला नेगी। सृजन राजपूत प्रोग्राम आशियाना लेकर रहेंगी 2 बजे, और 3 बजे होगा रेडियो डॉक्टर। और आज बात होगी आई डोनेशन के बारे में, क्योंकि नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, तो इसी विषय पर बात होगी। अल्फा जर्नलिस्ट सृजन राजपूत एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ 4 बजे, और 5 बजे हिना मौज सैटेलाइट्स लेकर आपके साथ रहेंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं आपके साथ कंचन।

हम आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल, दिल से दिल तक। दीजिए विदा मुझे और जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का हाथ थामे रखिए। दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

0: It continues to, hold that special place in our hearts as when it first came out back in the day. And with that, we transition into a short break followed by a little more music. 10:14 a.m. by the Studio Clock. You're with me, Niharika, on the Matchless Music Hour on Akashwani FM Rainbow. Stay with us.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया इन द वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी एंड गीता दत्त फ्रॉम द 1956 फिल्म CID, a neo-noir crime thriller film, but it's known more for its music than for its plot. And if you notice this song very carefully, if you listen

0: रहिया काजवानी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
3: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
3: And with that, we are back to more music on the Matchless Music Hour. And because today's conversation began with appreciating all that we have around us, so here's a track that appreciates the world in every way possible, that appreciates the beauty of the world and the way it's been created. What a Wonderful World up next by Louis Armstrong on the Matchless Music Hour.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल। 1, 2, 1, 2, 3, 4.

नमस्कार, 11 बज चुका है। एफएम रेनबो पर पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का सम्मेलन से इतर संगठनों के कई नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में CID ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई। 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिका की सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। जर्मनी लगातार दूसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। कल शाम बेल्जियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। और स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सिरिम्बन में आयोजित तुआंकु महरिज ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अगला कार्यक्रम है बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, समय हो चुका है 11:04। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला लेकर आ चुकी हूँ प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। आज बॉलीवुड ट्रेल्स में है कुछ खास मजेदार चटपटी गॉसिप्स, और ये गॉसिप्स क्या हैं उसका एक छोटा सा ट्रेलर आपके सामने यहाँ पेश कर देती हूँ। जैसे कि बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान की जिंदगी में आया है एक बहुत ही लेटेस्ट और पॉजिटिव अपडेट। क्या है वो अपडेट बताऊंगी आपको। वाओ, इसके अलावा एक और अपडेट है आपके लिए और वो है दीपिका पादुकोण की जिंदगी से जुड़ा हुआ। वैसे तो उनकी लाइफ में काफी कुछ नया हो रहा है, लेकिन कुछ और भी है जो उनकी लाइफ में नया होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। क्या है वो स्पेशल बात, क्या है वो स्पेशल अपडेट, वो मैं आपको बताऊंगी। बने रहिए मस्त मस्त आरजे माला के साथ, और साथ ही साथ बहुत ध्यान से सुनिए आज के इस शो को, क्योंकि आज के इस शो में ही छुपा हुआ है आज के बॉलीवुड सरताज क्विज का जवाब। सवाल आपसे पूछूंगी बहुत जल्द, ध्यान से सुनना, सवाल भी सुनना जवाब भी सुनना, सब मैं ही बताऊंगी। लेकिन ऐसे बताऊंगी आपको पता नहीं चला। बाद में आपसे मैं सवाल पूछूंगी, फिर आप जवाब दोगे और उसके बाद शायद आप बन सकते हो आज के बॉलीवुड सरताज। तो फिलहाल बैंग बैंग तरीके से आज के शो की शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द सवाल पूछूंगी, तो जवाब भी देना है आपको इसी स्टाइल में, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

बच्चे के परदादा हिंदी सिनेमा के जाने माने म्यूजिक कंपोजर रोशन थे, और जिस बच्चे के दादाजी के भाई राजेश रोशन बॉलीवुड के सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो ऐसे में उस बच्चे का म्यूजिक की दुनिया में कदम रखना कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ है जो कोई अनोखी बात है। लेकिन अगर हम उस बच्चे के डैड के बारे में बात करें और आपको बताएं कि उस बच्चे के पिता कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने और डैशिंग एक्टर ऋतिक रोशन है, तो हमें अपने इस विचार पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के जाने माने एक्टर ऋतिक रोशन के बेटे रेहान रोशन के बारे में, जिन्होंने म्यूजिक की दुनिया में रख दिया है अपना कदम और अपनी पहली म्यूजिक एल्बम के जरिए, म्यूजिक सिंगल कहेंगे रादर, उसके जरिए वो आ चुके हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, और प्यार से इन्हें रे के नाम से बुलाया जाता है। और आपको बताएं कि अगर इनके पहले सिंगल के बारे में बात करें तो वो है दिस हेवनली प्लेस, और इसके साथ उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डेब्यू किया है म्यूजिक की दुनिया में, और ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि कहा जाता है कि रोशन परिवार से ये माना ही जाता है कि वो एक से एक बेहतरीन अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपने शोज़ के ज़रिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो लोगों को बहुत एंटरटेन करता है। और ऐसे में अगर उनकी नेक्स्ट जनरेशन एक बार फिर से म्यूज़िक की तरफ धमाका करने वाली है तो ऑफ कोर्स ये उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही वंडरफुल न्यूज़ है। वैसे रेहान के इस कदम से उनका परिवार बहुत खुश है, हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा है, और फादर ऋतिक रोशन ने उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट भी डाला है सोशल मीडिया पर, जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी खुशी ज़ाहिर की। और जहाँ तक बात करें माँ सुजैन खान की, तो वो भी अपने बेटे की डेब्यू से बहुत खुश हैं, और बहुत ही इमोशनल होते हुए उन्होंने भी अपने बेटे को बहुत प्यार देते हुए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। सभी लोग इस बात को लेकर, इस अपडेट को लेकर बहुत खुश हैं, और अब देखना यह है कि ये एल्बम जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो ऋतिक रोशन और उनकी पूरी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से उनके परिवार से लगातार एक से एक नए नए कलाकार आते रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स विद मी योर मस्त मस्त आरजी माला। थोड़ी देर में आपको बताऊंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की लाइफ में भी काफ़ी कुछ स्पेशल हो रहा है। क्या कुछ स्पेशल है, जुड़े रहिए जानने के लिए बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

वैसे हमारा हर दिन बॉलीवुड के लिहाज से कहीं ना कहीं स्पेशल होता ही है, और आज का दिन भी काफ़ी स्पेशल है। आज क्या है जी, आज है 31 अगस्त, और अगर हम आज ही के दिन 1984 की बात करें तो उस दिन बॉलीवुड के एक ऐसे जाने माने एक्टर का जन्म हुआ था जिन्होंने शायद खुद कभी बचपन में नहीं सोचा होगा कि वो बॉलीवुड के इतने जाने माने एक्टर बन जाएंगे। हालांकि एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से था और उनका हर एक कदम उनको उसी तरफ आगे ले जा रहा था कि वो एक दिन बॉलीवुड के सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे। लेकिन कहाँ सोच सकता है कोई मिडिल क्लास का बच्चा कि वो, या उसके परिवार के फैमिली के मेम्बर्स भी, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई करे, डॉक्टर इंजीनियर बने, एक्टिंग के बारे में नहीं सोचते, फिल्मों के बारे में नहीं सोचते हैं मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए और वो उनके लिए सबसे बढ़िया करियर है। राजकुमार राव लेकिन ऐसा नहीं सोचते थे। वैसे दिल्ली से उनका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है क्योंकि उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत एक्चुअली दिल्ली से हुई, भले ही वो गुड़गांव हरियाणा के रहे हैं, और दिल्ली में क्योंकि बहुत कनेक्टेड है, NCR में ही आता है गुरुग्राम, तो इसीलिए उन्होंने यहीं से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के वो एलुमनाय हैं और वहाँ से ही उन्होंने थिएटर के ज़रिए अपने करियर की शुरुआत की, और उसके बाद श्रीराम सेंटर दिल्ली से भी उन्होंने जुड़कर काम किया। वैसे अगर बात करें उनके फादर के बारे में तो उनके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और उनकी मदर होम मेकर थी। और राजकुमार राव के घर पर उनके दो बड़े सिबलिंग्स भी हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी फिल्मी दुनिया की तरफ रुख नहीं किया राजकुमार राव को छोड़कर। और राजकुमार राव का कहना यह है कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखकर वो उनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए, इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने ये पूरा फैसला कर लिया था कि अब तो उन्हें एक्टर बनना ही है। और साल 2008 में उन्होंने FTII से जब अपना एक्टिंग कोर्स किया तो उसके बाद वो मुंबई की तरफ रवाना हुए, और उसके बाद जब उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई तो साल 2010 में फिल्म लव सेक्स और धोखा के साथ उनकी जो जर्नी शुरू हुई वो अभी तक जारी है और लगातार सक्सेसफुल फिल्म्स वो देते आए हैं। वैसे आपको बता दें कि राजकुमार राव जो है वो नेशनल फिल्म अवार्ड विनर भी हैं फॉर बेस्ट एक्टर, और इसके अलावा फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी उनको बेस्ट एक्टर का मिल चुका है, और ऐसा उन्हें साल 2013 में उनके साथ हुआ जब उनकी फिल्म काय पोचे को काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिली। और अगर राजकुमार राव के बारे में बात करें तो एक से एक ज़बरदस्त फिल्म्स आप लगातार उनकी देखते हैं, कभी उनकी फिल्में आपको हंसाती है, गुदगुदाती हैं, तो कभी उनकी फिल्मों के ज़रिए हम काफ़ी सीरियस भी हो जाते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचने भी लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फिल्म्स जो आपको कुछ पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करे, अगर ऐसा करने के लिए किसी एक्टर की कोई फिल्म आपको मजबूर करती है तो ये अपने आप में उस एक्टर के सफलतम करियर को दिखाती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स विद मी योर मस्त मस्त आरजे माला। अगला गाना राजकुमार राव की फिल्म से, हैप्पी बर्थडे टू यू सर जी, और सर जी आप भी, मैडम जी आप भी, ध्यान से सुनिए शो को। थोड़ी देर बाद आने वाला है बॉलीवुड सरताज क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ट्रेल्स पर।

0: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वैसे फिट होने की अगर बात करें तो ऋतिक रोशन जो है, मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड में कभी भी कोई भी ऐसा दौर नहीं था जब हम ये कह पाए हों कि ऋतिक रोशन थोड़े अनफिट हो गए। ऑलवेज फिट, हैंडसम, माय गॉड सो डैशिंग। ये जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं ना, मुझे पता है कि ये सबके भी, सबके मतलब आप जितने लोग सुन रहे हैं ना, आप सभी के भी यही एक्सप्रेशंस है, यही रिएक्शन है ऋतिक रोशन को लेकर। और आज का जो मेरा सवाल है ना, वो कहीं ना कहीं उनसे, उनके परिवार से जुड़ता है, तो आपको जवाब देना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड सरताज क्वेश्चन पूछने का समय आ गया है और जवाब देने का टाइम भी ऑफकोर्स।

आई गया क्यों? तो रेडी हो जाइए दोस्तों, आपसे जानना चाहती हूँ बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के बेटे रेहान रोशन के परदादा का नाम क्या है? थोड़ा तो घुमावदार सवाल है लेकिन बहुत सीधा जवाब दे देना। हाँ जी, ये मैं आपसे कह रही हूँ, फटाफट से मुझे जवाब दे दो और बता दो कि बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के बेटे रेहान रोशन के परदादा का नाम क्या है। अगर आपने ध्यान से बॉलीवुड ट्रेल्स को सुना है तो ऑफकोर्स आपको इसका आंसर तुरंत पता होगा, एकदम बिल्कुल सीधे तरीके से। और पता है आपको तो फटाफट से भेज दो मुझे 9868107070 पर व्हाट्सएप करके, झटपट अपने मैसेजेस भेजिए, बनिए हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सेदार, भेजिए अपने मैसेजेस और क्या पता आप बन जाएं आज के बॉलीवुड सरताज। नंबर एक बार फिर से 9868107070, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और बताइए मुझे बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के बेटे रेहान रोशन के परदादा का नाम क्या है। मैं हूँ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और ये मेरा नाम है, लेकिन फिलहाल आपको बताना है रेहान रोशन के परदादा का नाम। बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे इससे, आज की जनरेशन के भी और पुराने ज़माने के लोग भी।

वैसे मानना पड़ेगा बहुत स्मार्ट हैं आप, मतलब जिस तरह से आप बहुत ध्यान से शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा जान के। क्योंकि जिस तरह से और जिस बेहिसाब मैं देख रही हूँ यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, और वो भी बिल्कुल सही जवाब के साथ, देख के मजा आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं आज का बॉलीवुड सरताज सवाल क्या है और उसके जवाब में किन किन लोगों ने अब तक मुझे मैसेज करके सही या गलत जवाब दिए। मैंने आपसे पूछा बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के बेटे रेहान रोशन के परदादा का नाम क्या है, तो आपको बता दें कि उमेश कुमार ने ख्याला से बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमरावती महाराष्ट्र के बारे में, तो वहां से पंकज जी ने बिल्कुल सही जवाब हमें भेज दिया है और सही जवाब वाले नामों की लिस्ट में आ गए हैं काफी अच्छे मुकाम पर। सलीम मलिक ने मेरठ से बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा प्रवीण चौहान ने खारगांव मध्य प्रदेश से बिल्कुल सही जवाब दिया है। लुधियाना से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे लिसनर, नाम है इनका सुरेश वदन, और बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। रोहित श्रीवास्तव कहां पीछे रहने वाले थे, दिल्ली वाले लोग तो सबसे पहले आगे दौड़ लगाकर पहुंच जाते हैं, इसलिए रोहित श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए बिल्कुल सही जवाब के साथ, और उनके पीछे पीछे आ गई अंश सोनिया विहार से सही जवाब के साथ। नितेश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, लोकेशन इनकी नहीं पता चल पा रही है, हाँ जी भेज दिया जी, बिजनौर से बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा कंचन सोनिया बिहार से बिल्कुल सही मैसेज के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा नौशाद चौधरी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सही जवाब की लिस्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ और नाम, और इसमें जो एक अगला नाम जुड़ रहा है वो हमारी बहुत ही रेगुलर लिसनर का है, मिसेस धर्म भाटिया। बहुत सही जवाब बहुत सही टाइम पर दे दिया आपने मैम, थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारे साथ जुड़े इरशाद अशरफी शहर नागौर राजस्थान से बिल्कुल सही जवाब के साथ। दिनेश नहार सिंह ने भी अमर कॉलोनी गोकुलपुरी दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश टेकचंद ग्रेटर कैलाश 2 से दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब के साथ। निधि ने प्रयागराज से बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा सही जवाब की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं हमारे साथ पूजा और कोमल, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है हरिनगर दिल्ली से। लेकिन गलत जवाब भी एक हमारे पास आ गया है, और ये गलत जवाब है कुंवर लोकेंद्र सोनगरा का, और ये गलत जवाब सो सॉरी टू से मध्य प्रदेश से ये हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन गलत जवाब के साथ। कोई बात नहीं, आप फिर सोचिए, फिर ट्राई कीजिए, आपके पास समय। जाहिद अहमद ने मुजफ्फरनगर से बिल्कुल सही जवाब दिया है। मोहम्मद मुजफ्फर ने बिहार किशनगंज से बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सही जवाब हमें दिया है मेरठ से कविता गौड़ और दिग्दर्शन ने। इसके अलावा सही जवाब की लिस्ट में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं नारायण प्रधान ओडिशा से। तो देखिए भारत के हर एक कोने से हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देखिए जी, अगला मैसेज कुल्लू हिमाचल प्रदेश से आ चुका है, नाम है जीत और भावना, और जीत और भावना आप दोनों जीत गए हैं, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है आपने, थैंक यू सो मच सही जवाब देने के लिए। साथ ही कान से मोहम्मद फुरकान हमारे साथ जुड़ गए हैं बिल्कुल सही जवाब के साथ। अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से बिल्कुल सही जवाब के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिजनौर से हमें सही जवाब भेजा है नितेश ने, और इसके अलावा सही जवाब की लिस्ट में हमारे साथ एक और नाम जुड़ गया है, और ये मैसेज आया है भटिंडा पंजाब से देसराज जी का, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात करें अगर राजकुमार के संतानी जी का, तो वो कहीं पीछे नहीं छूटते हैं, सही जवाब के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपको बताएं, जैसा कि मैंने कहा ही था कि इस सवाल के साथ हमारे साथ नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों पीढ़ियों के लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और वैसा ही हुआ। अगर आपको भी है, लगता है कि हाँ पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा जवाब बिल्कुल सही है, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के बेटे रेहान रोशन के परदादा का नाम क्या है। 9868107070 पर व्हाट्सएप कीजिए अपना जवाब और जुड़ जाइए अपनी मस्त मस्त आरजे माला के साथ, शायद आप बन जाएं आज के बॉलीवुड सरताज।

0: देखिए, कहते हैं ना कि जब हमें किसी चीज का जवाब पता होता है, जब हमारे पास जो सवाल होता है उसका आंसर हमारे सामने होता है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंटली बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश की, बॉलीवुड सरताज बनने की पुरजोर कोशिश में लगे रहे। लेकिन बॉलीवुड सरताज तो एक ही हो सकता है और वो अभी फिलहाल हमारे साथ हैं, तो चलिए जुड़ते हैं उनसे और बात करते हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया मैम, आप काफी दिनों बाद आई हैं आज आप।
0: अरे मैं बहुत दिनों के बाद नहीं आई हूँ यहाँ पर, मैं स्टूडियो से थोड़ा कम, लेकिन बाहर से भी एफएम रेनबो के साथ हमेशा जुड़ी रहती हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के बेटे रेहान रोशन के परदादा का नाम क्या है? ये आज का हमारा बॉलीवुड सरताज सवाल है, तो जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे।
1: जी, उनके परदादा का नाम था रोशन लाल नागराज।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम?
1: जी, मैं कांट से मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैम।
0: क्या बात है मोहम्मद फुरकान जी, तो अब ये बताइए, अगर रोशन परिवार की हम बात करें तो एक से एक बेहतरीन संगीत से जुड़े हुए लोग, एक्टिंग से जुड़े हुए लोग, आपको इस परिवार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा गाना इस समय याद आ रहा है जो आप हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं?
1: जी, वैसे तो उनके दादाजी राकेश रोशन जी बहुत फेमस एक्टर रहे हैं, उनके चाचा राजेश रोशन संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी बहुत शानदार म्यूजिक देते थे। और इधर ऋतिक रोशन का एक गाना कहो ना प्यार का, मैं सुनाता हूँ आपको, गुनगुनाता हूँ एक लाइन।
0: जी जी बिल्कुल, हो जाए
1: जी। दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज बॉलीवुड सरताज आप बने, इस बात की बेहद खुशी है हमें। लेकिन कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने आज बॉलीवुड सरताज बनने की कोशिश की। बॉलीवुड सरताज तो हमारे आज के लिए बन गए हैं, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करते रहिए, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है आपको हमेशा ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं, तो आज नहीं तो कल ट्राई कीजिए। वैसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण वार्ष्णे अलीगढ़ से बिल्कुल सही जवाब के साथ, और इसके अलावा कुंवर लोकेंद्र राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, जिन्होंने गलत जवाब दिया था, आप सही जवाब के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग योरसेल्फ, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप इस क्विज में शामिल हुए और आप लोगों ने मैसेजेस किए। बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स पर, मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला।

वैसे ये गाना जो है बहुत ही सूदिंग एहसास दिलाता है, लेकिन उससे भी सूदिंग जो एक और खबर है वो ये है कि द एकेडमी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की सुपरहिट फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सनसेट सीन शेयर किया, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि दीपिका पादुकोण बहुत जल्द अपने दूसरे बेबी को एक्सपेक्ट कर रही हैं और सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ के साथ अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट की जो फिल्म है राका उसमें नजर आने वाली हैं। सितंबर में उनकी प्रेगनेंसी ड्यू है और डिलीवरी ड्यू है, और अब ऐसे में इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ वो जब वापस से कमबैक करेंगी तो ये अपने आप में सोने में सुहागा है। वैसे अभी समय हो चुका है 11:57, ये समय मुझे कह रहा है मैं आपको कह दूं टाटा बाय बाय, लेकिन सिर्फ अभी के लिए आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी 1 से 2, लेकर आऊंगी प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन और उसमें हम बात करेंगे व्हाई लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ, फिलहाल मुझे यानी मस्त मस्त आरजे माला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय।

0: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
8: इग्नोर नहीं, याद करो।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
7: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
6: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
7: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

नमस्कार, समय हो चुका है 1:50। FM रेनबो पर पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कार्यक्रम इसतर में प्रधानमंत्री ने फ्रेंड्स ऑफ इंडिया से संवाद किया। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। भारत ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग और मशीनरी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत DSV-INS निपुण को आज मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बरगर के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई। 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ा। वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 और बीरपुर बैराज के 25 गेट खोले गए। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। और खेलों में अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सिरिम्बन में आयोजित तुआंकू मुहरिज ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। तो ये थे अभी तक के रेनबो इंडिया मुख्य समाचार। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अगला कार्यक्रम है रेनबो हेल्पलाइन।

0: जब सुनने की बात होती है तो हम कहते हैं कि सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब सुनने की बात न भी हो रही हो तो भी अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के जो भी हम काम कर रहे होते हैं सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम उस चीज़ को, उस बारे में जो भी बात हो रही होती है उसको जज्ब करके अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग डेवलप कर रहे होते हैं जो हमें उस चीज़ को सीखने के लिए आगे बढ़ाती है। तो इसलिए कहते हैं कि सुनना बहुत ज़रूरी है अगर हम सीखना चाहते हैं, सुनना बहुत ज़रूरी है अगर हम पॉजिटिव लोगों को सुनकर अपने अंदर पॉजिटिविटी को जगाना चाहते हैं। और इसीलिए आज हमने रेनबो हेल्पलाइन का टॉपिक भी यही लिया है, व्हाई लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। ये तो मेरे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया और जो शायद आपको भी पता है कि सुनना क्यों ज़रूरी है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक एक्सपर्ट की, और वो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। और आज के इस टॉपिक व्हाई लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हैं मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल वर्कर, अकेडमिशियन फॉर लास्ट 3 decades और कैंसर अवेयरनेस को लेकर अपनी जिंदगी के 30 से 32 साल न्यौछावर करने वाले श्री दिलीप कुमार पाठक सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैम, धन्यवाद
0: जी। सर जानना चाहेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाई लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, सुनना इतना ज़रूरी क्यों है अगर हम खास तौर पर इस बारे में आज बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे सुनना क्यों ज़रूरी है।
1: मैम आज की तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, अपना विचार रखना चाहता है और चाहता है कि दूसरे उसकी बात को महत्व दे, लेकिन दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनना अपेक्षाकृत कम लोग पसंद करते हैं। संचार के इस आधुनिक युग में तकनीक में हमें पढ़ने लिखने बोलने संदेश भेजने और विचार साझा करने के अनगिनत साधन दिए, लेकिन विडंबना यह है कि समझने और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हमारी क्षमता कई बार पीछे छूट जाती है। भगवान ने हमें जब शरीर का बनावट भी दिया तो ध्यान से अगर देखेंगे तो जो हमारा जो कान हमें दो दिया गया
0: जी।
1: इसके पीछे रीजन था कि सुने अधिक और मुंह एक दिया कि बोले कम
0: जी।
1: लेकिन हम लोग हर आदमी अपनी बात रखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी में अपनी बात कहना चाहते हैं। हम अक्सर किसी व्यक्ति को इसलिए सुनते हैं ताकि वो उसके बोलते हुए हम उत्तर ना दे सकें, ना कि इसलिए कि हम वास्तव में उसके विचारों भावनाओं और अनुभवों को समझना चाहते हैं। सुनना केवल कानों द्वारा ध्वनि तरंगों का ग्रहण करने की जैविक या शारीरिक क्रिया नहीं है, एक मानसिक बौद्धिक और भावनात्मक प्रक्रिया भी है। इसमें संवेदनशीलता, धैर्य, आत्मनियंत्रण और सामने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान भी शामिल होता है
0: जी।
1: तो सुनना जो है हम अक्सर किसी व्यक्ति को बात इसलिए करते हैं कि हम उसको उत्तर ना दे सके
0: जी।
1: क्योंकि जब हम किसी की बात को तन्मयता से सुनते हैं हम केवल उसके शब्दों को ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि उनके शब्दों के पीछे छिपे भाव, दर्द, अपेक्षा, चिंता और विचारों को भी समझने का प्रयास करते हैं। सही समय पर न सुनना या दूसरे चेतावनियों और भावनाओं को अनदेखा कर देना कभी कभी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवसायिक जीवन में भी ऐसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देती है जिसकी भरपाई कठिन हो जाती है
0: जी।
1: इसका उदाहरण मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा, इतिहास में आपको हम लेके जाना चाहेंगे कि महाभारत आपने सब लोगों ने पढ़ी है, सुनी है, बहुत बड़ा हमारे यहाँ एपिक रहा है देश के लिए, लेकिन उससे हमें सीखने की जो हमें मिला, हमने जो उसको अनुभव किया कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट होता है। जब कृष्ण जाते हैं कौरव और पांडवों का संदेश लेकर, उनको 5 गांव दे दीजिए, तो दुर्योधन नहीं सुनता है, वो कहता है सुचि अग्रे न दातव्यं बिना युद्धे हे केशव, मैं सुई का अग्रभाग भी नहीं दे सकता हूँ। अगर वो सुनते तो आज शायद महाभारत नहीं होती।
0: सही कहा।
1: दूसरा जो हमें अपनी रामायण से सीख मिलती है, रामायण में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, सोने की रामायण, रावण जो थे विद्वान, पढ़े लिखे, कर्तव्यनिष्ठ, सब कुछ, लेकिन नहीं सुनने के चलते, उनको अहंकार के चलते नहीं सुने, सोने की लंका जल के राख हो गया
0: जी।
1: तो सुनना इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में कि सुनने के से हमारी जो सामने वाले का जो व्यक्तित्व है, सामने वालों का जो प्रॉब्लम है, सामने वाले की जो समस्या है, उसको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। खास करके मन की बात हमारे मोदी जी करते हैं
0: जी।
1: उसमें भी सुनने की क्षमता पर उसमें बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हर बात को सुनते हैं, लोगों का जो प्रश्न है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसका फीडबैक लेते हैं और तब जाकर के उस पर निर्णय करते हैं, तो उसका निर्णय अधिक अच्छा होता है और प्रभावशाली होता है। तो समाज में आज नहीं सुनने के चलते
0: जी
1: बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो सुनना मतलब ये नहीं कि केवल हम सुन रहे, सुनने का मतलब होता है डीपली, जो हम उसके अंदर से सुने। जैसे हमारे ये गांधी जी थे, हमारे देश के महापुरुष, उन्होंने जब देश में आज़ादी के लिए बिगुल बजाते थे तो अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से अपनी लोगों को बात बताते थे और उनकी बात को लोग धैर्य से सुनते थे
0: जी।
1: और सुन करके उसको अमल करते थे। फिर आज जो हमारे देश से में जो आज़ादी आई उसे बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, उसका एक उदाहरण है
0: जी। बहुत बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सर, क्योंकि कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमेशा सुनते रहो तो आपके ऊपर अत्याचार भी होता रहता है, तो आपको बोलना भी ज़रूरी है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमारे लिसनर्स के मन में भी होंगे और वो चाहेंगे कि वो भी कुछ सवाल पूछें, और किस हद तक सुनना ज़रूरी है और किस पॉइंट पर आकर बोलना ज़रूरी है, ये सवाल उनके मन में भी होगा, जिनके जवाब हम ज़रूर आपसे लेना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी हमसे सवाल पूछें, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसी कार्यक्रम में बिल्कुल लाइव। नंबर नोट कर लीजिए 9868107070 9868107070। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सर, जैसे आपने कहा कि भगवान ने हमें दो कान दिया है और एक मुंह दिया है, तो मुंह से तो हम खाते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कान से हम सिर्फ सुनते हैं। तो ये आप ज़रूर संकेत पर ध्यान दीजिए, दो कान सुनने के लिए दिए हैं, यानी सुनना ज़रूरी है। तो आप भी बहुत ध्यान से सुनिए हमारे आज के इस कार्यक्रम को और जुड़ जाइए हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन पर, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं। तो नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन, मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला, और हमारे साथ हैं आज के एक्सपर्ट श्री दिलीप कुमार पाठक सर।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
9: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
10: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
11: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
10: म्यूजिक मस्ती।
12: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
13: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
10: म्यूजिक मस्ती।

0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और अभी जिस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं वो है प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और हमारे साथ हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट दिलीप कुमार पाठक सर। और आज हम बात कर रहे हैं व्हाई लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। सर, बहुत सारे हमारे पास सवाल आ रहे हैं और उनके जवाब वो चाहेंगे कि उन्हें आपसे मिलें। हमारा जो पहला सवाल है वो पैंथर तोमर ने हमें किशनगंज दिल्ली से भेजा है। कहते हैं कि यदि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से गलत या भ्रामक बात कर रहा हो तब भी क्या उसे अंत तक सुनना समझदारी है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस श्रवण शक्ति लिसनिंग जो पावर है ये केवल कौशल नहीं है, ये आत्म विकास का माध्यम है। हमारे जो ये कम्युनिकेशन स्किल जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको प्रभावी माना गया है कि आत्म विकास का प्रभावी माध्यम माना गया है, इस दृष्टिकोण को हम लोग जो कहते हैं कम्युनिकेशन रिसर्च में कि सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई एक निगेटिव बातें कर रहा है, कोई किसी का मीनिंगफुल नहीं है बातें, तो उसको सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। लेकिन सुनने की जो बात यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं डीप लिसनिंग से, जिसका अभिप्राय मेरा ये है कि सुनना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह एक सक्रिय साधन अपने मस्तिष्क से, ध्यान से, भावनात्मक समझ का प्रयोग करता है
0: जी।
1: इसमें आपका इमोशन भी छुपा हुआ आता है, आपका इम्पैथी भी है। जब कोई आदमी किसी के साथ बात करने जाता है वो सब कुछ कहना चाहता है
0: जी।
1: पहले अगर हम उसकी पूरी बात तन्मयता से, अस्थिर से, बिना टोक टोक के उसकी बात को सुनते हैं तो उसको एक भरोसा हो जाता है कि हमारी बात को सुना है
0: जी।
1: तो ऐसी बातों को सुनने की क्षमता आप में होनी चाहिए।
0: यहाँ पर एक सवाल और भी है इनका। इनका कहना यह है कि हाँ, सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम कुछ ऐसे प्रोफेशंस में भी होते हैं जहाँ पर हमारा बोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बोल के अपनी चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में आक्रामक मार्केटिंग और बोलने की तो ज़रूरत है, क्या यहाँ सिर्फ सुनना हमें पीछे नहीं धकेल देता?
1: नहीं, हम आपकी बातों से सहमत है। कुछ बातें तो होती है, क्या कि क्या होता है कि हम अगर इसमें सुनने की जो प्रक्रिया, एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, एक्टिव लिसनिंग और इम्पैथी दोनों के बीच में गहरा संबंध है। और शोध में पाया गया है कि एक्टिव लिसनिंग वाले, करने वाले और प्रोफेशनल को सामने वाला व्यक्ति अधिक समझदार, केयरिंग और इम्पैथिक मानता है कि जब आप उसको सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई चिंता में है, उसको तुरंत समाधान करने के बजाय हम उसको केवल शुरू में ध्यानपूर्वक सुने और उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है उसको हम लोग एड्रेस करें
0: जी।
1: ये नहीं है कि नहीं बोलना ही नहीं है, बोलना जरूरी है। एक कहावत है कि अतकी भला न बोलना, अतकी भला न चूप, अतकी भला न बरसना, अतकी भला न तू। एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपका रिलेशन कैसा है। रिश्तों में भी समस्याएं हमेशा प्रेम के कमी के कारण नहीं होता है। कई बार लोग समस्या इसलिए पैदा होती है कि हम एक दूसरे का सुनना बंद कर देते हैं
0: जी,
1: कि हम उसके सुनते ही नहीं है
0: जी।
1: जब एक व्यक्ति बोलना चाहता है और दूसरा व्यक्ति सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है तो धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है
0: जी। और रिलेशनशिप्स के बारे में भी अगर हम बात करें,
1: वही हम करना चाहते हैं कि माता पिता हो, चाहे बच्चा हो, मित्र हो, सहकर्मी हो, सबको महसूस कराना है कि उनकी बात सुनी जा रही है
0: जी।
1: आज सबसे बड़ी समस्याएं हो रही है कि घर में अगर आप बात करें तो माता पिता की बात बच्चे नहीं सुनते हैं
0: जी।
1: बच्चे की शिकायत है कि माता पिता हमारी बात नहीं सुनते हैं। जब हम विद्यालय जाते हैं तो शिक्षक कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं
0: जी।
1: बच्चे कहते हैं कि शिक्षक हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। यही हाल ऑफिस का है, ऑफिस में बॉस की बातें सबोर्डिनेट नहीं सुन रहे हैं, सबोर्डिनेट कहते हैं कि हमारी बॉस नहीं सुन रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं इनको कैसे हम कैसे एक साथ लेके चले, लोगों को सुने कैसे, तो आधुनिक जीवन में सुनने की भी एक कला है
0: जी।
1: सुनने भी जो हमारे साथ में है कि रिश्तों में मधुरता और प्रगाढ़ता लाता है। अक्सर वैवाहिक

0: या पारिवारिक मित्रवत रिश्तों में दरार इसलिए नहीं आती है कि प्रेम समाप्त हो गया है, बल्कि इसलिए आती है कि एक दूसरे को समय देना, ध्यान से सुनना बंद कर देते हैं।
1: जी
0: जब हम किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और हम यह संदेश देते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका अनुभव, उसकी भावनाएं, उसकी चिंताएं हमारे लिए मायने रखती हैं। और जब हम सुनते हैं तो हमें निर्णय करने की जो क्षमता होती है, कोई चीज डिसाइड हम जब करते हैं उसमें बहुत ही सहयोग करता है।
1: जी
0: किसी समस्या का, योजना का, दूसरों के विचारों, दृष्टिकोणों को, अनुभवों को सुनने की व्यक्ति के परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। इससे जल्दबाजी में निर्णय लेने, महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज करने की संभावना कम होती है। संगठनात्मक प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी इफेक्टिव लिसनिंग टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर बनाने में सहयोग करती है।
1: जी और कई बार, लेकिन ये तो आपने कहा कि सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को इस वजह से भी उनके शुभचिंतक डांटते हैं कि तुम इतना सुन कैसे लेते हो, तुम्हें इतना तो सुनने की वजह से ही आज तुम इस स्थिति पे पहुंचे हो। तो वो पॉइंट कब आना चाहिए इंसान की जिंदगी में जब उसे वाकई में किसी का सुनना बंद कर देना चाहिए और फिर बोलना शुरू करना चाहिए?
0: इसके लिए मैंने जो अपने 50 साल की जिंदगी में देखा है कि सुनना जो प्रभावी श्रोता कैसे बनते हैं, सुनने की जो कला होती है जन्मजात गुण नहीं होता है,
1: जी
0: इसे अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे पूर्वाग्रहों से मुक्ति। किसी की बात सुनने से पहले उसके प्रति मन में यह धारणा न बना ले कि पहली बात सुने नहीं और हम निष्कर्ष निकाल लें। लोगों की आजकल अनुमान लगा लेते हैं, पूर्वाग्रह रहते हैं, उससे ग्रसित ना हो। उनकी जब हम बात करते हैं तो शारीरिक भाषा पे भी ध्यान दें, जिसको आजकल बॉडी लैंग्वेज कहते हैं।
1: जी
0: बात सुनते वाले उनके ध्यान दें, उनके साथ आई कांटेक्ट करें, सिर हिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इससे क्या होता है कि आपकी इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज से बचे, सामने वाले को लगे कि बात बात में रुचि नहीं ले रहे हैं। हार्वर्ड का एक रिसर्च आया हुआ है हेल्थ में कि अटेंशन, रिस्पेक्टफुल आई कॉन्टैक्ट और डिस्ट्रैक्शन को दूर करने रखने के लिए एक्टिव लिसनिंग का हिस्सा बनता है।
1: जी
0: और जो बीच बीच में लोग टोकने की आदत होती है, कोई भी बात करते हैं, वक्ता कोई बात कर रहा है, बात में टोक दिया, बीच में अपनी राय दे दिया, कोई समाधान दे दिया, कोई निष्कर्ष दे दिया, ऐसे बातों से परहेज करें।
1: जी
0: और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जब हम बात करते हैं तो भावनात्मक जो जुड़ाव होती है, इमोशनल जो ध्यान होती है, उनके शब्दों पर ध्यान दें। बोलने वाले की आवाज, भावनाओं को और हाव भाव को भी समझने का प्रयास करें। एक्टिव लिसनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों संकेतों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, कि आपने कहा सुनना बहुत जरूरी है, कैसे आपको सुनना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें इतनी ज्यादा बोलने की आदत पड़ जाती है कि हम सुन ही नहीं पाते हैं। तो वो आदत हम अपनी कैसे डेवलप करें कि हम ज्यादा से ज्यादा सुन सकें, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे लिसनर्स से भी मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से, हमारे आज के एक्सपर्ट हैं श्री दिलीप कुमार पाठक सर, जो कि हैं मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल वर्कर। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल। नंबर है हमारा 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, पूछिए अपने सवाल और जुड़ जाइए प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन पर हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, समय हो चुका है 1:38। आप है मेरे यानी मस्त मस्त आरजे माला के साथ। कार्यक्रम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, और रेनबो हेल्पलाइन में आज हमारे साथ हैं श्री दिलीप कुमार पाठक सर, और हम आज उनसे बात कर रहे हैं कि सुनना आखिर इतना जरूरी क्यों है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हम पीछे डिस्कस भी कर रहे थे कि सुनना बहुत ज़रूरी है, यह अच्छी बात है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार हमारी आदतों पर हमारा खुद का ही कोई कंट्रोल नहीं होता। हम सुनना तो चाहते हैं लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है लोगों को टोकने की, हमें आदत पड़ चुकी है अपने वक्तव्य बीच में देने की, किसी को बोलने ना देना, अपनी बात पहले रखना, और या तो नहीं भी बोलेंगे तो खुद को रोकने की भी कोशिश करें तो हम काबू ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हम अपनी ये आदतें कैसे डेवलप करें कि हम अच्छे श्रोता भी बन सकें।
2: सुनने की कला जन्मजात गुण नहीं है,
1: ठीक,
2: ये इसे अभ्यास के द्वारा विकसित किया जाता है। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे मैं पहले भी कहा था कि जो आपको पूर्वाग्रह से मुक्ति आपको पानी चाहिए, जो कोई सामने वाला बोल रहा है क्या बोल रहा है, पहले आपको सुनना चाहिए, उसके शारीरिक भाषाओं पर ध्यान देना चाहिए, बीच में उसको टोका टोकी ना करें। ये समझ थोड़ा सा ये अभ्यास से आता है, ये शुरू में नहीं आ जाएगा एकदम सा, कि हमें जो आदत बनी हुई है बरसों से उसके लिए थोड़ा सा हमें समय लगता है। जैसे उसके लिए हमें क्या होगा कि थोड़ा सा भावनात्मक जुड़ाव रखना पड़ेगा
1: जी।
2: खुले प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछना कोई बुरी बात नहीं होती है, यदि बात स्पष्ट नहीं हुआ, हम कुछ बोल रहे हैं अगर आपको स्पष्टता से उसकी समझ नहीं आती है इसका क्या मतलब है, आपको पूछना भी चाहिए
1: जी।
2: बोलना भी चाहिए लेकिन समय से, कि कैसे हमें कहाँ पे प्रश्न करना है। उसके बाद आप अपनी समझ की भी पुष्टि करें, क्या होता है कि सामने वाली बात कही जो आपने, शब्द को संक्षेप में ना कह करके उसे दोहरा करके भी पूछा और समझा जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि NCBI का एक रिसर्च है कि उसमें कम्युनिकेशन रिसोर्सेज में भी वो क्लेरिफाइंग नहीं हो पाता है, समराइज नहीं कर पाते हैं, एक्टिव लिस्निंग नहीं हो पाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज को जल्दबाजी में करना चाहते हैं, एक समाधान देने की कोशिश करते हैं, हमेशा समाधान देने की जल्दी ना करें। हर व्यक्ति जो अपनी समस्या साझा करता है उसको तुरंत समाधान मांग रहा होता है, उसे कभी कभी ये महसूस करना होता है कि उसे कोई समझ रहा है जब आप सुनते हैं तो, इसलिए पहले सुने समझे फिर बाद में आवश्यकता के अनुसार उसे सलाह दे। क्योंकि सुनना एक मानवीय शक्ति है
1: जी,
2: एक इसको आपको जनरेट करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें सुनने की क्षमता होती है।
1: क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइज भी होती है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं कि जब कभी भी आपको गुस्सा आ रहा हो चुपचाप खड़े हो जाओ, 10 तक गिनती गिनो, और 10 तक जब गिनती आप गिनोगे तो उसके बाद आपको एहसास होगा कि

0: आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया है और उस समय आप रिएक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स आपका जो रिएक्शन है वो इतना भयंकर नहीं होगा जो दस तक गिनती गिनने से पहले का होता। तो क्या ऐसे ही लिसनिंग के लिए हम चाहते हैं कि हम सुने लेकिन हम आदतवश मजबूर हैं और हम सुन ही नहीं पाते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई एक्सरसाइज है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनना केवल कानों का खेल नहीं है
0: जी।
1: हम सोचे कि जो सुन लिया, यह दिल दिमाग और आत्मा का सुंदर तालमेल है। अगर हम सुनते हैं तो हमारा दिल दिमाग और आत्मा उसमें तालमेल होता है। यह हम केवल दूसरे की बात को समझने में मदद नहीं करता है बल्कि स्वयं को भी बेहतर इंसान बनाने का अवसर भी देता है जब हम किसी की बात को सुनते हैं। आज हमारे पास संवाद के लिए पहले से काफी अधिक माध्यम हो गया है। हमारे पास वास्तविक सुनने की आवश्यकता और बढ़ गई है। मोबाइल संदेश है, ईमेल है, वीडियो कॉल है, सोशल मीडिया है, हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं लेकिन किसी व्यक्ति को वास्तविक में समझने के लिए, वास्तविक में सुनने के लिए कनेक्शन पर्याप्त नहीं है, अटेंशन भी आवश्यक है
0: जी।
1: कनेक्शन से ही केवल काम नहीं होगा, हमें अटेंशन भी देना पड़ता है, हमें ध्यान भी देना पड़ता है। यदि हम समय रहते दूसरों को सुनना, समझना और भावनाओं का सम्मान करना सीख लें तो हमारे जीवन में जो आने वाले मतभेद हैं, गलतफहमियां हैं, तनाव है, ये कम किया जा सकता है। परिवार में भी आज सुनना जो है प्रेम को मजबूत करता है। कार्यस्थल पे भी आप सुनते हैं तो नेतृत्व को मजबूत करता है। समाज में सुनना संवाद ये सह अस्तित्व को भी मजबूत करता है। एक अच्छा श्रोता वह नहीं है जो केवल चुप रहता है
0: जी,
1: चुप रहने से नहीं है, एक अच्छा श्रोता वह है जो ध्यान देता है, समझने का प्रयास करता है, प्रश्न पूछता है, भावनाओं को पहचानता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी समझ को भी पुष्टि करता है
0: जी। और हमारे साथ हमारे बहुत ही बेहतरीन श्रोता भी हैं और वो हमारे आज के इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं और अपने सवाल भी पूछ रहे हैं। हमारा अगला सवाल हमें भेजा है नितिन वर्मा जी ने, बाराबंकी से लिखते हैं, क्या सुनने का प्रभाव बोलने पर भी पड़ता है? क्या बचपन में शिशु अवस्था में बिना सुने हम बोलना सीख सकते हैं? और अगर हाँ तो क्या अच्छे या बुरे माहौल की बातों का प्रभाव बच्चों के सीखने पर भी पड़ता होगा?
1: बिल्कुल, सच्ची श्रवण शक्ति हमें केवल दूसरों की आवाज सुनना नहीं सिखाती है, सच्ची श्रवण शक्ति दूसरे मनुष्य को समझना भी सिखाती है। और शायद किसी भी स्वस्थ रिश्ते, सफल संगठन और शांतिपूर्ण समाज की सबसे मजबूत नींव जो है वो सुनना होता है। हम अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें
0: जी,
1: वो एक अच्छे वक्ता तो थे
0: जी,
1: लेकिन साथ में वो एक अच्छे श्रोता भी थे क्योंकि वो हर बात को इतनी सहजता से, अच्छे ढंग से दम, जैसे क्योंकि जब हम राजनीति में होते हैं तो राजनीति में बहुत सारा काम करना पड़ता है, आपको गवर्नेंस भी करनी होती है, विपक्ष को भी सुनना पड़ता है और आपको अपने पार्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसमें आप जब अच्छे लिसनर होते हैं, अच्छे श्रोता होते हैं, तो जब आप सुनने की क्षमता आपकी बढ़ती है तो आप क्या होता है, आप सटीक निर्णय करते हैं
0: जी।
1: आपका जो निर्णय होता है उसमें गहराई दिखाई देता है कि इनकी निर्णय कितना अच्छा है, उनकी लोगों का उन पर भरोसा बढ़ता है कि ये जो बोल रहे हैं इसमें भरोसा है। तीसरा जो होता है, कोई भी परेशानी है, कोई विवाद चल रहा है तो समस्या सुनी जाती है और उस विवाद का हल होता है। हम सुनने की जो कला है उसको हम जैसे एक्टिव लिसनिंग के लिए संवेदनशीलता के साथ, और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं जो कम बोलने से मुख संवाद भी, कभी कभी साइलेंस भी जो होता है वो हमें भी आगे काम करता है और सामने वाले को सम्मान देने का ये सबसे बड़ा तरीका होता है। उसकी जो सारी समस्याएं होती है अगर आप अच्छे ढंग से सुन लेते हैं तो उसका समस्या का निदान हो जाता है। तो सुनने की जो क्षमता है ये बार बार प्रयास करने से, बार बार अभ्यास करने से आपका विकसित होता है। और जब आप एक अच्छे श्रोता बन जाते हैं तो स्वाभाविक है आप एक अच्छा वक्ता भी बन सकते हैं
0: जी। आपसे जानना चाहेंगे सर कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ होता है कि आपके जो अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो सुने, तो आप उन्हें कैसे सुनवाएंगे, इस पर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। हमारी चर्चा आगे इस पर कंटिन्यू रहेगी लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं के मन में भी काफी सारे सवाल होंगे। अगर आपके मन में ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9868107070, 9868107070, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं दिलीप कुमार पाठक जी। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला। कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: लेकिन सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम सुनाना तो चाहते हैं, सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। अब ये समस्या हमें घरों में ही नहीं, हमारे वर्क प्लेसेस में भी देखने को मिलती है। कोई एम्प्लॉयर है जो चाहता है कि उसके एम्प्लॉई उसकी बात सुने। प्रॉब्लम के सोल्यूशन तब तो देंगे जब वो सुनेंगे एम्प्लॉयज़। अब सुनना ही नहीं चाहते हैं तो एम्प्लॉयर क्या करें? यही सवाल सर हमारा आपसे अगला है। टॉपिक है आज का हमारा रेनबो हेल्पलाइन का, व्हाई लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। और आज के हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हैं श्री दिलीप कुमार पाठक जी। जी सर,
1: देखिए, सच्ची श्रवण शक्ति में केवल दूसरों की

आवाज सुनना ही हमें नहीं सिखाती है, हमें दूसरे मनुष्य को समझना भी सिखाती है। और शायद किसी भी स्वस्थ रिश्ते, सफल संगठन, शांतिपूर्ण समाज की मजबूत जो नींव है वो सुनना है। अब कंपनी में जो कोई समस्याएं आती है उसके मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि इंदिरा नुई का नाम आप लोगों ने सुना, वो एक सफल सीईओ रही थी। तो उनका कहना था, उनका मानना था कि हम अगर कस्टमर के साथ

0: बीच में एक ऐसा तालमेल बनाए, एक ऐसा क्रिएटिंग कल्चर डेवलप करे जिसमें एक्टिव लिसनिंग हो, एक दूसरे को सुना जाए, और उन्होंने ऐसा करी और उस कंपनी को ऊंचाई तक ले गए।
1: जी
0: ऐसे ही एक डेविड एबनी थे जो फॉर्मर सीईओ रहे हैं किसी यूपीएस कंपनी का। ग्लोबल लिसनिंग पे उन्होंने काफ़ी काम किया और कस्टमर और कंपनी के बीच में एक ऐसा ब्रिज का काम किया कि कंपनी की स्ट्रेटजी बनाई कि भाई लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम कस्टमर को नहीं सुनेंगे, कंपनी को नहीं सुनेंगे, तब तक हम वो जो प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं वो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी जो एक सवाल आपने कहा कि जो लिसनिंग की जो सुनने की जो क्षमता कहाँ से डेवलप हम करें, इसके लिए हमें लगता है कि आज के जो पाठ्यक्रम है उसको पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल किया जाए।
1: जी ये सवाल भी हमारे पास आया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली केवल बोलना सीखना, लिखना और पढ़ना सिखाती है लेकिन सुनना नहीं सिखाती, तो क्या आपको लगता है कि अच्छा श्रोता बनने की ट्रेनिंग भी आज के समय की बड़ी जरूरत है?
0: बिल्कुल, इसकी बुनियाद हमें अपने घर से ही रखना पड़ेगा कि हम बोलने की तो सिखा देते हैं।
1: जी
0: बोलना हमें तो आ जाता है, चलना आ जाता है, लेकिन क्या सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, क्या सुनने से हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि बोलने तो ठीक है हमने सीख लिया, लेकिन सुनने की जो कोई कला है वो कभी अगर उसको पाठ्यक्रम में शुरू से ही प्राथमिक विद्यालय में, उच्च विद्यालय में, महाविद्यालय, हर जगह के करिकुलम में अगर उसको रख दिया जाए। और हमें तो कुछ लोगों से अभी हम लोगों की बातचीत में पता लगा है कि लिसनिंग स्कूल की जरूरत है यहाँ पे।
1: जी
0: क्योंकि अगर लिसनिंग स्कूल होता है, लोग सुनते नहीं है, तो आज समाज में इतनी बड़ी जो समस्याएं आ रही है, ना सुनना एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको आगे बढ़ाने के लिए सुनने को एक बड़े ही विचार ढंग से, क्योंकि डेल कार्नेगी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, यदि आप अपने आप को अच्छा वक्ता बनाना चाहते हैं तो पहले एक अच्छा श्रोता बनिए। वो ऐसे ही एक हैंगिस में हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ, ध्यान से सुनकर बहुत कुछ सीखा हूँ, ज्यादातर लोग कभी सुनते ही नहीं है। ऐसे ही ओशो का भी एक विचार है कि आंख से ज्यादा चौकन्ने हैं कान, इसलिए सुनने की कला ही मनुष्य को एक गहराई और समय प्रदान करती है। अगर आप सुनने की कला आप में डेवलप हो गया तो एक आप सफल इंसान बन सकते हैं, एक सफल प्रवक्ता बन सकते हैं, एक सफल वक्ता बन सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट में अभी देख रहे थे, अभी बहुत दिनों से क्रिकेट आजकल युवाओं का एक बहुत ही बड़ा उसके पीछे पागल रहते हैं
1: जी।
0: तो जो कैप्टन कूल के नाम से, जो सुनता अच्छा है, जिसको कैप्टन कूल के नाम से जाना, तो वो लिसनर बड़ी अच्छा होते हैं। लीडरशिप की जो क्वालिटी भी होती है वो लिसनिंग, लिसन मोर, एल से जो पहला होता है लीडरशिप में वो लिसन ही होता है, लिसन मोर। इसलिए भगवान ने हमें बनावट में भी दो कान दिए, सुनो ज्यादा, लिसन मोर। सुनना एक बहुत ही प्रभावशाली कला है, इसको हम लोग बार बार अभ्यास करके, बार बार उसको अपना प्रयास करके हम सुन सकते हैं। घर में माँ बाप की सुने, स्कूल में शिक्षक का सुने, ऑफिस में अपने बॉस का सुने, देश में, समाज में जो हमारे नेता हैं, प्रनेता हैं, राज्य, उनकी बात को सुने, समझे और फिर काम करें, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी बढ़ सकता है।
1: जी सुनना क्यों बहुत जरूरी है, आज हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की रेनबो हेल्पलाइन में, और बहुत कुछ जानने की कोशिश की, और ये भी समझा कि आज के समय में बहुत मुश्किल है सुनना, लेकिन सुनना जरूरी है। चलते चलते सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे रेनबो इंडिया के लिसनर्स के लिए, कोई खास एडवाइस, कोई खास टिप?
0: मैम हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों को अपने पर यहाँ इल्जाम बहुत है, शिकायतों का दौर देखता हूँ थम सा जाता हूँ, लगता उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। इसलिए सुनना बहुत ही जरूरी है, जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम उसको ध्यानपूर्वक उसको अमल नहीं करेंगे, तब तक उस पर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए लिसनिंग कम्युनिकेशन रिसर्च यह सिखाती है कि आपको ध्यान देना है, समझने का प्रयास करना है और भावनाओं को पहचानना है और दूसरे मनुष्य को समझना है, तो आपको सुनना ही पड़ेगा, लिसन मोर, और आगे बढ़ने का एक सबसे प्रयास कर सकते हैं आप सुन करके, दूसरों को समझ करके, इसे सुनना बहुत ही जरूरी है।
1: बहुत बहुत बेहतरीन सर, और आज के इस कार्यक्रम के जरिए डेफिनेटली हमारे लिसनर्स ने बहुत अच्छी बातें सुनी और उन अच्छी बातों को अमल में लाएंगे और जिंदगी में बहुत अच्छा ग्रोथ पाएंगे। बताना चाहेंगे आज आप हमें सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन में, और हमारे आज के एक्सपर्ट गेस्ट हैं मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल वर्कर, अकेडमिशियन फॉर लास्ट 3 decades और कैंसर अवेयरनेस को लेकर अपनी लाइफ के 30 से 32 साल न्यौछावर करने वाले श्री दिलीप कुमार पाठक सर। आज का टॉपिक हमारा

0: रहा व्हाई लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन अब क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो हम यही इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि सुनने का ये जो दौर है वो हमेशा जारी रहे आप लोगों का। इजाजत दीजिए मुझे यानी अपनी मस्त मस्त आरजे माला को और सर को, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। और आप बने रहिए रेनबो इंडिया के साथ और इसी तरह हमारे कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते रहिए और सुनते जाइए आकाशवाणी रेनबो को। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। लीजिए प्रस्तुत हैं दोपहर 2 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी ने आज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। भारत ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग और मशीनरी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। सरकार ने आज देश में चिप निर्माण पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली सेमिकॉन योजना दूसरे चरण को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। निस्तार श्रेणी में दूसरे डाइविंग स्पोर्ट पोत DSV INS निपुण को आज मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने तूतीकोरिन में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 20,800 रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का एक नया सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ा। वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 और बीरपुर बैराज के 25 गेट खोले गए। उज्जैन

में आज भगवान महाकाल की पांचवी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। और खेलों में अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सेरेबनम में आयोजित तुआकु मोहजिन ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। तो ये हैं अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से कार्यक्रम आशियाना, और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरी सृजन। लेकर आई हूं कुछ खूबसूरत बातें, कुछ खूबसूरत गाने और आपका हमारा साथ। आज बात करते हैं, बहुत कॉमन टॉपिक है। देखिए, जब भी त्योहारों का खासकर टाइम होता है ना, तो परिवार में खाना बनाने की जिम्मेदारी किसी एक पर आ जाती है। तो ऐसे में बात कर लेते हैं ना कि परिवार में एक ही पर काम का बोझ डालना गलत है। अब त्योहार में वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी मम्मी हो सकती हैं, चाची, मामी, या फिर आपकी बहन भी हो सकती है, जो कि बस किचन में खड़ी है और आप हैं कि त्योहार के आनंद में खो गए हैं। आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि त्योहार उनके लिए भी आया है। क्या क्या बातें हैं जो कि यहाँ पर हम कर सकते हैं, साथ निभा सकते हैं, और परिवार का मतलब ही है एक साथ होना।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूं आपके साथ सृजन। और इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या त्योहारों के दौरान या कोई भी ऐसा समय जहां पर कि हम एक साथ होते हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, फैमिली टाइम है, तो वहां पर अक्सर सबको इतनी यमी भूख लग रही होती है, लेकिन ऐसे में कोई एक है जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है। मैंने बच्चों को देखा है, अक्सर वो कहते हैं कि हमें नानी घर जा रहे हैं और वहाँ पर वे तरह तरह के पकवान बनाकर खाने की डिमांड करते हैं, और हम भी ऐसा किया करते थे, लेकिन उसे बनाने के लिए जो एक पर्सन रसोई में गया है वो होती हैं हमारी मामी उस समय। और वो अकेली, वो इतनी खुश हैं कि वो सब कुछ कर रही हैं, और फिर जब तक वो खाना आप खाकर, वो फिर उसके बाद शायद हो सकते हैं वो किचन क्लीनिंग में या फिर बर्तन धोने में लग गई हैं, तो आपने उन्हें तो मिस कर दिया ना, कि जब आप सब खाना खा रहे थे, जब वो आपके लिए टेस्टी खाना बना रही थी, वो सिर्फ सुन रही थी, वो वहां नहीं थी, लेकिन वो चाहती, वो वहां होती अगर आप उनका थोड़ा सा हाथ बटा देते। देखिए, किचन तक पहुंच जाइए और वो काम जो कि आप कर सकते हैं उठा लीजिए, चॉपिंग करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि कोई तड़का लगाने में बहुत माहिर हो, तो पापा को बोल दीजिए कि पापा आप तड़का लगा दो, या फिर मामा, नानू, कोई भी हो सकता है जो कि स्पेशल रेसिपी के साथ किचन को उस दिन संभाल ले, सो दैट आपकी मम्मी, जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो रोल आपकी मम्मी प्ले कर रही होती हैं आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाने में। वो कई बार इतना थक जाती हैं और लास्ट में अगर एक रोटी कम भी पड़ गई ना, तो वो सोचती हैं अब स्पेशली एक रोटी कौन बनाए, मैं तो इतने में ही एडजस्ट कर लूँगी। वो क्यों एडजस्ट कर ले जब आपके लिए सब कुछ वो कर रही थी, तो क्या आपने ध्यान दिया कि उनकी ज़रूरत क्या है? इसलिए साथ निभाते निभाते चलिए, और एक साथ जब काम आप बांट देते हैं ना, तो वो कम कम और कम हो जाता है। ऐसे में पता ही नहीं चलता कि कब चुटकियों बजाकर वो काम खत्म भी हो गया। इसलिए जरूरी है कि परिवार, जो कि एक साथ होने का मतलब है, और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें ना, इसका कॉज क्या हो सकता है कि एक ही पर्सन जब बहुत बार इस तरह से काम के बीच में, काम के बोझ के तले दबा हुआ है ना, तो वो चीजों से बचना शुरू कर देता है। हो सकता है उसका अगली बार आप हो सकता है अगली बार जब उस घर में आप आए तो वो आपको नज़रअंदाज करे, आपका आना उसे पसंद ना आए, या फिर वो चिड़चिड़े स्वभाव में आपका स्वागत कर रहा है, हो सकता है मुंह पर मीठी मुस्कान रखते हुए। तो उस स्थिति को आने से पहले ही क्यों ना रोक दें और एक साथ काम करें, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर अगर चलते हैं तो कोई नहीं थकता है और काम भी झटपट निपट जाता है। प्रोग्राम है आशियाना, आप सुन रहे हैं रेनबो, दिल से दिल तक।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
8: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
7: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
9: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
10: इग्नोर नहीं, याद करो।
11: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
12: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
13: अरे सर फिक्र मत।

0: जी मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
0: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: FM रेनबो दिल से दिल तक 102.6 मेगाहर्ट्ज से प्रोग्राम है आशियाना और मैं हूँ आपके साथ सृजन। हम बात कर रहे हैं कि क्यों काम का बोझ हम एक ही व्यक्ति पर डाल देते हैं और ज्यादातर वो सदस्य घर की कोई महिला होती है, मम्मी, बहन, मामी या फिर घर की छोटी बहू, चाची, वो कोई भी हो सकती है। लेकिन जब काम बांट कर किए जाते हैं तो इसके बहुत से फायदे हैं। देखिए, एक तो आपसी संबंध जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं और इमोशनल जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो और जो बॉन्ड है ना, वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। प्लस काम का बंटवारा हो जाता है, यानी काम सब में बट गया, एक पर बोझ भी नहीं आया और झटपट काम खत्म हो जाता है। फिर देखिए कैसे उस डिनर का मजा आता है जिसमें एक एक चीज सब ने बनाई होती है। कई बार तो चम्मच जिसने लास्ट में घुमाया होता है ना सब्जी में, वो भी क्रेडिट ले जाता है। लेकिन उस नोकझोंक को जब आप डिनर टेबल पर एक साथ एंजॉय करते हैं ना, तो उसका मजा और भी दोगुना हो जाता है। कुछ और अगर देखें ना फायदे, तो इसमें एक ये भी होता है कि आपका ना एक दूसरे पर भरोसा बढ़ जाता है। जब कई बार हम कहते हैं कि अगर खाने में हमें रायता बनाना है तो रायते की जिम्मेदारी तो आपकी है, आपने भरोसा कर लिया कि अब रायता तो वही बनाने वाला है। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि स्वीट डिश बनाने की जिम्मेदारी मेरी, या फिर स्वीट डिश तो आज बाहर से आने वाली है। तो जब काम एक दूसरे पर छोड़ दिया जाता है तो वो भरोसा, वो मजबूती आ जाती है कि अब वो इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि सोचिए वो काम हो गया। और एक साथ काम करते करते वो जो गॉसिप होती है ना कि फला फला ऐसा हुआ और वैसा हुआ, यानी विचारों का आदान प्रदान होता है, काम करते करते बातें करने का भी अपना ही एक मजा होता है। और स्ट्रेस रिलीफ, देखिए एक सबसे अच्छा बेनिफिट जो है ना इसका, वो है स्ट्रेस रिलीफ। यानी जब आप कुछ करते करते इरिटेट ना होकर उसे एंजॉय कर रहे हैं, सब आपके साथ हैं, आप ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि कोई स्ट्रेस नहीं है, सब एक साथ है और आपकी हिम्मत बनी रहती है। और एक जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफ़र करना बच्चों में अच्छे संस्कार। जब बच्चों ने ये देखा होता है ना संयुक्त परिवारों में कि काम सब मिलकर कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी पहुँच जाता है। सबको एक साथ जो है काम करने की, सहयोग देने की, एकता से मिलकर चलने की सीख मिलती है। यानी हम साथ साथ हैं। और देखिए ये गाना भी यही कहता है कि जिंदगी मिलकर बिताएंगे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: देखिए अब कुछ और बेनिफिट्स पर बात करें। हम बात कर रहे हैं आशियाना प्रोग्राम में आज की, एक ही व्यक्ति पर काम का बोझ डाल देना, घर के काम का बोझ डाल देना बिल्कुल गलत है। तो ऐसे में एक साथ जब हम काम करते हैं तो इसके कई फायदे होते हैं। और देखिए जॉइंट फैमिली में जब आप एक संयुक्त बड़े परिवार में होते हैं ना, तो ये फायदे और भी मल्टीपल हो जाते हैं। देखिए एक ही टाइम पर अगर सब रसोई के काम में लगे हैं तो शायद एक ही जगह बिजली बच रही, एक ही जगह की लाइट्स ऑन है, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स भी हो रही हैं, काम जल्दी निपट रहा है। आपने सुना होगा हम पहले, अगर थोड़ा सा पहले के चैप्टर्स देखे ना, तो साझा चूल्हा कर तो गाँव के सभी एक परिवार की तरह एक साथ एक दिन ऐसा चुनकर खाना बनाया करते थे जिसमें सभी अपना योगदान देते थे। सिर्फ महिलाएँ नहीं, पुरुष भी बढ़ चढ़ कर साझा चूल्हा, साझे तरह से जब रसोई का काम होता था तो निभाते थे। तो हमने देखा कि ऐसे में कई आर्थिक बचत भी की जा सकती है जब एक साथ काम किया जाता है, बच्चों की बेहतर परवरिश होती है, और जो भी हमारे एथिकेट्स हैं यानी जो भी हमारे संस्कार हैं, मूल्य हैं, वो एकदम से ट्रांसफर हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब देखा देखी ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। और आप जब उत्सव मनाने के लिए, फेस्टिव टाइम के लिए एक साथ आए हैं तो देखिए ना, वो मज़ा भी दोगुना हो जाता है कि एक साथ सबने खाना बनाया, एक साथ सब खा रहे हैं। तो जो घर का काम जो भी किसी एक व्यक्ति पर आना था वो अब एक साथ होने वाला है। तो मिलकर उत्सव मनाने से छोटे से छोटा त्यौहार भी जो है ना वो बड़ा हो जाता है और खुशियां दोगुनी आ जाती है। तो चलिए हम ऐसा सोचते हैं आज से और अभी से कि घर का काम किसी एक व्यक्ति पर ना छोड़कर सब मिलकर चलेंगे।

और एक साथ जो है उस काम को बांटेंगे ताकि झटपट वो काम हो जाए। जब दिल एक साथ धड़कते हैं परिवार में सबके, तो क्यों ना हाथ भी एक साथ उठे काम करने के लिए। और फिर जब ये हाथ झटपट फ्री हो जाते हैं ना, तो इन हाथों और पैरों से झूम झूम कर नाचने का अपना ही अलग आनंद होता है। सुन रहे हैं आप आशियाना अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी गुरेश सृजन के साथ।

और दिल को धड़कने दीजिए और दिल से दिल को मिलने दीजिए। दिल से दिल तक का रिश्ता आपका और हमारा। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और फिर एक बार रेनबो के प्रोग्राम्स में जुड़ते हुए आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम 3 से 4 आई डोनेशन विषय पर आज बात करेंगे।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
3: लिखते हैं हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं।
3: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
3: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
3: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
1: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
3: जी।
1: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
3: श्रोताओं, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
1: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
3: जी।
1: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
3: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
1: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
3: जी।
1: लेकिन यह जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
3: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
1: जी हाँ श्रोताओं, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था
3: जी।
1: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओं, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
3: जी।
1: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
3: जी हाँ श्रोताओं, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है
1: जी। श्रोताओं एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर
3: जी,
1: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारे आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
3: जी हाँ श्रोताओं, मशीनों को रिटायर करने की जापान की ये छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
1: तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए
3: जी,
1: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
3: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
1: श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
3: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
3: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न है,
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है।
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
3: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर

0: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
4: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
5: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
4: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
5: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
4: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
5: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे, तो कभी उन

0: अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
1: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो,
3: भारत माता की
2: जय,
3: भारत माता की
2: जय।
1: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजा मंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगाभाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
0: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगाभाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
1: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
0: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
0: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
0: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
1: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
0: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
4: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूं तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
0: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
1: साहब ये पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
0: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
1: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
0: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
1: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर

0: गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई।

0: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
1: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
0: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो?
1: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
0: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
1: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
0: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
1: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
0: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
1: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
0: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
1: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
0: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
1: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। कुदरत ने कितने ही खूबसूरत नज़ारे बख्शे हैं इंसान को, और इन हसीन नज़ारों को देखने के लिए एक नायाब तोहफे से हम सभी को नवाजा है, जिसे हम आंखें कहते हैं। जाने कितनी ही शायरी और तारीफ नजर की गई है हसीन निगाहों के नाम। जितना बेशकीमती है ये कुदरत का तोहफा, उतनी ही जरूरी है इनकी देखभाल भी। और जरा सोचिए कैसी होगी उनकी जिंदगी जो जीवन के तमाम रंगों को देखने से महरूम है। लेकिन मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है उसके चलते नेत्रदान करना सहज हुआ है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेशनल आई डोनेशन पखवाड़ा चलेगा, और इसीलिए आज हम नेत्रदान जैसे अहम विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश, जो डायरेक्टर प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नेत्र विज्ञान लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली के। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरा सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। जो आंखों की ब्लाइंडनेस है या अंधता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ को ठीक किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। उसमें से एक होता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस
2: जी।
3: अब सबसे पहली बात तो यह है कि

0: कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया मैं कहूंगा जिस तरह से कॉर्निया जो है सबसे ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी एक झिल्ली है आंख की, सबसे आगे होती है,
1: जी
0: उसको हम कॉर्निया कहते हैं, उसको या आप कह सकते हैं आंख का शीशा
1: ओके,
0: जो कि
1: सरल
0: ट्रांसपेरेंट,
1: भाषा में
0: या
1: जी।
0: कुछ लोग इसको काली पुतली कहते हैं, लेकिन काली पुतली आयरिस को भी कहते हैं, तो हम कॉर्निया की बात कर रहे हैं। तो ये कॉर्निया यदि किसी भी बीमारी से क्षतिग्रस्त हो जाती है, खराब हो जाती है,
1: जी
0: तो आप समझें कि हमें दिखना बंद हो जाएगा। अब इस तरह के जो मरीज हैं, यदि हम कहें कि विश्व में करीब 11 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 11 मिलियन मरीज हैं, और हर साल इसके अंदर करीब 25,000 लोग सिर्फ इंडिया में बढ़ जाते हैं। तो अब समस्या है, 25,000 बढ़ जाते हैं, लेकिन हम कहें कि डोनेशन कितना होता है हर साल, कितने लोग अपनी आंखों को दान करते हैं, तो उसका आंकड़ा है 50,000। 25,000 बढ़ गए और 50,000 ने डोनेट किया, और करीब हमारे ट्रांसप्लांट के मतलब कितनों को आंखों का दान मिल पाता है, वो भी करीब 25,000 के आसपास है। तो बहुत बड़ा गैप है, जबकि हमको जो बैकलॉग है 11 मिलियन का, उसको हमें पूरा करने के लिए करीब 1.5 लाख डोनेशंस की जरूरत है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई है, इसमें बहुत बड़ा गैप है।
1: जी
0: जी
1: सर, कॉलर हैं एक कॉल लाइन पे,
0: जी
1: उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: जी
2: गुड आफ्टरनून।
0: जी
1: जी
0: गुड आफ्टरनून,
2: अमित बोल रहा हूँ मैम, वडोदरा गुजरात से।
0: जी
2: आई रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, राइट?
1: हाँ जी, हाँ
0: जी
1: जी पूछिए
2: जी। सो मैम, मुझे जानना है कि ये छोटी उम्र में नंबर आने आने का रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि 14 एज हो या फिर 18 एज हो।
0: आप चश्मे की बात कर रहे हैं, चश्मा क्यों लग जाता है ये कह रहे हैं?
2: जी सर, जी वही बोल रहा हूँ मैं कि इतनी जल्दी चश्मा क्यों लग जाता है, क्योंकि नॉर्मली 50 या फिर 60 एज हो तब लगना चाहिए, राइट?
0: जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है, और आज के ज़माने में बिल्कुल वाजिब इसलिए है क्योंकि आजकल आपको पता है, यदि आप दाएं बाएं ऊपर नीचे देखें, तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी नियर वर्क में लगा हुआ है, या तो वो अपना सेलफोन देख रहा है या कोई और चीज़ देख रहा है,
1: कंप्यूटर पे
0: कंप्यूटर
1: या
0: है या
1: लैपटॉप
0: सेल
1: पे।
0: टॉप है, लैपटॉप है, इसमें लगा है, और उसके पास वो इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। खासकर माताएं जो हैं, वो शुरू से ही बच्चे को एक सेलफोन, हर एक बच्चे के पास एक सेलफोन होगा। एक तो ये कारण मुख्य माना गया है, जब ये सेलफोन इतने ज़्यादा नहीं थे, तो आपकी बात सही थी कि वो 14 या 15 साल, वो नेचुरली 14 या 15 साल में लगता था। मुझे भी 15 साल में ही लगा, सभी को लगता था, लेकिन आजकल देखा जाए तो शुरू से लग जाता है। इसका एक मुख्य कारण है बहुत ज़्यादा अकेले में या कमरे में बंद हो के पास का काम करना और लंबे आवर्स तक करना, बाहर ना खेलना, ये 3 मुख्य कारण हैं जो कि कम उम्र में चश्मे के लिए जनकदायक हैं। जी
1: सर, एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर।
0: जी
1: हेलो,
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार
0: जी, नमस्कार।
3: ये 51 साल उम्र है सर मेरी। 51। एक साल पहले मेरी एक आंख की रोशनी चली गई। कैसे? अटैक की वजह से गई है ये।
0: अटैक
3: ऐसे बोला है हमें उन्होंने, जो लिख के कागज बने हुए हैं मेरे पास, ऐसे बोला कि अटैक यहाँ पड़ गया इसका, इसलिए चली गई।
0: तो
3: इसकी रोशनी वापस आ सकती है सर?
0: अटैक मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, अटैक से मतलब
3: हार्ट अटैक होती है कि आंख में अटैक पड़ गया, ऐसे समझाया गया हमें।
0: तो उसके बाद फिर नजर नहीं आया,
3: नजर आंख में रोशनी नहीं
0: तो क्या आपको कोई ब्लड प्रेशर या शुगर का भी प्रॉब्लम
3: नहीं है? कुछ नहीं है, सब चीज बिल्कुल ठीक ठाक है।
0: अच्छा,
3: अचानक हो गया, फिर हम हमारे फादर उनको हमें वहाँ ले गए, उन्होंने दिखाया, वो एकदम चले गए वहाँ का जी। हो सकता है रोशनी वापस आ जाए,
0: हाँ,
3: बोला उन्होंने।
0: तो जब हम अटैक की बात करते हैं, आंख के अटैक की बात, तो हमारे 2 मुख्य अंग होते हैं आंख के, एक को कहते हैं हम रेटिना, ठीक है, और दूसरा होता है ऑप्टिक नर्व, जिसे नस कहते हैं, जो दिमाग से जुड़ी होती है, ठीक है। इन दोनों के अंदर ही यदि जो हमारे जैसे हार्ट की धमनियां होती हैं, और यदि इन दोनों अंगों की आंख के रेटिना या ऑप्टिक नर्व की जो धमनियां होती हैं, उनमें रक्त प्रभाव यदि कम हो जाता है, तो उसमें अचानक नज़र चली जाती है। और अचानक का मतलब यदि उसका 24 आवर्स या जल्दी से जल्दी यदि वो इलाज नहीं हो पाता तो, या स्टार्ट नहीं हो पाता, तो उसके अंदर थोड़ी कम गुंजाइश होती है नज़र आने की। आपके केस में कहाँ पे प्रॉब्लम थी ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन यदि डॉक्टर साहब ने बोला था कि एक तरह का अटैक है और नज़र नहीं आ रहा, तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी रही होगी आपकी।
1: श्रोताओं, आज

0: श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। और हम बात कर रहे हैं आई डोनेशन फोर्टनाइट की, जो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। और आज इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश, जो डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है नेत्र विज्ञान लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली के। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ।
2: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: मेरे तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बच्चा जन्म लेता है
2: जी,
1: तो क्या ये कैसे पता चले कि जिससे पहले अगर वो आदमी ब्लाइंड है और उसके बच्चा हुआ है, तो क्या वो बच्चा उसकी आंख को ठीक है या ब्लाइंड है या क्या है,
2: मतलब उसे दिखाई दे रहा है या नहीं,
1: कि वो बच्चा ब्लाइंड है, नंबर एक। नंबर दूसरा मेरा ये कहना है कि जो कॉर्निया है
2: जी,
1: जैसे आजकल 17-18 साल की हो जाती है, और वो आजकल पुतली जो फैला के जो है वो ये कह देते हैं कि साहब अब आपका चश्मा हट गया है, जो रशिया पद्धति है, तो क्या उनकी चश्मे से पुतली को चौड़ा करके उनकी चश्मा उतार देना
2: जी,
1: तो क्या 20 या 25 साल के बाद उनकी आंखें खराब हो सकती हैं, या उनकी आंखों में कोई आरपी का या किसी चीज का केस आ सकता है, या वो सफलता है या नहीं है।

0: ठीक है।
1: और तीसरा मेरा ये कहना है कि जैसे अभी आपने ये कहा कि भाई आंखें दान लोग करते हैं कम और लेने वाले लगे रहते हैं ज्यादा,
0: जी।
1: तो मेरा ये कहना है कि जितना भी हमारे यहाँ एक्सीडेंट होता है और उसकी आंख जो है जब वो मरी गया है
0: जी।
1: तो उसकी आंख जो है तुरंत निकाल लेनी चाहिए, जैसे और ऑर्गन निकालते हैं हम
0: है।
1: तो ये तो पूरे विदेशों में भी ऐसा ही है कि मरने के बाद
0: जी।
1: उसके ऑर्गन निकाल लेते हैं जिससे और लोगों के काम आ सके। अब अंत में मेरा ये कहना है कि जीते जी रक्तदान और मृत्यु के पश्चात नेत्रदान।
0: बिल्कुल,
1: नेत्रदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ।
0: जय किशन जी, अग्रवाल जी, आपके विचार सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके जैसे श्रोता बहुत कम होते हैं और जो आपकी सोच है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। आपका पहला प्रश्न था कि जो बच्चा जन्म लिया है ये कैसे पता चले कि उसकी आंख में कोई डिफेक्ट है या नहीं, उसे दिख रहा है या नहीं। इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि अधिकतर हॉस्पिटल्स में, हमारे यहाँ लेडी हार्डिंग में भी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है, आंखों की भी जांच की जाती है
2: जी।
0: और डॉक्टर के द्वारा देखा जाता है कि आंख में कोई ऐसी जन्मजात दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से उसके आंख की रोशनी का विकास ना हो। हम जानते हैं कि जब बच्चा होता है जैसे बाकी शरीर बढ़ता है ऐसे ही आंख का भी विकास होता है, उसकी नज़र भी बढ़ती है। तो पहली बात तो यह है कि हॉस्पिटल में ही डॉक्टर बता देता है अगर उसे लगता है कि कोई डैमेज है और उसका इलाज अच्छी जल्दी से हो पाए। और दूसरी बात ये होती है कि पीरियोडिक, माता पिता का भी ये फर्ज है कि वो पीरियोडिकली 6 महीने पे या 9 महीने पे एक बार जरूर अपने जो बच्चे वाले डॉक्टर साहब हैं उनके पास जाके ये सवाल करें जो आपने किया है कि भाई इसे दिखता तो है ना ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो तो बड़ा आसान तरीका है पता करने का। दूसरा, आपने बोला था कि आजकल जो लेडीज होती हैं, जेंट्स भी हैं उसमें 17-18 साल के, जिनके चश्मा लगा होता है और ये प्रचलन है कि वो अपने चश्मे को उतारना चाहते हैं, तो क्या ये पद्धति कामगार है, मतलब ठीक है? तो मैं कहूँगा कि ये जो चश्मा उतारने वाले ऑपरेशन थे इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, नई नई मशीनरी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ये आज के ज़माने में ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल है, ठीक है। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि ये नहीं है कि हर एक चश्मे को उतार दिया जाए और सक्सेसफुल हो, लेकिन हाँ उसकी भी जांच होती है और डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको 100% ठीक हो पाएंगे या कुछ कम नज़र आएगा एक दो लाइन, लेकिन सक्सेसफुल तो है। तीसरा आपका ये था कि जैसे विदेशों में कोई भी किसी की सड़क पर दुर्घटना होती है तो वहाँ पर एक नियम है, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी से जो वाकिफ जो अंग हैं उनको निकाल लिया जाए। लेकिन हमारे जब हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो हमें तो नियम से बंधे हुए हैं। जो अंग दान करना या नेत्र दान करना है उसके नियम है और पहला उसका प्रमुख नियम है कि नेत्र का दान सिर्फ मृत्यु के बाद ही हो सकता है, और क्योंकि बॉडी की जिम्मेदारी उसके रिलेटिव की होती है
2: जी, बिल्कुल,
0: ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं कि जिस तरह से आप जागरूक हैं, आपने बोला कि आपको भी अंधता है और आप इतने जागरूक हैं और मुझे उम्मीद है आप भी अपने समाज में इसको जागरूक करते होंगे, और इसीलिए आज हम बैठे हैं पूरे दुनिया को बताने के लिए कि आई डोनेशन एक शीर्ष दान है और सभी को करना चाहिए। जब हम जागरूक हो जाएंगे तो जो आप चाहते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति दान करे और ये जो डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाए।
2: बिल्कुल, ज़रूरत है जागरूकता की। डॉक्टर साहब, हम आपसे आज बात कर रहे हैं आई डोनेशन की, जो आज का हमारा विषय है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कोई या खासकर बच्चे अपनी दृष्टि खो देते हैं।
0: जी, तो मैंने शुरुआत में बताया था कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट एक तरह से शीशे की तरह है। तो यदि हम इसके कारणों की जांच करें, जैसे अभी प्रीवियस श्रोता जी ने बताया था ये कैसे पता चले, तो डॉक्टर का पहला फर्ज है जब वो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसकी कॉर्निया को देखता है। यदि कॉर्निया ठीक है तो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि उस बच्चे को जरूर दिखना चाहिए
2: जी।
0: तो पहले तो ये देखा जाता है कि कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है, उसमें कोई सफेदी तो नहीं आ गई है
2: जी।
0: तो ऐसे बच्चे को जन्मजात की बीमारी की वजह से भी अंधता हो सकती है कॉर्निया। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है चोट लग जाना। जैसे जब रामायण चली थी तो आपको पता होगा कि तीर कमान का बहुत प्रचलन हुआ था। इस तरह से कुछ खेल होते हैं, गिल्ली डंडा हुआ, ये बच्चों में कॉमन होते हैं, या कोई चोट लग गई बॉल।

0: लग गई,
1: नोकीली पदार्थ
0: नुकीली
1: जो
0: चीजें
1: होते हैं, नोकीली
0: इसी,
1: चीजें।
0: या इस तरह से मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, आंख में कुछ गिर गया और आपने रगड़ दिया और आंख में जख्म हो गया और उसका इलाज कराया, लेकिन जख्म जब हील हुआ तो वहां पे कुछ निशानी छोड़ गया जिसकी वजह से आपको कम दिखने लगा।
1: अच्छा।
0: इसी तरह से जैसे इंडस्ट्री है जहाँ पे एसिड यूज होता है या बैटरी यूज होती है वहां पे भी चोट लग सकती है,
1: जी।
0: या खराद की मशीनें हैं इनकी वजह से चोट लग सकती है ना। तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं और इनसे हमें बचना चाहिए,
1: सावधानी
0: खासकर चोट
1: बरतनी
0: से।
1: चाहिए।
0: जी,
1: जी
0: ये
1: जी
0: मुख्य कारण है।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, जिन लोगों की आंखों की सर्जरी हुई है क्या वो भी आंखें डोनेट कर सकते हैं?
0: ये बहुत ही, मैं सोच रहा था ये प्रश्न मेरे से कब पूछा जाएगा, आपको कांग्रेचुलेशन आपने पूछ ही लिया। इस तरह से जिस तरह से ये क्वेश्चन है, क्या मेरा ऑपरेशन हो गया है, मैं चश्मा लगाता हूँ तो क्या मैं भी डोनेट कर सकता हूँ?
1: जी,
0: तो लोगों को ये पता नहीं है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे मैं आया हूँ आपसे शेयर करने के लिए कि इस धरती पे कोई भी व्यक्ति है, आई डोनेशन इज पॉसिबल फ्रॉम फर्स्ट ईयर, 1 साल से लेके 80 साल तक के व्यक्ति डोनेट कर सकता है।
1: जी।
0: चाहे उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चाहे उसे डायबिटीज की बीमारी है, वो भी डोनेट कर सकते हैं। चाहे उसे अस्थमा है, चाहे उसे स्किन की डिजीज है, वो कर सकता है।
1: कोई भी
0: बीमारी है शारीरिक, कर सकता है।
1: जी।
0: कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, उसमें नहीं कर सकते। जैसे मान लो वो आईसीयू में था या उसे एड्स की बीमारी है, इसमें नहीं कर सकते। लेकिन अधिकतर लोग कर सकते हैं, चाहे उसका पहले आंख का ऑपरेशन हो गया है, चाहे उसने पुतली का पहले ऑपरेशन कराया हुआ है। अभी रिसेंटली मुझे एक वाकया याद आया, उसको उसने आई डोनेशन लिया, उसे दिखने लगा, और जानकारी रखी है जब उसकी डेथ हुई तो उसने फिर से डोनेट कर दिया
1: ताकि
0: और उससे कोई आगे वाले को दिखने लगे,
1: कोई देख सके।
0: मतलब कितना अच्छा विचार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: है ना
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे।
0: जी
1: हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से मुजाहिद बात कर रहा हूँ, मैं आरबी पेशेंट हूँ।
0: आरबी
2: जी डॉक्टर साहब, कुछ हमारा इनका इलाज है आंखों का। मेरी एज जो है 57 है, अब तो 5-7% रोशनी बची है। कोई इस तरह का है कुछ?
0: आरपी मतलब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा।
2: जी जी हाँ जी हाँ जी
0: जी। आरपी
2: तो कोई इस तरह की दवाई आई हो, कोई आई ड्रॉप या कोई टेबलेट इस तरह की, जैसे कुछ जो आंखों का आगे ऐसे रहता हर टाइम, जैसे घटा बादल से जो रहता है कोहरा रहता है
0: जी,
2: इस टाइप का ऐसा रहता है,
0: जी।
2: तो चलने फिरने में प्रॉब्लम आ गई, अकेला जा भी नहीं सकता मैं
0: जी। मुझे
2: इसका,
0: मुझे आपके साथ पूरी सिंपति है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में जो हमारी आंख का रेटिना होता है, जो एक तरह से ब्रेन की तरह होता है, उसके अंदर करीब 20 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे उसमें तब्दीली आती है, तो धीरे धीरे उसकी नज़र दिखना बंद हो जाता है। अभी हमारी साइंस ने इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है कि इसके लिए कोई कारगर इलाज हो, अभी वो सारा एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, और इसका फिलहाल ऐसा कोई दवाई खाने या आई ड्रॉप से ऐसा कोई इलाज संभव नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि नेत्रदान कौन कर सकता है और कब कर सकता है। आपने बताया कि हर कोई, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, वो नेत्रदान कर सकता है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि एक इंसान अपनी 2 आंखों से 2 लोगों को रोशनी दे सकता है, ये कितना सही है?
0: जी ये
1: इस पर बताइए।
0: हमारी 2 आंखें होती हैं और हम दोनों ही आंखें दान करते हैं, तो ये तो नेचुरल है कि भाई 2 व्यक्तियों को दिखना चाहिए। लेकिन एक आंख, हमने 2 आंख दान की तो एक एक आंख को लग जाएगा, तो 2 व्यक्तियों को डोनेट हो गया
1: जी,
0: है ना। लेकिन आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जो हमारा कॉर्निया होता है ना, उसमें 6 लेयर्स होती हैं
1: जी,
0: और जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है वो इन 6 लेयर्स में से किसी भी लेयर के प्रॉब्लम की वजह से अंधता हो सकती है। तो आजकल तरक्की इतनी हो गई है, मशीनों से ये जांच की जाती है कि कितनी लेयर अफेक्टेड है, और यदि उसको हटा दिया जाए तो उसको दिखने लगेगा। तो इस तरह से आजकल कई तरह के ऑपरेशन होते हैं, अंधता होती है, तो आजकल एक आंख से 4 लोगों का फायदा हो सकता है।
1: इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल,
0: 4 लोगों का फायदा हो सकता है, डिफरेंट तरीके।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे।
0: जी
1: हेलो।
3: हेलो नमस्कार
0: जी।
1: नमस्कार,
3: मैं जीतेंद्र दोसारिया बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी,
3: जिला हरिगढ़
1: जी, पूछिए आप अपना सवाल पूछिए।
3: पहले तो डॉक्टर साहब आपको नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताएं।
3: मेरा सवाल है, मैं काला पानी से मेरे दो समस्याएं, पहले तीन समस्याएं आपसे।

0: काला मोतिया।
1: हाँ, पहले तो मेरे काला मोतिया है, इसकी 11 सर्जरी हो चुकी है।
0: अच्छा जी।
1: और एम्स के डॉक्टर आए थे जीवन सिंह चतियाल।
0: हाँ हाँ
1: उन्होंने बोला था कि आप हमारे पास आ जाइए एक बार, आप देख के बता देंगे कितना कॉर्निया में जाने या देखने लायक कर देंगे, नहीं ऐसा 50-60 मीटर देखने लायक कर देंगे आपको अगर नसबी ब्लॉक हो गई होंगी तो। पहला तो सवाल मेरा यह है कि मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं ब्लाइंड हूँ 2011 से
0: जी यदि। अच्छा। तो हाँ और भी कोई सवाल है?
1: हाँ, एक मेरा दूसरा सवाल है नेत्रदान के विशेष पर, जैसे मधुमेह, शुगर, डायबिटीज या कुछ भी रोग होता है क्या वो भी नेत्रदान कर सकता है?
2: अभी अभी डॉक्टर साहब ने इसी बारे में बताया, शायद आपने इन्होंने डॉक्टर साहब।
0: हाँ और कोई प्रश्न, तीसरा प्रश्न बता रहे थे आप?
1: एक सर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लग जाएगी मैं बोला था उन्होंने।
0: कौन सी लॉजी?
1: लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
0: अच्छा, अब मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब देने की संतुष्ट करना चाहता हूँ आपको। पहली बात तो ये आपने बताया कि काला मोतिया है और आपकी ऑलरेडी 11 सर्जरी हो चुकी हैं, 11 काला मोतिया के। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है उसके अंदर जो आंख की नस है वो आंख में प्रेशर बढ़ने की वजह से ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके कॉर्निया पे अधिकतर केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनको जो अंधता आ रही है वो पीछे नस में खराब हो गई है, कमजोर हो गई है, उसकी वजह से होता है। तो उसका ये आई डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूँ, यदि कोई काला मोतिया का मरीज, चाहे बेशक उसको नहीं दिखता, वो भी आंख दान कर सकता है, क्योंकि काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया अलग चीज़ है और कॉर्निया एक अलग चीज़ है। उसका कॉर्निया ठीक होता है तो वो डोनेट तो कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि शुगर और डायबिटीज़ है किसी को, तो वो भी आई डोनेशन कर सकता है। तीसरी बात ये कि आपको बहुत कम दिखता है, इसके लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप यदि टाइम पे अपनी जांच कराते रहेंगे तो, और दवाइयां लेते रहेंगे, डालने वाली दवाइयां बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं काला मोतिया की, तो जितनी अभी नज़र है वो उससे आप अपना चल फिरने वाला काम कर पाएंगे।
2: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है अभिषेक गुप्ता का। वो जानना चाहते हैं कि उनका कॉर्निया फैट जो है वो काफी बड़ा हुआ है और 20 नंबर का चश्मा वो लगाते हैं, तो क्या ऑपरेशन ना करा के लेंस लगा सकते हैं वो, ये कामयाब होगा?
0: जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आप कह रहे हैं कि आपको -20 का चश्मा लगा हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि यदि मैं चश्मा नहीं पहनना चाहता तो क्या लेंस लगा सकते हैं
2: जी।
0: तो इसके दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस होता है और एक आंख के अंदर लेंस लग जाता है ना। तो यदि हायर पावर होती है तो उन केस को हम ठीक करते हैं लेंस लगा के, लेकिन कई बार जिस तरह से आपका है -20, तो कुछ जगहों पे इस तरह से लेंस आंख में लगाने वाले लेंस इतने मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो ये देखा जाता है कि और भी कई टेक्निक होती हैं चश्मा उतारने के लिए, तो वो डॉक्टर जो है जांच करके ही बता सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि नंबर उतर सकता है, लेकिन उसका रिस्क और बेनिफिट देखना पड़ेगा
2: जी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर
0: जी।
2: हेलो
3: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्कार।
3: नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला 4 सेक्टर से।
0: बताइए
3: डॉक्टर साहब, मैं 75 की हो जाऊंगी और 16 साल पहले मुझे ग्लूकोमा डिटेक्ट हुआ था, तो 8 साल तो मैं दवाई से रही, अब 8-9 साल के करीब हो गए मुझे SLT कराए हुए। तो हमारी फैमिली में एक लीगेसी है आंखें दान करना
0: जी।
3: मेरे मदर 83 के गए थे, वो स्टिचेस वाला उनका ऑपरेशन था, पर वो पहले बोला कि मेरी आंखें जरूर देना
0: जी।
3: तो और अब मैंने अपनी बॉडी दी हुई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनको एप्लीकेशन दूं कि मेरी आंखें जरूर ले लें, अगर ठीक होंगी तो जरूर लें
2: जी।
3: डॉक्टर साहब, एक मैसेज आप प्लीज स्प्रेड कीजिए कि लोग आंखें देने से घबराते क्यों है
0: जी।
3: जब डेथ होती है तो जो रिश्तेदार लोग हैं बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं, मैं थोड़ी सख्त किस्म की हूँ, तो मेरे मदर के टाइम भी उन्होंने बोला कि आपने ये क्या किया, पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा। मैंने कहा ये जन्म आपने भी देखा है कि आपका क्या होगा, तो थोड़ी सी हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए अपने वैल्यूज पर कि हम आंखें क्यों नहीं दान देते
0: जी।
3: मैंने बहुत लोगों के घर घर जाके जब डेथ हुई है तो उनको बड़ी मुश्किल से

0: बनाया कि इनकी आंखें दान करो। जब आंखें जल जाती हैं, इसी मारे मैंने सबकी क्रिमेशन में ही जाना छोड़ दिया। जब आंखें जाती हैं, मेरे दिल में कुछ होता है कि चार पांच लोगों की रोशनी साथ ले गए वो
1: जी।
0: तो प्लीज ये थोड़ा सा आप कहेंगे तो शायद
1: जी
0: अकल आ जाएगी।
1: आई थिंक आपने मेरे मन की बात अपने आप ही बोल दी, और आपने कितना अच्छा विचार किया कि आपके किसी परिवारजन ने आंख दान की थी, आपने खुद एक प्रण ले रखा है कि बॉडी डोनेशन का, और आप चाहते हैं कि नेत्रदान हो। मेरे ख्याल से एक परंपरा ये है कि जब हम बॉडी डोनेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर किडनी, हार्ट, ये वो सभी आता है, उसमें कॉर्निया डोनेशन का भी आता है, तो उसमें अलग से ऐसा कुछ एक फॉर्म होता है, उसमें लिखना होता है कि जब मैं बॉडी डोनेशन होगा तो मेरा कॉर्निया, लीवर, स्प्लीन, बोन, ये सब ले लिया जाए। तो एनीवे, यदि उसमें टिक मार्क नहीं है तो आप फिर से एक बार दोबारा प्रण ले सकते हैं, ऑनलाइन है या आपके आसपास के जो फॉर्म भर के
2: कि मैं आई डोनेशन पर। मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि कौन लोग कर सकते हैं और कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम इसी विषय पर बात करेंगे।
1: जी जी।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट। जी हाँ, यही हमारा विषय है आज का। और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। सर, मेरा अगला सवाल है कि जो लोग इस महादान यानी नेत्रदान को करने का फैसला कर चुके हैं, उन्हें पहले से कौन सी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है?
2: जी, तो मैं कहूंगा कि जैसे हम कोई किसी भी दान की जब बात करते हैं, यहाँ तो हम आंख दान की बात कर रहे हैं,
1: जो महादान कहलाया जाता है।
2: हम जनरल दान की भी बात करते हैं। मान लो कोई आप पैसा देते हैं किसी को देते हैं, एक तो पहले विचार की जरूरत है, है ना। मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारे अंदर एक विचार आता है, तभी तो हम करते हैं ना कुछ। वहां पे जो बैठे होते हैं, कपड़ा दान ये वो, तो सबसे पहले है कि अपने मन में एक विचार तो लाइए, ये अंग तो चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जल जाएगा, लेकिन यदि आप एक प्रण ले लें अपने जीते हुए कि, और प्रण को खुलेआम करिए, सबके सामने करिए, परिवार वालों को बताइए कि मैंने ये प्रण लिया है और ये मेरी अंतिम इच्छा यही है।
1: जी जी,
2: आप सारी धन दौलत ले लेना बच्चों, लेकिन मेरे शरीर को, मेरे आंख को इस फोन पे कॉल करके उनको बुला के मेरी आंखें दान कर देना, जिससे कि मेरे बाद मेरी आंखें देखती रहें, मतलब मेरी आंखें देखती रहें।
1: जी बिल्कुल।
2: तो पहले तो विचार आना चाहिए। तो जब इसके लिए एक फॉर्म होता है जो आसपास के अधिकतर प्राइवेट या गवर्नमेंट सेटअप में मिल जाता है, उस फॉर्म को भरना होता है, उसे पोस्ट करना होता है, और उसके बाद आपको जो हमारा आई बैंक होता है, जिसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आरपी सेंटर, तो वहां भी का फॉर्म होता है, कॉमन फॉर्म होता है। अदरवाइज यदि ऑनलाइन करना चाहें तो उसकी भी एक वेबसाइट है, सिंपल सा है, pledgemyeyes.org। आप वहां पे जाएंगे और दो चार क्लिक के अंदर आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर ये जो रजिस्ट्री है ये आई बैंक में चली जाती है, और वहां पे एक एज ए डोनर आपका नाम लिख दिया जाता है। इसके बाद किसका फर्ज होता है? उसके बाद फर्ज होता है आपके फैमिली मेंबर्स का, उनमें से कोई तो एक व्यक्ति हो जो आपकी इच्छा को पूरी करना चाहे, और उसका फर्ज होता है वो तुरंत कुछ जो फ्री हेल्पलाइंस होती हैं उन पे फोन करे कि भाई मेरे पिताजी या दादाजी, इनका ये इच्छा थी और हम भी यही चाहते हैं। क्योंकि वो आपके कस्टोडियन है, वो मने भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि उनकी इच्छा पूरी करने की है तो वो, जैसे 1919 फोन नंबर है, इस तरह से एक 1800103 5100 और 7100, इस तरह के कुछ नंबर हैं, यदि आप उन पे कॉल करेंगे तो वहाँ पे जो सेंटर है वहाँ से टेक्नीशियंस आते हैं, आपके घर पे आएंगे, हो सकता है कुछ एक आध सवाल पूछें, और उसके बाद ये मुश्किल से 15 या 20 मिनट का प्रोसीजर होता है, और वो जो आंख का शीशा होता है जिसकी हमें जरूरत है उसको वो ले जाते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो एक कॉमन भ्रांति है ना कि भाई आंख दान कर दी तो क्या उसकी शकल खराब हो जाएगी, जो डेड बॉडी है तो, और उसके फनरल है, उसके जलाने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं होता।
1: ये सब भ्रांतियां
2: हैं ये, और कोई डिले नहीं होता, या अगले जन्म में हम अंधे होंगे ये भी प्रूव नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है
1: जी।
2: तो सिंपल सा प्रोसीजर है और आपको करना चाहिए, एज ए फैमिली मेंबर आपका काम है। यदि आप इच्छुक हैं दान करने के, तो जो डेड बॉडी है, जो आपका परिजन चला गया है, सबसे पहले उसकी आंख की लिड को बंद कर दीजिए, जो पंखा चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, और जो एसी है उसको बंद कर दीजिए, मतलब आंख को प्रोटेक्शन देना है, वो खुली ना रहे, नहीं तो जिसका हमें दान लेना है कॉर्निया वही सूख जाएगा, तो उसका फायदा नहीं होगा। और उसके सर के नीचे एक तकिया रख दीजिए, मतलब थोड़ा ऊपर को रहे, तो ये आपका फर्ज हो जाता है कि आंख बंद करें, तकिए पे रखें और कॉल करें
1: जी।
2: तो बाकी काम तो फिर वो जो टेक्नीशियन और डॉक्टर आएगा उसका काम होगा
1: आई बैंक से। सर, एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे। हेलो
3: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी तो आपने बताया कि डायबिटीज वाले भी अपनी आंखें दान कर सकते हैं और बीपी वाले भी
2: जी।
3: अब मेरे को ना अभी 2-3 महीने पहले ऑटोइम्यून डिजीज डिटेक्ट हुई है, जिसमें मेरी आंखें ना बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती थी, और आप जो उन्होंने मेडिसिन दी है उससे वैसे मुझे फर्क है, लेकिन क्या हम अपनी आंखें दान कर सकते हैं?
2: बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कोई भी आंख है, जब तक उसका कॉर्निया ठीक ठाक है, उसी कॉर्निया से आप देख रहे हैं, तो आप दान कर सकते हैं। कोई भी

0: बीमारी है। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन नहीं कर सकता, यदि उसे ब्लड कैंसर है या
1: हाँ
0: आँख का
1: जी
0: कोई कैंसर है या उसे एड्स है या उसे हिपेटाइटिस बी है ना, सिर्फ ये लोग दान नहीं कर सकते, उनका हम डोनेशन लेने से मना करते हैं। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति है जो 1 साल से 80 साल तक का, चाहे उसकी आँख का ऑपरेशन हो गया है या कोई दवाई डालता है या ऑटोइम्यून डिजीज है, अस्थमा है, किडनी की बीमारी है, वो दान कर सकता है।
1: ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे
0: धन्यवाद
1: को बहुत था जब मैं छोटी थी
0: जी
1: तभी जो है सोचती थी कि मैं अपनी आंखें दान करूंगी
0: जी
1: जरूर।
2: जी
1: तो बीच में मुझे डायबिटीज हो गया, वो भी मेरे को 25 साल पहले हुआ
0: नहीं,
1: था, तो
0: जैसे
1: मैं
0: मैंने
1: अपनी
0: बताया
1: आंखें
0: ना,
1: दान
0: ये
1: नहीं कर सकते, लेकिन आज आपने बोला कि
0: जी
1: आंखें डायबिटीज वाले भी दान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं।
1: लेकिन मैंने कहा अब तो ऑटोइम्यून डिजीज हो गई है,
0: नहीं
1: अब
0: नहीं
1: देखती हूँ हो सकती है या
0: जिस तरह
1: नहीं।
0: से आपके ये समस्या को मैंने हल किया और आपका जो विचार है वो इतना अच्छा है कि आप जब भी बाग में जाएं, आपके रिलेटिव हैं कहीं पे भी जो हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ 5 मिनट बैठिए, उनको बताइए। तो यदि आप डेली या इस तरह से 5 मिनट भी बात करेंगे और आपके जैसे ही कुछ और महिलाएं या जेंट्स हो जाएं तो काम बन जाएगा।
2: जी, जागरूकता जो है
1: नहीं
2: बढ़ेगी।
1: सर, वैसे तो मैं बोलती ही हूँ कि जो मेरे लिंक में होते हैं कि अपनी चीजें डोनेट करनी चाहिए जो बॉडी में हो, क्योंकि वो तो हमारे साथ ही भस्म हो जाएंगी, कोई फायदा ही नहीं है। हाँ
0: जी बहुत अच्छे विचार
1: जी,
0: हैं आपके।
1: धन्यवाद
0: जी
1: डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू थैंक यू
2: जी जी
0: थैंक यू।
2: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है कॉल लाइन पे। हेलो।
3: ओम शांति।
0: ओम शांति जी।
3: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
2: जी
3: अभी सर ने अंगदान के बारे में कहा कि हमें अपनी तिल्ली स्प्लीन भी दान दे देना चाहिए, तो मेरा ये पूछना है कि हमारे शरीर में तिल्ली क्या काम करती है, क्या वो महत्वपूर्ण है तिल्ली?
0: नहीं, तिल्ली लीवर और जो हमारे टोटल, जब हम बॉडी डोनेशन की बात करते हैं तो उसमें कई तरह के डोनेशंस होते हैं, जैसे लीवर है, बोन है और हार्ट है, लंग्स हैं, बोन्स हैं, स्किन्स हैं, हेयर है, कॉर्निया है, और उसके अंदर कुछ जगह पे स्प्लीन ली जाती है, कुछ जगह नहीं ली जाती, लेकिन ये हार्ट, लंग, हार्ट, ये महत्वपूर्ण अंग हैं जो लिए जाते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है हमें एकता का, हरिद्वार से। वो पूछ रही हैं कि मेरी बहन की उम्र है 52 साल और उनका जो आईज विजन है वो ब्लर हो गया है। डॉक्टर विजिट पे जब वो गए तो उन्हें इंजेक्शन रिकमेंड किया गया जो काफी महंगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लगवा लिया। 1 वीक हो गया है और आगे लगाने के लिए फिर से उन्हें इंजेक्शन बोला गया है जो काफी महंगे हैं। तो ऐसे में क्या करें, वो इंजेक्शन लगवाएं या किसी और तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है?
0: जी जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 52 साल की उम्र है और धीरे धीरे आपकी नज़र इतनी कमज़ोर हो गई है कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि इसका इलाज इंजेक्शन है और आप एक लगवा भी चुके हैं। तो इंजेक्शन लगाने का ज़रूरत पड़ती है जब हमारी जो आँख का रेटिना है, जिसे हम पर्दा कहते हैं, उसमें शुगर, डायबिटीज़ या किसी और कारण से उसमें कुछ कमी आ जाए और जिसकी वजह से कम दिखने लगे, उसमें सूजन, तो सूजन को कम करने के लिए हमको इंजेक्शन लगाना पड़ता है।
2: जी
0: अभी फिलहाल ये इंजेक्शन बहुत महंगा है, करीब एक इंजेक्शन ही हजारों रुपए में आता है
2: जी
0: और एक गरीब व्यक्ति नहीं लगा सकता। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसके अंदर ये गवर्नमेंट सेटअप में ये फ्री भी मिलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान जो सेवा स्टार्ट की है, उसके अंदर भी ये इसका प्रोविज़न रखा गया है कि ये इंजेक्शन फ्री मिले।
2: जी
0: लेकिन ये बात कि एक इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा, बार बार लगाना पड़ेगा, जी हाँ,
2: जी
0: ये कई बार बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड करता है और डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपकी सूजन एडिक्वेटली कंट्रोल में आ गई है या नहीं, और क्या और इंजेक्शन लगा के जो अभी बची हुई नज़र है क्या उसको ठीक किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, तो
2: जी
0: ज़रूरत तो पड़ती है।
2: जी सर, रिया उत्तराखंड से हमें लिख रही हैं कि उनकी माताजी की उम्र 47 साल है और उनका एक बार ऑपरेशन हो चुका है आईज लेंस डलवाने के बाद। तो क्या होता है ये ट्रीटमेंट, कुछ हो सकता है इसका?
0: उनका मोतिया का ऑपरेशन हुआ और उन्होंने लेंस डलवाया।
2: वो उन्होंने लिखा है कि उनकी माताजी की आंखों में बहुत इचिंग होती थी
0: हाँ
2: और एक बार ऑपरेशन हो गया है,
0: हाँ
2: आइस लेंस डाले हैं आइस में, उसके बाद से ही ये हो रहा है, इचिंग वाली जो प्रॉब्लम है।
0: लेंस मेरा

0: मतलब है कि शायद आप इंट्राओकुलर लेंस की बात कर रहे हैं, जिसे हम जो सफेद मोतिया होता है उसके ऑपरेशन के टाइम पे आंख में डाल देते हैं, है ना। तो लेंस की वजह से इचिंग नहीं होती है, उसके और ही कोई कारण हो सकता है। और अधिकतर इचिंग या इस तरह की प्रॉब्लम का छोटी मोटी का दवाई से डालने से इलाज संभव होता है, लेंस की वजह से नहीं।
1: जी सर, दिल्ली से कियारा हमसे पूछ रही है कि आंखों की तकलीफ का फैमिली हिस्ट्री होने पर क्या खतरा बढ़ जाता है, और खास तौर पर ग्लूकोमा या काला मोतिया होने पर?
0: जी, कुछ ऐसी आंख की बीमारियां हैं जो जन्मजात चलती हैं, उनका रिस्क होता है, और उसमें एक तकलीफ है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर हम कहते हैं कि यदि आपका जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हुआ जैसे बेटे के पेरेंट्स, माता और पिता
1: जी,
0: उसे हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहते हैं, यदि उनमें है तो इस तरह के व्यक्ति को जिसको अभी बीमारी नहीं है उसे पीरियोडिक जांच करानी चाहिए, क्योंकि उसको कुछ परसेंटेज चांस होता है कि उसको हो जाए। ये उसी तरह से है जैसे यदि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको भी हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको भी हो सकता है, है
1: ना। इस तरह से
0: चांस रहते हैं, तो पीरियोडिक जांच करानी चाहिए।
1: जी जी जी सर, जिज्ञासा लिख रही है कि क्या ज्यादा तनाव लेने से या नींद पूरी ना होने की वजह से लेंस प्रभावित करते हैं, क्या इसकी कोई गंभीर सिचुएशन हो सकती है, क्या स्ट्रेस लेने की वजह से भी हमारी आंखों पर स्ट्रेस पड़े या पुतलियों पर, तो उससे कुछ दृष्टि में फर्क या कुछ ऐसा तो नहीं है?
0: यदि स्ट्रेस का मतलब है, आई स्ट्रेस का मतलब है यदि इफ यू आर डूइंग लॉट ऑफ कंप्यूटर वर्क या मोबाइल वर्क का आप कम कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी
1: क्या ये आंख की नस को प्रभावित करती है?
0: नहीं
1: नहीं,
0: वो नहीं करेगी, लेकिन हाँ इसका एक रिस्क रहता है ड्राइनेस का।
1: ड्राइनेस उससे सर क्या दिक्कतें?
0: ड्राइनेस से ये होता है कि एक तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप उसको करे जा रहे हैं काम, तो यदि आप चश्मा लगाते हैं तो एक तो आपके चश्मा का नंबर बढ़ने का चांस रहता है, और आपको आप फ्रेश नहीं फील करेंगे जब नेक्स्ट डे उठेंगे, क्योंकि आपका जो एक टीयर प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी ही कम हो जाती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। एक लिमिटेड टाइम के लिए ही ये सारे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट यूज करने चाहिए।
1: एक समय आपका निर्धारण होना चाहिए बेशकीमती आंखों की देखभाल के लिए। सर एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार
2: जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी पूछिए सर।
2: नमस्कार
0: जी। नमस्कार
2: सर, जैसे आप बता रहे हैं कि वंशागत भी काला मोतिया ग्लूकोमा होता है
0: जी,
2: तो एक केस में हमें जानकारी है कि उनके वंश में तो किसी के नहीं था काला मोतिया, तो ये उस पेशेंट को कैसे काला मोतिया हो गया
0: जी।
2: और दूसरा सवाल मेरा ये है, नवजात बच्चे कई बार ऐसा होता है इनको ऐसी कोई बीमारी होती है कि वो बच्चे उस समय बाद एक्सपायर हो जाते हैं, तो उन बच्चों की भी जो पुतली होती है कितनी कामयाब रहती है, अगर वो पेरेंट्स अगर चाहें तो वो बच्चे की कॉर्निया अपना बच्चे का डोनेट कर सकें। और तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी क्या पहले से ही सफेद मोतिया का इलाज हुआ हो और उसके लेंस चढ़ा हो, तो वो कॉर्निया उस शख्स का कामयाब होता है डोनेट करने के बाद?
0: जी जी, पहले मैं आपका पहला सवाल बताऊंगा, ग्लूकोमा मैंने बताया कि वंशानुगत, लेकिन ये सभी में अप्लाई नहीं होता, कुछ परसेंटेज में होता है, क्योंकि ग्लूकोमा के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। इसमें एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो उसमें ये वंशानुगत वाली बात चलती है, और खासकर जो बच्चों में ग्लूकोमा होते हैं उसमें चलती है, लेकिन जो दूसरे तरह के ग्लूकोमा होते हैं जिन्हें मैक्वायर्ड कहते हैं उसमें ये हेरिडिटी की बात नहीं होती है। दूसरा आपने बताया था कि जो न्यू बॉर्न है और उसको नहीं दिखता है या देख नहीं पा रहा है, तो क्या वो आई डोनेट कर सकता है? जी हाँ कर सकता है, यदि उसका कॉर्निया सही है और उसको जो अंधता है वो कॉर्निया की वजह से नहीं है, उसका कॉर्निया तो ठीक है लेकिन जो दिख नहीं रहा वो मान लो पर्दे की वजह से नहीं दिख रहा, या ऑप्टिक नर्व नस खराब हो गई थी इसकी वजह से नहीं दिख रहा, या और कोई कारण है, तो उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वो डोनेट कर सकता है। तीसरा आपने बताया कि सफेद मोतिया का ऑपरेशन हो गया है, आंख में लेंस डल गए हैं, तो क्या ये व्यक्ति भी डोनेशन कर सकता है? जैसा मैंने पहले बताया, यदि आंख का ऑपरेशन हो गया है तो भी ऐसे व्यक्ति डोनेट कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या दृष्टिहीन माता पिता की संतान को दृष्टिहीन होने का खतरा रहता है?
0: रह सकता है, होता है
1: जी,
0: क्योंकि

0: के जैसे आज हम बात कर रहे हैं, दृष्टिहीन कई कारणों से हो सकता है ना। मोस्टली हम कहते हैं जो रेटिना की प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से दृष्टिहीन होना, या मान लीजिए ऊपर वाले ने आंख ही नहीं बनाई या आंख बहुत ही छोटी बना दी, जब आंख ही नहीं बनी तो उसे दिखेगा क्यों। तो ये डिजीज कई तरह की होती हैं, उसमें से कुछ बच्चों को पास ऑन होती हैं और कुछ नहीं भी होती। लेकिन यदि ये देखा, यदि माता पिता दोनों ही दृष्टिहीन हैं, मान लो उनकी आंखें बनी ही नहीं है, तो एक बहुत चांस रहता है कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक दृष्टिहीन व्यक्ति को कोई नेत्रदान करता है, उसे आंखें मिल जाती हैं, तो क्या वो व्यक्ति मृत्यु के बाद फिर से अपनी आंखें दान कर सकता है?
0: जी, मैंने भी बताया था, एक वाकिफ मेरे ऐसा वाकिया मेरे सामने आया था कि वो व्यक्ति अंधा था, उसको कॉर्निया खराब था, किसी कारण से चोट से डैमेज हो गया और उसने जो है उसको एक आई डोनेशन मिला और प्रत्यारोपण किया गया और उसे दिखने लगा। जिंदगी भर उसने उस डोनेटेड आई से दुनिया देखी और जब वो जाने लगा तो उसने एक आई डोनेशन के लिए फिर से प्लेज ले लिया कि मेरे जाने के बाद अब ये मेरी आंखें जिनसे जिन्होंने मुझे दिखाया ये किसी और को दे दी जाए।
1: जी,
0: दान एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो ये कितना अच्छा विचार है ना।
1: जी,
0: तो उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जिसको एक बार ऑपरेशन हो गया, आई डोनेशन ले लिया, तो उसी डोनेटेड आई को वो फिर से दान कर सकता है।
1: जी जी,
0: कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन।
1: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये था कि गर्भाधारण के समय वो कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चे की दृष्टि पर कोई प्रभाव पड़े या वो बच्चा दृष्टिहीन पैदा हो, ऐसा कुछ है क्या?
0: जी हाँ, अब ये तो जब गर्भधारण होता है तो आपके जो गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिशियन के जो डॉक्टर होते हैं वैसे तो वो बहुत ध्यान रखते हैं, आपके कई तरह के टेस्ट कराते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आपका खाने पीने का, डाइट का, है ना, और इन्फेक्शन ना हो उसका भी ध्यान रखते हैं। तो लेकिन यदि इसमें इन तीन चार चीज़ों में यदि कोई भी कोताही होती है तो उससे बच्चे को असर हो जाता है, खासकर सफ़ेद मोतिया का। तो जन्मजात सफ़ेद मोतिया हो सकता है ना, पहली बात। दूसरा, यदि इन्हीं बीमारियों की वजह से यदि बच्चे के शरीर का विकास नहीं हो रहा पेट में, तो इस तरह से आँख का भी विकास नहीं हो रहा, तो उसकी कारण से भी आँख का डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा और उसमें कई तरह की प्रॉब्लम और अंधता हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारी आँखें जो हैं वो हमारे लिए संसार को देखने का काम करती हैं, जितनी खूबसूरती सुंदरता है जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, और वो हम अपनी आँखों से ही देख सकते हैं, तो हमें ऐसी कौन सी सावधानियाँ अपनानी चाहिए जिनसे हमारी रोशनी जो है उम्र भर बरकरार रहे? हम अपने से ऐसी कौन सी अपना सकते हैं सावधानियां जिससे हमारी जो आंखों की रोशनी है उस पर कोई असर ना?
0: जी उसका एक, जब भी मैं स्टूडियो में आता हूं तो एक मंत्र देके जाता हूं और आज भी दूंगा।
1: हाँ जी,
0: पर लास्ट में दूंगा
1: जी।
0: लेकिन जो ये प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अपनी नजर को कैसे तंदुरुस्त रखे, तो मेरा ये पर्सनल विचार है, देखिए आजकल हम इतने जागरूक हैं, डिजिटल हैं, ये सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। जब बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ने लगे ABCD और उससे भी पहले, जब वो एक साल का है, डेढ़ साल का है ना, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं और उससे बोलें कि जरा चेकअप करके बताइए इसकी नजर ठीक है, तो कम से कम वो ग्रॉसली बोल देगा भाई इसके पांच उंगलियां हैं ठीक है, कॉर्निया ठीक है, रेटिना ठीक है।
1: हाँ।
0: जब वो पढ़ने लिखने लगे तो ABCD पढ़ने लगा तो एक बार फिर से जांच करा लीजिए कि भाई इसको कोई चश्मे की जरूरत तो नहीं है। तो हमारी जो नजर है वो अधिकतर उसका डेवलपमेंट होता है 3 साल की उम्र तक, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है थोड़ा बहुत
1: जी।
0: उस वक्त यदि चश्मे की जरूरत है और आपने नहीं लगाया और बच्चे को पता नहीं चला, क्योंकि उसे तो पास का काम करना है, वो बताता ही नहीं, अपने पढ़ता रहता है, तो चश्मे की जरूरत है या नहीं
1: आईज चेकअप कराना जरूरी है
0: पढ़ा के। और इसी तरह से जो स्कूल्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल समझता हूँ, वहां पे हर एक टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहां पे जो मेडिकल रूम है वो क्लास के हर एक बच्चे का विजन चेक करे
1: जी।
0: और ऐसे बच्चे जिनका विजन नहीं है वो इंश्योर करे कि वो नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले वो पहले चश्मा पहन के आए। चश्मा पहनना कोई गुनाह नहीं है, चश्मा सिंपल सा एक तरीका है कि आपकी नजर 100% लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी, तो पीरियोडिक चेकअप कराना, चश्मे की जरूरत बदलने की जरूरत है उसे बदलना, यही कुछ मुख्य कारण।
1: तो श्रोताओं, आज हमने बात की नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट की, जो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा, और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में उपस्थित थे डॉक्टर ओम प्रकाश, जो डायरेक्टर, प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नेत्र विज्ञान, लेडी हार्डिंग।

0: हाँ जी
1: अहम बिंदु यही है कि नेत्रदान महादान है।
0: जी
1: महादान मतलब
0: बिल्कुल
1: शीर्ष दान,
0: जी,
1: दुनिया में इससे बड़ा दान
0: कोई
1: नहीं।
0: नहीं है
1: दूसरा मैं ये कहता हूं कि सेलिब्रेट योर आइज बिफोर यू सेलिब्रेट योर बर्थडे।
0: जी,
1: इसका मतलब हर एक बर्थडे से पहले
0: पहले
1: हर एक व्यक्ति अपना जाके आंख चेक कराए
0: कराए
1: 7 दिन पहले,
0: जी,
1: उससे आपको बीमारियां नहीं होंगी और सही टाइम पे पकड़ी जाएंगी, खासकर जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है,
0: बीमारी है
1: क्योंकि ये दो मुख्य बीमारियां हैं।
0: जी।
1: दूसरा मैं ये कहूंगा कि सेलिब्रेट योर आईज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब आप जिंदा हैं तब सेलिब्रेट करें बाय पीरियोडिक चेकअप, एंड सेलिब्रेट देम एंड गारंटी दैट दे आर सेलिब्रेटेड इवन आफ्टर डेथ बाय आई डोनेशन। सो
0: जी
1: प्लेज द आई,
0: प्लेजता है
1: सो
0: जी
1: दैट इज माई मैसेज
0: जी
1: दैट सेलिब्रेट बिफोर ड्यूरिंग लाइफ एंड आफ्टर डेथ।
0: इसी के साथ आज का रेडियो डॉक्टर समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपनी दोस्त पूजा को। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। लीजिए प्रस्तुत हैं शाम 4 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से मुलाकात की। भारत ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग और मशीनरी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। सरकार ने आज देश में चिप निर्माण पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। उन्होंने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित भी किया। निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग स्पोर्ट पोत DSV INS निपुण को आज मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने तूतीकोरिन में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 20,800 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का एक नया सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ा। वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 और बीरपुर बैराज के 25 गेट खोले गए। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। और खेलों में अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सेरेम्बन में आयोजित तुआंकू मोहरिच ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। तो ये हैं अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरुसृजन, और आज मैं अकेले नहीं आई हूं। जी हां, मंडे अल्फा जैन, आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ आज कोई खास भी होता है। हमारी यूथ स्पीक, हमारे यूथ गेस्ट आ चुकी हैं स्टूडियो में, और चलिए बिना किसी देरी के आप सभी की मुलाकात इनसे करवाते हैं। हेलो, स्वागत है, हमारे साथ हैं आद्या विश्वकर्मा। आद्या,
2: हेलो मैम, गुड इवनिंग। और इतना अच्छा लग रहा है मेरे को आज स्टूडियो में आके। मैं आद्या विश्वकर्मा और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना स्टूडियो में आके, लाइक मेरे पेरेंट्स मेरे को सुन रहे होंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी।
1: आई एम श्योर आद्या, उन्हें खुशी भी हो रही होगी और वो आप पर बहुत प्राउड भी कर रहे होंगे कि देखो आज रेडियो की धुनों पर, इन सतरंगी धुनों पर से किसकी आवाज़ आई है। आद्या हमारे साथ है अल्फा जैन प्रोग्राम में। आद्या, आपने अपने बारे में बताया, और यहाँ कुछ और अगर आप अपने बारे में ऐड करना चाहती हैं तो जरूर हमारे लिसनर्स इंतजार में हैं, आद्या के बारे में भी जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आद्या आज का आपका क्या टॉपिक है, आज हमारे लिसनर्स से कौन सी दिल की बात आप करने जा रही हैं।
2: मैं वैसे, मेरे बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है, मेरे को सोशलाइज करना बहुत पसंद है। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं स्टूडियो में आई हूँ जिसके लिए, वो है जनरेशन गैप, जो मेरे पापा में, मेरे पापा और उनके दादा में है, और मेरे और मेरे दादू में है। तो ये जनरेशन गैप, और मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें स्टूडियो में बैठे हम दोनों से ज्यादा हमारे लिसनर्स की स्टोरी ज्यादा होंगी आज।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जनरेशन गैप ऐसी चीज है जिसमें हमें कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे घर में है, हमारे डाइनिंग टेबल पर है, व्हाट्सएप चैट्स में है, और कभी कभी हमारी छोटी सी बहस भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से लगभग हर कोई किसी ना किसी साइड पर खड़ा है। कभी हम बच्चे होते हैं और पेरेंट्स हमें नहीं समझते, और कभी ऐसा होता है कि हम खुद के छोटे भाई को बोलते हैं कि यार ये करना क्या चाहता है।
1: जी,
2: तो मेरे हिसाब से जो जनरेशन गैप है वो है दो अलग जनरेशन्स का एक ही चीज को अलग तरीके से देखना। और जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि इतना फोन मत चलाओ, और हमारी जनरेशन सोचती है कि फोन ही तो हमारी पूरी दुनिया है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए शायद फोन एक डिवाइस होगा, लेकिन फोन हम बच्चों के लिए, हम यूथ के लिए एक पूरा ऐसे पढ़ाई है, उसमें हमारा काम है, हमारे दोस्त हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, मैप्स हैं, और कभी कभी तो पूरी जिंदगी हमारी फोन में बस जाती है। इसलिए डिफरेंस होना तो नेचुरल है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने जो दुनिया देखी है वो एक बहुत अलग समय में देखी है, और हमने जो दुनिया देखी है वो अभी हम बहुत एक अलग समय में देख रहे हैं, जिसमें फोन एक हमारी बेसिक नेसेसिटी बन चुका है।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक कह रही हो आद्या तुम। और ये जनरेशन गैप, जैसे अगर हम थोड़ा सा पहले अगर अपने पेरेंट्स की जैसे तुम बात करती हो, या उनके जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हुए, ये सब वो जनरेशन के का हिस्सा रहे हैं 90s या उसके आसपास, जहां उन्होंने मोबाइल नहीं भी देखा और फिर देखा, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं भी देखे और फिर देखा, और उसे जो है कहीं ना कहीं अपना भी लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ करता था। वैल्यूज को लेकर आप बिल्कुल सही कहते हो, ये वाकई जनरेशन गैप है, और इस पर हम आद्या से बात करते रहेंगे और आद्या से जानेंगे कि क्या चीजें ठीक की जा सकती हैं। अगर जनरेशन गैप है भी तो क्या कोई ब्रिज है जिसे कि हमें मिलकर बना लेना चाहिए और हमारी जो फैमिली है वो परफेक्ट हो जाएगी।
2: जी मैम, अब मैंने देखो आप लोगों को बता तो दिया है कि हमारा बेसिकली जनरेशन गैप है क्या, बट इसमें हम मोस्टली जो सवाल उठाते हैं वो है कि डिसएग्रीमेंट को जनरेशन गैप कह देना सही है। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि हर डिसएग्रीमेंट जनरेशन गैप नहीं हो सकता। अगर हमारी माएँ कहती हैं कि आज घर जल्दी आ जाना बेटा, और बच्चा कहता है कि मुझे थोड़ा लेट होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि जनरेशन गैप हो। लेकिन अगर एक दूसरे की बात सुनने को हम लोग तैयार नहीं हैं, तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि जनरेशन गैप से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कम्युनिकेशन गैप। हम बात तो करते हैं, लेकिन हम कभी एक दूसरे की ना सुनना नहीं चाहते।
1: जी,
2: और अब इसी थॉट के साथ और म्यूज़िक के साथ आगे बढ़ते हुए, एक ऐसा गीत जो शायद अलग अलग जनरेशन्स के बीच आज भी एक कनेक्शन बनाता है, तो सुनते हैं हम पापा कहते हैं।
1: जी बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक कहा आद्या आपने कि जो बात करने से ये ब्रिज जो है कंप्लीट हो जाता है अपने दिल की बात कहने से। और डाइनिंग टेबल पर स्पेशली अगर मोबाइल को साइड करके हम अपने आप से अपने अपनों से बात कर ले तो बहुत सब चीजें ठीक हो सकती हैं। तो चलिए अब हम भी देख लेते हैं, एंजॉय करते हैं पापा कहते हैं।

और आज हम बात कर रहे हैं जनरेशन गैप की। मैं हूं आपके साथ यूथ स्पीकर आद्या विश्वकर्मा। तो एक जो बहुत फेमस डायलॉग है जो हम अपने घरों में सुनते हैं वो है हमारे जमाने में। ये सेंटेंस सुनते ही हमें बस ये लग जाता है कि अब तो लेक्चर शुरू ही होने वाला है। हमारे ज़माने में हम सुबह जल्दी उठते थे, हमारे ज़माने में हम घर का खाना खाते थे। और इसी बात को सुन के हमारी जनरेशन सोचती है, ठीक है ना पापा, नोट कर लेते हैं बात को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि हमारे पेरेंट्स जब छोटे थे तब उनके पेरेंट्स भी शायद यही कहते थे कि हमारे ज़माने में। तो ये डायलॉग किसी के लिए भी नया नहीं है, बस हर जनरेशन में जो स्पीकर है ना वो बदल जाता है। और यही सबसे फनी पार्ट है आई गेस। जनरेशन बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, फैशन बदलता है, लेकिन पेरेंट्स की कुछ लाइंस हैं जो कभी नहीं बदलती। जैसे मेरे पेरेंट्स, अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो मुझे बोलते हैं समय पर घर आ जाना बेटा, और कभी कभी तो बोलते हैं कि फ़ोन कम चलाया करो। और मुझे लगता है कि ये हर फैमिली के एवरग्रीन डायलॉग्स हैं। और ये बात, और एक बात और है कि ये जो बात बोली जाती है ना हमारे ज़माने में, इसके पीछे एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। हो सकता है उनका तरीका आज काम ना करे, लेकिन उनकी जो एक्सपीरियंस है उसकी वैल्यू भी तो ख़त्म नहीं होती ना। और दूसरी तरफ जो हम यंग जनरेशन हैं, यहाँ पे भी हमारी बात सुननी होगी, क्योंकि हम जो नई जनरेशन है वो सिर्फ बदलाव नहीं लाती, वो कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी लाती है। और अब मैं एक छोटा सा सवाल अपने लिसनर से पूछना चाहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपके सामने बैठे हैं तो उनसे पूछिए कि आपको मेरे जनरेशन की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है। और फिर एक बार पूछिएगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है इस जनरेशन की जो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आती। मुझे लगता है आज आपको बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलने वाले हैं। इसी थॉट के साथ एक खूबसूरत गीत, थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो जाए, और सुनते हैं आने वाला पल।

0: 20 FM रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, लाइव स्ट्रीमिंग न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप जैसे अन्य कई माध्यमों से भी हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम है अल्फा जेन और हमारे साथ हमारी यूथ गेस्ट है आद्या। आद्या जनरेशन गैप को लेकर बहुत सी पॉजिटिव बातें लेकर आई हैं और कैसे वो ब्रिज क्रिएट करना है उस पर भी आद्या बता रही हैं। और वो कंसर्न्स जिसमें कि हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, जिसके पीछे कहीं कहीं हमारी भलाई भी छुपी है। चलिए आगे इन बातों को करते रहेंगे, सुनेंगे आद्या से इस बारे में बहुत कुछ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर सुनते रहिए रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

वो कि मुझे उसकी सेफ्टी की चिंता है। कभी कभी हमारी माँ भी कहती है कि फोन कम चलाओ। हमें लगता है कि माँ तो मेरी फ्रीडम ही छीन रही है, लेकिन माँ शायद सोच रही है कि मेरा बच्चा पूरा दिन स्क्रीन पर रहता है तो उसकी आंखों पर क्या ही असर पड़ता होगा। यानी एक बात कही जाती है और हम उसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं, और यहीं से जो गैप है ना वो बढ़ता जाता है। अब देखो, गैप भी हम बढ़ा रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन भी तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि अजम्पशंस कम करो और क्वेश्चंस ज़्यादा पूछो। अगर कभी हमारे पापा हमसे कुछ कह रहे हैं तो उनसे तुरंत मत पूछिए कि आप मुझे कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। एक बार उनसे पूछिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। और पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगी कि अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो तुरंत मत कहिए कि बेटा ये टोटली गलत है। पहले पूछिए कि तुम्हें ऐसा क्यों करना है, इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है। क्या पता आपका बच्चा जो आपको जवाब दे उसको सुनकर आपकी सोच बदल जाए। तो अगर हमारा बात करने का तरीका बदल जाए तो शायद आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाए। कई बार हमें सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते, हमें बस ये चाहिए होता है कि कोई हमारी बात ना पूरी सुन ले। और इसी फीलिंग के साथ अगला गीत भी बहुत खूबसूरत बैठता है, सुनते हैं क्या मुझे प्यार है।

स्पीकर आद्य विश्वकर्मा और हम बात कर रहे हैं जनरेशन गैप पर। तो अब जो हमारी यंग जनरेशन है उसकी जो कॉमन कंप्लेन है वो है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते ही नहीं हैं। कभी कभी मेरी भी यही कंप्लेन रहती है। हाँ, कभी कभी पेरेंट्स नहीं समझते, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन कभी कभी हम उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं करते। जैसे हमारे पापा कहते हैं कि इतनी देर तक बाहर मत रहो, और हमें लगने लगता है कि पापा तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। लेकिन हो सकता है कि पापा के माइंड में बस ये

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: FM रेनबो दिल से दिल तक, और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरु सृजन, और मेरे साथ हमारी यूथ स्पीकर है आद्या। आद्या की बातों में मुझे सबसे अच्छी बात जो लग रही है उनमें से एक तो ये है कि आद्या दोनों ही साइड्स को बेटर परफॉर्म कर रही हैं। आद्या ऐसा नहीं कर रही कि भाई मैं तो न्यू जनरेशन हूँ और मैं सिर्फ अपनी जनरेशन का ही साइड लेने वाली हूँ, नहीं, आद्या ने बहुत पॉजिटिवली दोनों ही जनरेशन के थॉट्स को बैलेंस किया है। आद्या बहुत अच्छे से तुम जो है हमारे लिसनर से बात कर रही हो और मैं बहुत एंजॉय भी कर पा रही हूँ तुम्हारी बातों को।
7: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अभी जो कुछ पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या हम पेरेंट्स को भी बदलना पड़ेगा इसमें। तो देखिए, जनरेशन गैप सिर्फ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर दुनिया बदल रही है तो हमारे पेरेंट्स को भी तो थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा ना। आज हमारे करियर बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कम्युनिकेशन बदल रहा है, जबकि रिलेशनशिप को देखने का तरीका भी बदल रहा है। तो सिर्फ ये कहना अच्छा नहीं है कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, ये कोई हर प्रॉब्लम का आंसर नहीं हो सकता।
6: राइट।
7: इसलिए मैं पेरेंट्स से ये नहीं कहूँगी कि अपनी बात छोड़ दीजिए, मैं बस ये कहूँगी कि अपने एक्सपीरियंस दीजिए लेकिन चॉइस की जगह भी दीजिए। बच्चों को रास्ता दिखाइए लेकिन हर कदम उनके लिए मत चलिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही हर डिसीजन लेंगे तो बच्चे अपनी गलतियों से कब सीखेंगे। शायद यही बैलेंस ना बहुत मुश्किल है, मुझे ये लगता है। पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमने उन्हें थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया तो हमारे बच्चे गलत डिसीजन ले सकते हैं
6: जी।
7: और बच्चों को लगता है कि अगर पेरेंट्स ने ज़्यादा रोक दिया तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे। इसलिए बीच का रास्ता जरूरी है। और इसी थॉट के साथ एक और गाना सुनते हैं जिसका नाम है बचपन कहाँ।

अब तक हमने बात करी हमारे पेरेंट्स की कि उन्हें अपडेट रहना होगा, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स की भी है। पर मुझे लगता है कि हम यंग जनरेशन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑनेस्टली हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें समझे, लेकिन कई बार हम उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं करते कि हमें हुआ क्या है। हम चाहते हैं कि वो हमारी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करें, लेकिन जब वो पूछते हैं क्या हुआ तो हम कहते हैं कुछ नहीं, और फिर कहते हैं कि आप लोग मुझे कभी भी नहीं समझते। अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो कम्युनिकेशन में तो रखना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपका डिसीज़न रिस्पेक्ट करें, तो हमें भी उनके कंसर्न्स को रिस्पेक्ट करना होगा। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। फ्रीडम के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, और शायद ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फ्रीडम तो चाहते हैं लेकिन

जब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइन आती है ना, तो हम थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि घर वालों से कुछ भी छुपाओ। अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट्स आप पर पूरा ट्रस्ट करें, तो हम यंग जनरेशन को थोड़ा ट्रस्ट अर्न भी तो करना होगा ना। उन्हें बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कब तक आप वापस आएंगे। इससे कंट्रोल कम और ट्रस्ट ज़्यादा हो सकता है। और हाँ, अगर पेरेंट्स आपको तब भी नहीं जाने दे, तो प्लीज़ लड़ाई शुरू करने से पहले ना उनसे एक बार पूछिए कि क्यों, क्या रीज़न है। और शायद रीज़न जो वो लोग दें, वो उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें। और अगर रीज़न जेन्युइनली अनफेयर लगे, तो कामली अपनी बात रखिए, क्योंकि हर कॉन्वर्जेशन को आर्ग्यूमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है, और फैमिली में तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इसी मूड को थोड़ा सा हल्का करते हुए एक खूबसूरत सा गाना जिसका नाम है साहिबा।

रेनबो सुन रहे हैं आप मेरे सृजन के साथ, और मेरे साथ आद्या भी है, हमारे यूथ स्पीकर 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी दिल से दिल तक। जनरेशन गैप पर आद्या बात कर रही हैं और बहुत पॉजिटिवली, बहुत बैलेंस तरीके से दोनों ही साइड्स उसने जो है आद्या ने बताए हैं हमें। और आद्या या एक और बात भी कहती है कि अपनी बात रखिए, और उस बात को रखने में ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से गुस्से में आके उस बात को रख रहे हैं, अपनी बात को शांति से रखिए। और जो पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं आप उसे सुनिए, समझिए, हो सकता है कि वो बात भी आपको जायज लगे। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं जनरेशन गैप को फिल करने के लिए। आगे भी जरूर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और एक बार फिर आद्या के पास आएंगे हम इस ब्रेक के बाद।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
6: हेलो एवरीवन, और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। मैं हूं आपकी यूथ स्पीकर आद्या विश्वकर्मा, और अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी ने जनरेशन को करीब किया है या दूर, ये तो सबका एक कॉमन क्वेश्चन है। देखो, दोनों किया है। एक तरफ आज वीडियो कॉल की वजह से दूर बैठे ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को रोज़ देख सकते हैं, फैमिली ग्रुप में भी सब कनेक्ट हैं, बर्थडेज पर वीडियो कॉल भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक ही घर में जब चार लोग बैठे हैं और चारों अलग अलग स्क्रीन्स पर हैं, एक टेबल चार फोन्स और कॉन्वर्जेशन जीरो, तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखो, मेरे पास ना एक कंसेप्ट है जिसका नाम है नो फोन टाइम। इसमें हम क्या करते हैं कि शायद दिन के 10-15 मिनट बस हम अपना फ़ोन साइड रखते हैं और सिर्फ बातें करते हैं। ये आप लोग तब कर सकते हैं जब आपके मम्मी पापा ऑफिस से आ जाएं या आप कॉलेज से फ्री हो जाएं, तो आराम से बात कीजिए कि पूछिए कि क्या है, क्या हुआ आज आपके दिन में, कैसा रहा आपका दिन। क्योंकि हमारी जो रियलिटी है वो ये है कि वाईफाई का कनेक्शन जब कमज़ोर हो जाता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन फैमिली का कनेक्शन कब कमज़ोर हो जाता है ये हमें पता भी नहीं चलता, और ज़्यादा परेशान भी नहीं होते। तो टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना बहुत इजी है, लेकिन फ़ोन खुद से हमारे साथ नहीं रहता। हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी देर उसको यूज़ करना है। अगर टेक्नोलॉजी फैमिली को कनेक्ट कर सकती है तो डिसकनेक्ट भी बहुत जल्दी कर सकती है। तो चॉइस हमारी है कि हमें उससे कनेक्ट रहना है कि डिसकनेक्ट रहना है। और इसी फीलिंग के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सॉन्ग जिसका नाम है एक तारा।

अब बात अब करते हैं हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैंने तो आप लोगों का बहुत ही समझा दिया है लगता है। अब मेरा थोड़ा सा मन है कि आप लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करो। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आज आप अपने घर जाइए और किसी एक फैमिली मेम्बर से उनका फ़ोन साइड में रखवाइए और बस उनसे 10 मिनट बात कीजिए। और उनसे 3 सवाल ये ज़रूर पूछिए, और वो 3 सवाल है कि पहला, कि आपकी सबसे अच्छी चाइल्डहुड मेमोरी क्या है? दूसरा, आप मेरी एज के थे तो क्या करना चाहते थे? और तीसरा, आज आपको किस बात की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है? और इस बार उनके आंसर सुनते समय अपना आंसर तैयार मत कीजिए, बस सुनिए, क्योंकि कभी-कभी रिश्ते एडवाइस से नहीं, अटेंशन से ठीक होते हैं। मुझे लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि शायद हमें अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ ऐसी बात पता चलेगी जो हमें आज तक पता ही नहीं थी। हम अपने पेरेंट्स को ना सिर्फ मम्मी और पापा के रोल में देखते हैं, लेकिन वो भी तो कभी हमारी तरह यंग थे। उनके भी कुछ ड्रीम्स थे, उनके भी कोई फ्रेंड्स थे, कुछ फेलियर्स थे उनके भी, और कुछ फियर्स भी तो थे। बस हमने कभी पूछने का ट्राई ही नहीं करा। और इसी थॉट के साथ एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसका नाम है क्यों।

0: सुन रही हैं आप रेनबो, मैं हूँ आपके साथ सृजन, और मेरे साथ हैं आद्या, हमारी यूथ स्पीकर अल्फा जेन में। तो हमने बहुत सी बातें आद्या आपसे जनरेशन गैप को लेके सुनी, और बहुत मज़ा भी आ रहा था और बहुत पॉजिटिव भी लग रहा था। तो क्या कंक्लूड करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए, क्या आज आपका मैसेज रहेगा?
1: मेरा मैसेज बहुत सिंपल सा रहेगा कि जनरेशन गैप जो है ना, सिर्फ उम्र का गैप नहीं है, ये सोच का फर्क है। और मैं नहीं कहती कि सोच का फर्क होना बुरा है। बुरा तब लगता है जब हम डिफरेंस की वजह से एक दूसरे से बात बंद कर दें। इसलिए अगली बार जब भी आपके पापा कहें हमारे जमाने में, तो तुरंत मत कहिए पापा अब वो जमाना नहीं है। एक बार उनसे पूछिए तो, अच्छा पापा आपके जमाने में ऐसा क्या होता था? और जब आपका बच्चा कहे आप नहीं समझेंगे, तो उनसे कहिए कि शायद नहीं समझू बेटा, लेकिन मुझे समझाने की कोशिश तो करो। और बस लिसनर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आज घर जाकर अपने किसी से बस 10 मिनट बात जरूर कीजिए, बिना फोन के, बिना जजमेंट के, सिर्फ बात। क्योंकि कभी कभी जनरेशन गैप कम करने के लिए किसी बड़े सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत होती है। और शायद वो कॉन्वर्जेशन आज से शुरू हो सकती है। तो मैं विदा लेना चाहूँगी, और फिर से मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर मैं फिर से एक बार जेन अल्फा के प्रोग्राम में आऊँ। तो थैंक यू सो मच
0: जी,
1: मैम, थैंक
0: बहुत
1: यू
0: अच्छा
1: सो
0: लगा
1: मच।
0: आद्या, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ आई और इस तरह से हमारे लिसनर्स के सामने आपने अपने थॉट्स बताए, हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिया। थैंक यू सो मच आद्या।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
0: सो ये हमारे साथ थी हमारी यूथ स्पीकर आद्या, जिन्होंने जनरेशन गैप को लेकर बहुत सब क्लियर बातें हमारे लिसनर्स के सामने रखी। मैंने भी एंजॉय किया, आई एम श्योर आप भी आद्या की कई बातों से, लगभग सारी ही बातों से एग्री भी करेंगे। और आद्या ने जो बहुत बेहतरीन सा लास्ट सॉन्ग आपके लिए चुनकर रखा है, उसे प्ले करती हूँ, और साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे अनुमति। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरी सृजन, अगला प्रोग्राम होगा सेटेलाइट्स, प्रस्तुत करेंगी हिना। तो सुनते रहिए रेनबो, दिल से दिल तक। नमस्कार।

5 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग अर्मानिया के प्रधानमंत्री निकोल पेजेशकियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, अर्थव्यवस्था, दवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग और मशीनरी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आज देश में चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली सिमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने तूतीकोरिन में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 20,800 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का एक नया सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और खेलों में अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सेरेम्बन में आयोजित त्वांको मोहेस ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

5:04 हिना मौज का आदाब कबूल कीजिए। सिटी लाइट्स के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हाजिर हूँ। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप हमें, और ये प्रोग्राम दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड हर वो खबर आप तक पहुँचाएगा जो आप सुनना डिजर्व करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। सिटी लाइट्स प्रोग्राम में कहीं मत जाइएगा।

सिटी लाइट्स में हैं आप हिना मौज के साथ। सबसे पहले बात घूमने फिरने के लिए यूं तो इस वक्त हम 2-3 दिन का वक्त भी मुश्किल से निकाल पा रहे हैं। कुछ लोग निकाल देते हैं और कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के हाफ ईयरली जो है वो स्टार्ट होने ही वाले हैं सेप्टेम्बर 1st वीक से। हर स्कूल में हाफ ईयरली की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इस वजह से जो घर के बड़े हैं वो भी अवॉइड कर रहे हैं घूमना फिरना, लेकिन अगर एक आध दिन के लिए बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करवाना है और ख़ुद भी रिलैक्स करना है तो आप जा सकते हैं अमृत उद्यान में। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है ये, और इसे पहले मुगल गार्डन के नाम से हम जानते थे। ये लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पर आप जाकर फूलों की खूबसूरती और उनकी खुशबू दोनों चीज़ों से महसूस हो सकते हैं और जाकर एंजॉय कर सकते हैं वहाँ की खूबसूरती। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है, लेकिन प्रवेश का अंतिम वक्त रहेगा शाम 5 बजे, और मंडे को ये बंद होता है। और मंडे को वैसे भी सब लोग बिजी होते हैं, क्योंकि वर्किंग डे 1st होता है वीक का, तो इसलिए सब लोग

सैटरडे संडे में ही कोशिश करते हैं कहीं घूम आए। इसका प्रवेश जो है वो निःशुल्क है और ऑनलाइन एडवांस बुकिंग पर ही। अगर आप टिकट लें तो बेहतर है, क्योंकि मौके पर टिकट नहीं मिल पाती है और इसकी बुकिंग जो है सुबह 10 बजे बंद हो जाती है। और इसकी प्रवेश के लिए अगर आपको बताएं तो गेट नंबर 35 से आप जा सकते हैं नॉर्थ एवेन्यू रोड पर। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से भी अगर आप चाहें मेट्रो के थ्रू जाना तो वहां से आप कोशिश करके शटल बस मिलती है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां देखने की बात की जाए तो समर एडिशन के ट्रेल में बाल वाटिका, प्लुमेरिया गार्डन और बॉन्ज़ाई गार्डन, इस तरीके के सेंट्रल लोन लॉन गार्डन, बहुत सारी लॉन गार्डन, सर्कुलर गार्डन, इस तरीके के बहुत सारे गार्डन्स वहाँ पे बने हुए हैं जहाँ पर आप जाकर उन गार्डन्स का मज़ा ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं वहाँ की खूबसूरती को। तो जी, इसको स्टार्ट हुए हुए तो काफ़ी दिन हो चुके, क्योंकि 16 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ था हम लोगों के लिए, प्रवेश वहाँ का ओपन हुआ था और 15 सितंबर 2026 तक आप जा सकते हैं, 15 तारीख लास्ट डेट है। तो बनाइए प्लान और एंजॉय कीजिए इस खूबसूरती को जो हमारे ही दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली एनसीआर में हर वो चीज़ मौजूद है जिसको जाकर हम एंजॉय कर सकते हैं, एक आध दिन के लिए, एक आध दो घंटे का भी वक्त निकाल के जा सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए, और ज़िंदगी में यही पल हैं जिनको समेटने की कोशिश हर इंसान करता है। आप भी कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी के ये खूबसूरत पल इन फूलों के साथ समेट सकें।

5:15:35 प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। बात कर रहे हैं हम दिल्ली एनसीआर की और उसमें होने वाली हर उस एक्टिविटी को आप तक पहुंचाने की जो आप डिज़र्व करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। और आज हम बात करेंगे क्योंकि आज 31 अगस्त है और दुनिया भर में इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, ये दिन हमें उन लोगों को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने ड्रग ओवरडोज के वजह से अपनी जान गंवाई और उनके परिवारों के दर्द को समझने और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का भी संदेश देता है, क्योंकि ओवरडोज का अर्थ है किसी दवा या फिर किसी नशीले पदार्थ की इतनी अधिक मात्रा आपके जिस्म में पहुंच जाना कि व्यक्ति के लिए गंभीर रूप से नुकसानदायक या फिर जानलेवा बन जाए। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि ओवरडोज को रोका जा सकता है, सही जानकारी और समय पर मेडिकल मिलने की सूरत में। उपचार और परिवार और समाज अगर इस चीज़ में सहयोग करे तो जानें बचाई जा सकती हैं। इस वर्ष इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे की थीम है 25 ईयर्स ऑन स्टिल नीडेड, यानी 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस विषय पर जागरूकता और सामूहिक प्रयासों की ज़रूरत बनी हुई है। आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि नशे की जो लत है या समस्या है, इससे जूझ रहे व्यक्ति को सिर्फ दोष देना या उससे दूरी बनाने के बजाय उसे समझाना और सही उपचार तक पहुँचाने में मदद करना बेहद ज़रूरी है। नशे की लत एक गंभीर हेल्थ इशू है और इससे बाहर निकलने के लिए मेडिकल चेकअप्स और सामाजिक सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी व्यक्ति में ओवरडोज का संदेह हो, जैसे वो बेहोश हो, सांस लेने में परेशानी हो या उसकी जो कंडीशन है तेज़ी से बिगड़ती हुई दिखे, तो इसे एमरजेंसी सिचुएशन में ही फौरन किसी भी तौर का मेडिकल मिलना बहुत ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड कुछ दवाइयाँ भी हैं जो अगर डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करता है तो वो भी दी जा सकती हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर नशे और ओवरडोज से जुड़ी समस्याओं पर चुप्पी और शर्म के बजाय जागरूकता, संवेदनशीलता, उपचार और सहयोग की बात हो, क्योंकि एक जीवन की कीमत बहुत बड़ी है। सही समय पर सही मदद किसी का भी जीवन बचा सकती है और आज का दिन हमें ये ही सिखाता है कि हमें अपने तौर पर जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करना है। तो बने रहिए सिटी लाइट्स में और बहुत सी बातें हैं जो हम करेंगे। और आकाशवाणी FM रेनबो पर ये प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोग्राम में हिना मौज है आपके साथ। ये एक और प्यारा सा ट्रैक आपके लिए।

0: FM Rainbow 102.6।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: क्या है बबल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ ₹1000 है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

5:36, 26 सेकेंड हिना मौज के साथ बने हुए हैं आप सिटी लाइफ प्रोग्राम में आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों बात मौसम की हो जाए, क्योंकि मौसम से रिलेटेड आपको सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान सुबह से रात तक अपने घर से निकलकर काम को जाता है और सुबह निकलने के बाद शाम को वापस लौटता है, तो उसको पता होना चाहिए ख़ास तौर पर मौसम कैसा रहेगा और ट्रैफिक के क्या हाल हैं दिल्ली NCR में। तो जी आज का मौसम जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला रहेगा। आज बादल घिरने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। मुश्किल है आज बारिश होना, लेकिन तापमान की अगर बात की जाए तो 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है तापमान की। और आज बारिश की संभावना जैसे कि मैंने बताया कम है, हालांकि मौसम में उमस तो बनी हुई है और बनी रहेगी, लेकिन कल से सितंबर जो शुरू हो रहा है, सितंबर की शुरुआत के साथ दिल्ली NCR में फिर से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसलिए घर से निकलते समय मौसम के ताज़ा अपडेट पर नज़र ज़रूर डाल कर निकलें और अपने बैग में छाता ज़रूर रखें ताकि आप भीगने से बच सकें। आजकल बीमारियां बहुत फैली हुई हैं और बारिश के पानी में ज़्यादा कीटाणु पनपते हैं और वो हमें बीमारियां देते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।

तो जी अब बात करते हैं उन लोगों की जो प्रॉपर्टी ख़रीदने में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस वक्त और चाहते हैं कि अपना घर बना लें या फिर अपने लिए कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी भी तौर पे आपने किसी भी तरीके की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या फिर आपने अपने घर के लिए कोई जगह देखनी है या फिर कोई फ्लैट ख़रीदना है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं लेकिन आप जान नहीं पाते क्योंकि ना तो आपके पास वक्त है और ना ही कोई भी इंसान इतना अपने लिए वक्त निकाल पाता है कि वो जगह जगह घूमे जाए और जाकर इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड मालूमात पता करे। और इसके लिए हम कोशिश करते हैं आप तक वो सारी मालूमात पहुंचाने की जो दिल्ली एनसीआर में सरगर्मियां चल रही हैं इससे रिलेटेड। तो जी गुड़गांव प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 जो है वो स्टार्ट होगा और ये आयोजन वाइट कॉलर के माध्यम से किया जा रहा है। ये 5-6 सितंबर, 12-13 सितंबर, 19-20 सितंबर और 26-27 सितंबर 2026 को होने वाला है और इसके लिए समय रहेगा 10 बजे से शाम 7 बजे तक और इसकी एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है। इस एक्सपो में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ क्लब, गोल्फ कोर्स रोड, साउदर्न पेरिफेरल रोड, न्यू गुड़गांव और सोना रोड के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स दिखाए जाने वाले हैं और ख़रीदारों को कीमत, फ्लोर प्लान्स, एमिनिटीज़, पोजेशन टाइमलाइन और पेमेंट प्लान्स भी सब बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे और

एक ही छत के नीचे आप हर तरीके की इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिल्कुल गैदर कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जाएं, जिनको भी ख़रीदारी करनी है और इस तरीके का कोई भी आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि आप चाहते हैं लेना या इन्वेस्ट करना, तो आप ज़रूर जाकर इस एक्सपो का हिस्सा बनें और अपने लिए सही जानकारी इकट्ठा करें। बने रहिए हमारे साथ। आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी वक्त हो चला है 5:55 और 44 सेकेंड, यानी आप सब लोगों को टाटा बाय बाय कहने का वक्त तो आ चला, लेकिन चलते चलते आपको ज़रूर बताएंगे कि आज ट्रैफिक के क्या हाल हैं। शाहदरा फ्लाईओवर की अगर बात की जाए तो अप्सरा बॉर्डर की तरफ जो मरम्मत का कार्य किया जा रहा है उसकी वजह से ट्रैफिक धीमी चल रही है और सुबह से और शाम के जो पीक आवर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जाने आने वालों को यही सलाह दी जाएगी कि थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेकर निकलें ताकि आप टाइम से अपने ऑफिस पहुंच सकें या जहां पे भी आप जा रहे हैं वहां पे आप टाइम से पहुँच जाएँ। दिल्ली गाज़ियाबाद रूट का अगर जिक्र करें तो शाहदरा के साथ साथ वहाँ पर भी थोड़ा ट्रैफिक जैम चल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि कोई और रास्ता आप अगर पकड़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइव ऑफ द डे अभियान भी शुरू किया है दोस्तों, जिसके तहत रोज़ किसी एक जगह पर विशेष ट्रैफिक उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तो बी अलर्ट। गुरुग्राम और नोएडा में आज किसी के लिए भी ट्रैफिक डाइवर्जन की जो ताज़ा जानकारी है वो नहीं उपलब्ध हुई है और मेरे ख्याल से शायद सब कुछ ठीक ही चल रहा है। हालांकि शाम के वक्त पीक आवर्स में NH 48, MG रोड, गोल्फ कोर्स रोड, SPR, DND और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है उस पर क्योंकि ट्रैफिक अमूमन ज़्यादा ही रहता है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर इन वेज पे आपको जाना है तो आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेकर निकलें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक में ना फंसें और टाइमली जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएं। तो जी अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, इसके साथ ही दीपिका आ चुकी हैं अपने आप प्रोग्राम लेकर और इस प्रोग्राम में इनके साथ रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो पर। तो जी टाटा बाय बाय, टेक केयर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर शाम के 6 बज चुके हैं। सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकियान के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। भारत ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग और मशीनरी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने देश में चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली सेमीकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली के नजफगढ़ के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र RHTC की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और खेलों में अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। स्क्वाश में भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सिरेम्बन में आयोजित तुआंकू मुहरिस ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर हाजिर हूँ मैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स में जानते ही हैं आप, बातें होती है जो एक सिरे से, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ और बस फिर बातों का वो जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बातें जब दिल से शुरू होती हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ तक जाती है, क्योंकि तब तो बातें जो है वो बिल्कुल दिल के जरिए होती हैं, दिल के जज्बात बातों के जरिए बयां होते हैं। आज यहाँ पर किस बारे में बात करने का मैंने सोचा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मैं आपको बता दूँ, आप सभी उससे रिलेट कर पाएंगे, बताऊँगी आपको। फिलहाल के लिए इस खूबसूरत से गाने के साथ अरिजीत सिंह की आवाज़ में जो करते हैं आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत, आप थाम लीजिए दीपिका का हाथ और निकल पड़िए इस सफर पर मेरे साथ।

हाँ जी, अरिजीत सिंह की आवाज में इस खूबसूरत से गाने के साथ शो की शुरुआत तो हो चुकी है, तो अब शो आगे बढ़ेगा आपके मैसेजेस के साथ, क्योंकि नाम ही है इस प्रोग्राम का मैसेज मसाला मिक्स, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपकी दोस्त दीपिका के साथ। तो अब मैसेजेस आप भेजना शुरू कर चुके हैं, देख पा रही हूँ मैं, लेकिन लेकिन लेकिन जरा मैं भी तो बता दूं कि किस बारे में बात करने का आज यहाँ पर मैंने सोचा है। तो अगर उस बारे में आपके मैसेजेस आएंगे तो बस फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और एक बहुत ही दिलचस्प सा कॉन्वर्सेशन जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगा। तो देखिए, जिंदगी में मुझे लगता है बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पर हम ध्यान नहीं देते या जिन्हें हम बहुत मामूली सा समझ लेते हैं, पर असल में वो बहुत जरूरी होती हैं। और ऐसी ही एक छोटी सी चीज है थैंक यू बोलना। हम अक्सर बोलते हैं थैंक यू, अक्सर नहीं बोलते। कई बार दिल में तो होता है कि इस इंसान को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से थैंक यू हम नहीं बोलते हैं, या फिर बोलने के बाद भी कई बार लगता है कि नहीं, इसने जितना मेरे लिए किया उसके लिए तो इससे भी बड़ा वाला थैंक यू बनता है। अब जाहिर सी बात है, थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबकी कहानी में बहुत सारे लोग

से होते हैं जिन्होंने यकीनन जिंदगी के उन मुश्किल दौर में हमारा साथ दिया होता है जब शायद हम खुद लड़खड़ाकर गिरने वाले थे, या फिर उस वक्त पर हमारा हाथ थामा होता है जब अगर वो हमारा हाथ नहीं थामते तो शायद हम उस मुश्किल से, उस उलझन से नहीं निकल पाते। तो ऐसे लोगों को शुक्रिया तो कहना बिल्कुल बनता है ना। अब बनता है शुक्रिया कहना तो कह दीजिए। जी हाँ, आज आपको यही करना है कि आपको मुझे बताना है कि कौन है आपकी जिंदगी का वो इंसान जिसे आप थैंक यू कहना चाहते हैं। हो सकता है आपने पहले भी कहा हो, बहुत बार कहा हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, थैंक यू और कहना चाहिए, इनफ नहीं था, या फिर आज यहाँ पर हमारे जरिए आप उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं, तो उनका नाम लिखकर भेजिए, बताइए क्यों कहना चाहते हैं आप उन्हें दिल से शुक्रिया, और बस जुड़ जाइए इस प्रोग्राम में हमारे साथ, मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए। बताइए मुझे कौन है आपकी ज़िंदगी का वो खास इंसान जिसने थामा था आपका हाथ जब कोई नहीं था आपके साथ और जिसे आप दिल से कहना चाहते हैं थैंक यू।

दीपिका के साथ हैं आप, प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और यहाँ हमें शुरू करना है थैंक यू कहने का सिलसिला, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है बताइए आपकी जिंदगी का वो खास इंसान जिसे आप दिल से कहना चाहते हैं थैंक यू। मैसेजेस आने का सिलसिला मेरे पास शुरू हो चुका है। हीरामणि वर्मा का मैसेज आया है मेरे पास भाटापारा छत्तीसगढ़ से। ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी, अपनी लाइफ लाइन श्रीमती भारती वर्मा को थैंक यू कहना चाहता हूँ। उनके मेरी जिंदगी में आने से मेरी दुनिया रोशन हो गई है, गुलजार हो गई है। क्या बात है। देखिए अब एक छोटा सा थैंक यू आपकी जो वाइफ है उनके चेहरे पर स्माइल ले आएगा, बड़ी सी मुस्कुराहट ले आएगा उनके चेहरे पर। बस यही तो होती है ये थैंक यू की खासियत। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज मुझे किन्होंने किया है, अंशी शर्मा ने किया है, हस्तिनापुर मेरठ से। लिख रही है कि आज के टॉपिक में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बात किसी को थैंक यू बोलने की आती है तो मैम मैं तो कई लोगों को थैंक यू बोलूंगी, अपने डैड को एंड अपनी फ्रेंड पूजा आकांक्षा और अपनी दोनों बहनें वर्षा और काजल को थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। बिल्कुल, जो भी लोग बुरे वक्त में हाथ थामे आपका साथ दे उन्हें थैंक यू बोलना, अप्रिशिएट करना, क्योंकि थैंक यू कई बार हमें लगता है बहुत फॉर्मल है, हम अपनों से क्या थैंक यू बोलें, लेकिन नहीं, थैंक यू फॉर्मेलिटी नहीं होती। जब दिल से आप सामने वाले को ये जताते हैं कि वो आपके लिए कितना खास है और उसके एफर्ट्स की आप वैल्यू कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो कोई बड़ी चीज़ आपके लिए करे, कोई बड़ी मुसीबत

मुसीबत में आपका साथ दे तभी आप उसे थैंक यू बोले। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे मोटे जेस्चर, छोटी मोटी बातें भी अप्रिशिएट होनी चाहिए और वो थैंक यू की बिल्कुल हकदार है। अगला मैसेज किसका पहुंचा है मुश्तक? अगला मैसेज मुश्तक पहुंचा है, ये मैसेज मुझे किया है पंकज ने अमरावती महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं, मैम मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरी 12वीं कक्षा में मुझे पढ़ाने वाले सर श्री पीटी माने का, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई में मेरी बहुत हेल्प की थी और वो इंग्लिश और इतिहास मुझे पढ़ाते थे और उन दोनों सब्जेक्ट्स में मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। क्या बात है, देखिए कितनी पुरानी बात यहाँ पर निकल कर आई। और यही जो पुरानी बातें हैं, बातों के तार जब जुड़ते जाते हैं तो बस फिर तो बातें आगे बढ़ती ही जाती है। एक खूबसूरत सा गाना यहाँ और प्ले कर रही हूँ, आप लोग यूं ही मैसेजेस करते रहिए, मैसेजेस जरूर मैं आपके शामिल करूंगी, गाने के उस पार दोबारा जुड़ेंगे।

दीपिका है आपके साथ प्रोग्राम, आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स और मैसेजेस का सिलसिला लगातार जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुँच रहे हैं। अगला मैसेज मुझे किया है, किन्होंने किया है ये मैसेज मुझे, ये मैसेज किया है सरफराज आलम ने जोकीहाट दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से। ये लिख रहे हैं, दीपिका जी एफएम रेनबो के इन सभी पुराने आरजेस को दिल से थैंक यू। कई वर्षों तक आपकी खूबसूरत और मधुर आवाजें सुनी, आज भले ही ये आवाजें सिर्फ यादों में है लेकिन ये हमेशा जुड़ी रहेंगी। आरजे फकरुद्दीन, नरेंद्र जोशी, प्रदीप शर्मा, अयूब खान, श्वेता शर्मा, प्रीति मोहन, सुजाता, दिलीप सिंह, राजेश आहूजा, अंजुमन अली खान, मनीषा दुबे।

श्वेता सिंह, बबीता जैन, आजम शाह, राजश्री त्रिवेदी, चित्रा लालिमा, स्वाति गुप्ता और मुनीष जोली। क्या बात है, देखिए ये तो यहाँ ही आपकी बात के जो तार है वो यही जुड़ गए। बिल्कुल, बहुत सारे हमारे साथी आरजेज हैं जो अब शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ देखिए वो सभी के साथ कितनी खूबसूरती से जुड़े हैं, दिल का रिश्ता कायम किया हुआ है कि आज लोग उन्हें यहाँ पर थैंक यू बोल रहे हैं। अगला मैसेज मुझ तक आया है, ये मैसेज मुझे किया है विजेंद्र ने अकोला महाराष्ट्र से, लिख रहे हैं मैं दीपिका जी प्रमोद को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बुरे वक्त में उन्होंने हमेशा मुझे सहारा दिया है। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, उनको आपने बोल दिया है और आपका थैंक यू उन तक जो है बिल्कुल पहुँच गया है। भुवनेश का मैसेज आया है, अशोक विहार दिल्ली से लिख रहे हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स और अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे सपने को सच करने में और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बहुत गाइड किया है जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। क्या बात है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, कांट से मोहम्मद फुरकान ने ये मैसेज किया है, लिख रहा है मैं बोलना चाहता हूँ जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी तो मेरी भाभी जी ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। वैसे तो मैं काफ़ी बार उनको थैंक्स बोल चुका हूँ, लेकिन आज आपने ये टॉपिक रखा तो मैं घर जाकर एक बार और उनको थैंक्स बोलूँगा और मैं आपका नाम भी लूँगा कि आज हमारे एफएम रेनबो की आरजे दीपिका मैम ने ये टॉपिक रखा था। जी बिल्कुल, शुक्रिया तो कहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये छोटी छोटी बातें, और जब ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा साथ दे, इतना बड़ा सहारा बने, तो उसे शुक्रिया कहने में हर्ज भी क्या है। और यूं भी जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे एफर्ट, छोटे छोटे जेस्चर्स भी अप्रिशिएट होने चाहिए। अगला मैसेज आया है रवि जोशी का, मेरठ से लिख रहे हैं सबसे पहले हमें अपने माता पिता को थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने हमें ये खूबसूरत जिंदगी दी। बिल्कुल बोलना चाहिए, पेरेंट्स के तो हम हमेशा ऋणी रहेंगे, कितना भी थैंक्स उन्हें बोल लें वो हमेशा कम ही रहेगा। एक और मैसेज मुझ तक पहुंचा है, यश शिंदे ने मैसेज किया है मुंबई से, लिख रहे हैं मैं अपनी मम्मी योगिता और पापा प्रकाश जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं स्कूल की पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी मम्मी वह जल्दी उठकर मेरे लिए टिफिन बनाकर देती हैं, पापा भी बहुत मेहनत करते हैं, पापा ने कड़ी मेहनत करके हाल ही में हमारे परिवार के लिए मुंबई में छोटा सा आशियाना खरीदा। अरे वाह, क्या बात है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके मम्मी पापा को छोटे से आशियाने के लिए, क्योंकि अपने घर की जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। और आप अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप ये समझ पा रहे हैं कि कितनी मेहनत मम्मी पापा आपके लिए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये, अभी से आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला मैसेज मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज मुझे किया है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशोर ने रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, लिख रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, हम अपने परम मित्र प्रकाश गोगिया जी को थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि हर समय हमारे किसी भी काम के लिए वो तैयार रहते हैं। तो जी दोस्त तो होते ही हैं, बिल्कुल, दोस्ती का तो मतलब ही यही होता है कि दोस्त एक आवाज़ दे और जो दूसरा दोस्त है वो बिल्कुल आकर उसकी मुश्किल में हाथ थाम ले, या फिर अगर मुश्किल में नहीं भी है, वो दिल की बात शेयर करना चाहता है तो फटाफट कहे कि हाँ मुझे बताओ क्या बात है। चलिए और मैसेजेस शामिल करूँगी, फिलहाल के लिए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय कीजिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। मेरे पास मैसेज आया है नागौर राजस्थान से, मैसेज ये मुझे किया है लूणा राम ने। ये लिख रहे हैं कि मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों और दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू अपने बड़े भाई बुशा राम को बोलना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें प्यार से संवारा है और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। क्या बात है। अगला मैसेज मुझ तक आया है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का। लिख रहे हैं थैंक यू बोलने से तो और नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। गुन्नौर यूपी से इन्होंने मैसेज किया है। जी बिल्कुल, थैंक यू बोलने से सामने वाले को यह एहसास होता है कि उसके एफर्ट्स की आपके दिल में कहीं ना कहीं वैल्यू है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज मुझे किन्होंने किया है, ये मैसेज संदीप कश्यप ने पालम देहली से मुझे किया है। ये लिख रहे हैं मैं अपने मेंटर नितिन जैन को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज से 26 साल पहले जब मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी तब उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और अपनी टीम में काम करने का मौका दिया। थैंक यू तो बहुत ही छोटा शब्द है उनके लिए, क्या बात है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, राजकुमार के संतानी ने अकोला महाराष्ट्र से मैसेज किया है। लिख रहे हैं गुड इवनिंग, आज दीपिका जी आप कैसे हो, कार्यक्रम बहुत अच्छा है, माता पिता गुरु ईश्वर को यहाँ पे ये थैंक यू बोल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ आरजेस के भी नाम हमारे लिखकर भेजे एफएम रेनबो के, आरजे शालिनी, आरजे रेखा, आरजे सुषमा, आरजे राजेश, आरजे आशुतोष, नेहा, गीतिका, पूजा, बबीता, ज्योति, आरजे संतोष, गौतम, प्रियंका, भगवती, हिना, निखिल, विकास, सीमा, माला, ताहिर और खुद मैं।

हम सभी को इन्होंने थैंक यू बोला है, तो चलिए मेरी तरफ से और बाकी सभी जिन भी आरजेस को आपने थैंक यू बोला उन सभी की तरफ से आपको भी थैंक यू और ढेर सारा प्यार कि आपने हमें कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी का इतना ज़रूरी हिस्सा बना रखा है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, मिसेज धर्म भाटिया ने मैसेज किया है रोहतक से, लिख रही हैं, बात पुरानी है, जब मैं 8th क्लास पास की तो पापा ने आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया, बट मेरे जो अपने मामा हैं उनका कहना मानकर उन्होंने मेरा 9th में एडमिशन करा दिया, बाद में हायर एजुकेशन करके ट्रेनिंग भी की, फिर सर्विस भी की, आज पेंशन ले रही हूँ। तो इसके लिए बड़ा वाला थैंक यू ये बोल रही हैं अपने मामा जी को और फिर अपने पापा को, मामा जी को इसीलिए कि उन्होंने कन्विंस किया और पापा को इसीलिए कि उन्होंने बात मान ली। क्या बात है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, ये मैसेज मुझे किन्होंने किया है, ये मैसेज मुझ तक पहुंचा है विशाल छाबड़ा ने मैसेज किया है हरियाणा से, लिख रहे हैं, मैं अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहता हूं जितेंद्र कुमार छाबड़ा को और अपनी मम्मी मिसेस कोमल छाबड़ा को, क्योंकि आज जो भी मैंने हासिल किया है उन्हीं की वजह से किया है, उनके आशीर्वाद और सपोर्ट के लिए खासकर मुश्किल वक्त में मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं इसे कभी रीपे तो नहीं कर सकता लेकिन थैंक यू ज़रूर बोल सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू तो ज़रूर बोलना चाहिए स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि आपने सही किया कहा है कि हम रीपे तो नहीं कर सकते बट हाँ थैंक यू बोलना तो बनता है। तो चलिए आप भी इसी तरह अपने मैसेजेस जो है मुझ तक पहुंचाते रहिए, बताते रहिए किसे बोलना चाहते हैं आप। दिल से शुक्रिया।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम।

0: एम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो, आपकी दोस्त दीपिका के साथ प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो बता दूं, बातें हो रही हैं कि आखिर आपकी जिंदगी में वो कौन सा ऐसा इंसान है या कौन से ऐसे इंसान हैं जिन्हें आप थैंक यू बोलना चाहते हैं। कई बार बोल भी चुके हैं लेकिन लगता है कि इनफ नहीं है, शायद एक बार और कह देना चाहिए, या फिर जिन्हें आप कई वजहों से थैंक यू नहीं कह पाए पर आज मौका मिल रहा है आपको, उन्हें दिल से बोल दीजिए शुक्रिया। तो कौन कौन है वो, किस किस की जिंदगी में, मुझे फटाफट से बताइए। बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं यहाँ पर, बहुत सारे मैसेजेस मैं शामिल भी कर चुकी हूँ। संजय दर्शन का मैसेज आया है मुंबई से, लिख रहे हैं कि मैं चिराग, मनोज, अश्विन, जयंती भाई, दिनेश भाई और बटुक भाई, जो सभी मेरे दोस्त हैं, इन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है और सभी से मेरी पहचान करवाई है। क्या बात है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, कंचन सोनी ने मैसेज किया है, लिख रहे हैं कि टॉपिक तो नहीं पता लेकिन प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। तो चलिए, मैंने टॉपिक बता दिया है और आप भी जल्दी से उस टॉपिक पर यहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज किन्होंने मुझे किया है, ये मैसेज मुझे किया है, किन्होंने किया है ये मैसेज, कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दिल्ली शहर मोरी गेट से इन्होंने मैसेज किया है। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। तो चलिए, आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जिस बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उस बारे में भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगला मैसेज मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ, अनिल शर्मा जी का मैसेज आया है, लिख रहे हैं सरिता विहार से इन्होंने मैसेज किया है, मुश्किल के दौर में कस्टमर केयर ऑफिसर का इन्होंने जिक्र किया है, जिन्होंने कनेक्शन रजिस्टर्ड स्वर्गीय पिताजी के बदले माताजी के नाम करवाया था। उन ऑफिसर का नाम था रितु भाटिया, उन्होंने 2016 में ये मदद की थी, आज मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। क्या बात है, 10 साल पुरानी बात देखिए आपके जहन में है, आपके दिल में है, यानी कि वो बात आपके लिए बहुत मायने रखती है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, देहरादून से आलोक पवार और मिनी ने मैसेज किया है, ये लिख रहे हैं रोजमर्रा के कार्यों में जो भी सहयोग करता है उन्हें धन्यवाद जरूर कहते हैं, कहना चाहिए, ये अच्छे संस्कार की निशानी है। क्या बात है, बिल्कुल कहना चाहिए, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, एक छोटा सा थैंक यू केवल किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता है बल्कि उसको ये एहसास भी दिला सकता है कि आप उसके लिए कितने खास हैं। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, ये लिख रहे हैं सौरा बनेजा, मैं तो भगवान को एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहूंगा। और इन्होंने लिखा है कि आप बताइए आप किसे थैंक यू बोलना चाहती। तो देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह ही सोचती हूँ, कुछ अलग नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी अगर यहाँ आज मुझे भी ये मौका मिला है तो चलिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को। पापा मेरे आज मेरे साथ नहीं है लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे इस सपने में कि मैं RJ बन सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया बचपन में, बचपन से मुझे इस तरफ आगे बढ़ाया, चाहे वो स्टेज फेयर दूर करने की बात हो या फिर छोटे छोटे स्पीच डिबेट कॉम्पिटिशन्स में मेरे लिए स्पीच लिखने की बात हो। और मम्मी तो मेरी आज तक मुझे सपोर्ट कर रही हैं थैंकफुली, बस बहुत कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है। रिपे तो मैं क्या, कोई भी बच्चा नहीं कर सकता दुनिया का, लेकिन हाँ, थैंक यू तो हम ज़रूर यहाँ पर बोल सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस और भी मुझ तक पहुँच रहे हैं, मैं ज़रूर शामिल करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक और खूबसूरत सा ट्रैक आप तक पहुँच रहा है, इसे इन्जॉय कीजिए और दीपिका का हाथ थामे रहिए, अपने इस साथ को मेरे साथ बनाए रखिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ प्रोग्राम में मैसेज मसाला मिक्स। बात हो रही है थैंक यू कहने की। छोटा सा शब्द है बड़ा असर करता है, तो जिन जिन को थैंक यू कहना है किसी को भी वो मुझे लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। जिक्र मैंने छेड़ा है कि कौन है आपकी जिंदगी के वो खास इंसान जिन्हें थैंक यू कहना बनता है। अगला मैसेज जो मैं शामिल कर रही हूँ, ये मैसेज मुझे किया है जिला हापुड़ से। मैसेज आया है आरिफ का, लिख रहा है मेरे मुश्किल वक्त में मेरे दोस्त साथ खड़े रहे हैं हमेशा ही, और थैंक यू कहना से बस फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती और थैंक यू कहने से बस फॉर्मेलिटी पूरी होती है। अगर मुझे मौका मिले कुछ करने का तो थैंक यू नहीं बल्कि उनका साथ दे और खुश रहें। देखिए, साथ देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई दोस्त है, अपना है, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये मानती हूँ थैंक यू कहना, शुक्रिया कहना और दिल से उस इंसान के लिए वो आभार रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगला मैसेज मुझ तक शामिल जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ये मैसेज

किया है। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी ने, आकाश आकाश कुमार ने ये लिख रहे हैं कि अपनी मैम रीता जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि वो हमें पकौड़े खिलाती है, समोसा चाय पिलाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए क्या बात है, छोटी छोटी खुशियां हैं जिंदगी में, बनी रहनी चाहिए। अगला मैसेज मुझ तक पहुंचा है, दीपिका जी सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं। हम तो उस अपने पराए को सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल, अगर कोई हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, क्योंकि आज के वक्त में मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कोई आपके लिए भले ही कुछ करे ना करे पर आपके लिए अच्छा सोच रहा हो, तो उसे भी शुक्रिया तो हम कह ही सकते हैं। नवलू वरक का मैसेज आया है मेरे पास, गोवा से लिख रहा है, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा को क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा किया, इतना कुछ किया, तो बस मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, ये मैसेज मुझे किया है, किन्होंने किया है, अनिल मोहन ने लिख रहे हैं ये, मैं आकाशवाणी दिल्ली युववाणी के उन अधिकारी को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने प्रथम स्वर परीक्षा में ही मुझे उत्तीर्ण किया और मुझे कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर दिया, वो मेरे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सपने के साकार होने जैसा था। क्या बात है, मैं उम्मीद करती हूँ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हों। गुड्डू का मैसेज आया है उज्जैन से, ये लिख रहे हैं, यूँ तो कई लोगों ने मदद की है पर मेरे दोनों भाई मनोहर और दिनेश हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जी चलिए, आपका थैंक यू जो है वो उन तक पहुंच गया है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज मुझे किया है राम नारायण गौर ने, ये मैसेज किया है, लिख रहा है, मैं 2010 में डिप्रेशन में चला गया था लेकिन मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से आज गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसलिए मम्मी पापा और वाइफ शिवानी गौर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है, और डिप्रेशन हो या मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, इससे उबरने में अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, ये मैसेज किन्होंने किया है, ये मैसेज मुझे किया है, जी हाँ, किन्होंने किया है ये मैसेज किया है मुझे प्रेरणा ने, ये लिख रही है कि मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं, चाहे कैसी भी मुश्किल वक्त हो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे सपोर्ट किया है।

दीपिका के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। कंचन सोनी का मैसेज आया है दिल्ली से, लिख रही हैं कि नेपाल में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, जो भी लोग वहां मदद कर रहे हैं उन सभी को दिल से सलाम और शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल सच में जो भी लोग वहां मदद कर रहे हैं उन्हें दिल से सलाम, दिल से थैंक यू, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हालात जो है वो नॉर्मल हो जाए। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, ये मैसेज मुझे किया है, किन्होंने किया है, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का, लिख रहे हैं दीपिका जी आपको शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज जो मैं शामिल कर रही हूँ ये मुझ तक पहुँचा है, सुषमा ने मैसेज किया है दार्जिलिंग से, लिख रही हैं कि मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने सब मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें की और हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, ये मैसेज मुझे किन्होंने किया है, प्रियंका ने ये मैसेज मुझे किया है, ये लिख रहे हैं कि मैं अपने बड़े भाई को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी के मैसेजेस यहाँ पर मैंने शामिल कर लिए होंगे, फिर भी अगर किसी का मैसेज शामिल नहीं हुआ हो तो माफ़ी चाहूँगी मैं उनसे जिनका मैसेज शामिल नहीं हो पाया है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। जी हाँ, अभी वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन 8 बजे से दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी मैं, लेकर आऊँगी प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती, और मेरे साथ थिरकने पर आप हो जाएंगे मजबूर क्योंकि ऐसे ट्रैक्स मैं आपके लिए उस प्रोग्राम में प्ले करूंगी। फिलहाल के लिए अभी दीपिका को इजाजत दीजिए, यहां पर 7 बजे से आप सुनेंगे कंट्री कार्निवल जिसमें आपके साथ होंगे शुभांकर। तो दीपिका को दे दीजिए इजाजत और आप आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ अपने साथ को बनाए रखिए। अगर नहीं कहा है किसी को शुक्रिया तो दिल से कह दीजिए, बता दीजिए उन्हें कि वो आपकी जिंदगी की कहानी में कितने खास हैं और आप इस बात को कितने दिल से महसूस करते हैं। चलिए, इसी के साथ दिस इज आरजे दीपिका साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, दोबारा जुड़ेंगे 8 बजे।

0: That was It's Not Love, But It's Not Bad by Merle Haggard. Tonight our tracks will be in conversation with each other. Stories of love, betrayal, heartbreaks, rage, and everything in between. So rest assured, you're in tonight for huge waves of emotion, and it's going to be definitely a treat for you. Well, it's time for a quick break. We'll be back on Country Carnival.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक टू कंट्री कार्निवल, ओनली ऑन आकाशवाणी वेम्बो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। अप नेक्स्ट वी हैव द ग्रेट ग्लेन कैंपबेल एंड हिज मास्टरपीस ऑफ अ ट्रैक, बाय द टाइम आई गेट टू फीनिक्स।

0: That was Bobby Country with I Will Never Fall in Love Again. Dear listeners, if you're enjoying our program so far, please show some love by sending your messages on our official WhatsApp number 9868107070. That's 9868107070. It's time for a quick break, but don't go anywhere. There's still a lot of country goodness waiting for you on the other side.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: Welcome back to Country Carnival, only on Akashwani Wimba 102.6 MHz. In our last tracks, Cry, Cry, Cry by Johnny Cash and I'll Never Fall in Love Again by Bobby Gentry, we were in the middle of a drama between two lovers. But now the argument is over and what's left behind is that very familiar desperation to get back together. And the track up next perfectly speaks for that desperation. Here's Rockin' Sydney with Jalapena Lena.
5: Here's a bandstand full of foot stomping, hand clapping, Cajun entertainment from down Louisiana way. Here's Rockin'

0: That was Something to Talk About by Bonnie Raitt. We'll be right back after a quick break.
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: Welcome back to Country Carnival, only on Akashvani Wimba 102.6 MHz. Before returning to Country Carnival, dear listeners, we'd like to invite you to our next Western music program, Rainbow Showcase, at 10 p.m., where tonight we'll showcase the genre of grunge rock. So we'll be playing bands like Pearl Jam, Alice in Chains, and more. So stay tuned for our next program, Rainbow Showcase. Back to Country Carnival. Up next, we have the great Canadian country queen, Miss Shania Twain, with her track, You Win My Love.

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर रात के 8 बज चुके हैं। सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाश्कियान के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग और मशीनरी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27

2022 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी में ऊर्जा सहयोग का एक प्रमुख आधार है। सरकार ने देश में चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली सेमीकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली के नजफगढ़ के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र RHTC की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी की है। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग DPL क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त शुरू हो चुका है प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, यानी कि वो ट्रैक्स जो कर देंगे आपको थिरकने पर, झूमने पर मजबूर, और दिन भर की स्ट्रेस से, दिन भर की थकान से जरा सा वो मौका देंगे कि आप रिफ्रेश हो सकें और खुद को जरा सा आराम तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार कर सके, रिफ्रेश हो सके, रिचार्ज हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: हिमालय की गोद से लेकर
10: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
9: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
10: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
9: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
10: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
9: तो सुनना ना भूलें
10: रेनबो डेस्टिनेशंस
9: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
11: आकाशवाणी FM रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और नेक्स्ट ट्रैक बिल्कुल तैयार है आपके लिए, तो एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को यहाँ मेरे साथ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आकाशवाणी FM रेनबो आपके साथ बना हुआ है दीपिका का साथ। वक्त हो रहा है 8:38 और पूरे 42 सेकंड राइट फ्रॉम द स्टूडियो क्लॉक। तो बस थामे रहिए मेरा हाथ और मेरी प्लेलिस्ट बिल्कुल तैयार है। आप यूं ही थिरकते रहिए, झूमते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: आकाशवाणी FM रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ और प्रोग्राम आप इस वक्त यहाँ पर सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। जी हाँ, वो प्रोग्राम जिसमें हम आपके लिए स्पेशली प्ले करते हैं वो गाने जिन्हें सुनकर आप थिरकने पर झूमने पर मजबूर हो जाए। अभी चलिए आने वाले कुछ प्रोग्राम्स की जानकारी आपको यहाँ पर मैं दे देती हूँ। 9 बजे से आपके साथ जुड़ेंगी प्रवीण, लेकर आएंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही। 10 बजे से आपके साथ शुभांकर जुड़ेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम लेकर रेनबो शोकेस, वो यहाँ पर हाजिर होंगे। और 11 बजे से दोबारा प्रवीण आपके साथ होंगे लेकर के प्रोग्राम रंगे महफिल। यानी कि यहां पर FM रेनबो पर बहुत कुछ खास हमेशा की तरह आपके लिए रहने वाला है और रहता ही है। अलग अलग तरीके के प्रोग्राम, जानकारी से भरपूर और खूबसूरत गानों से भरपूर यहां आप तक पहुंचते हैं। तो बस आपको आकाशवाणी FM रेनबो के साथ जुड़े रहना है, आपको कहीं भी नहीं जाना है। फिलहाल के लिए आपको देनी होगी दीपिका को इजाजत। जी हाँ, आपको मुझे इजाजत देनी होगी इस प्रोग्राम में, लेकिन जल्दी ही आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए आप रखिए अपना खूब खूब खूब ख्याल, अपने अपनों का भी खूब ख्याल रखिए। और साथ ही साथ वही कहूंगी जो जाते जाते मैं हर बार कहती हूं कि हम सभी यूं ही हंसते हंसाते, गाते गुनगुनाते, जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते, आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे, क्योंकि यही अपना ठिकाना है हमें और कहां जाना है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 102.6।

लीजिए प्रस्तुत अब तक के एफएम दिन में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग और मशीनरी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी में ऊर्जा सहयोग का एक प्रमुख आधार है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने देश में चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली सेमिकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली पिंक टिकट व्यवस्था को अगले महीने की 17 तारीख तक बढ़ाया। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग DPL क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के 183 रन के लक्ष्य को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 18 ओवर और 2 गेंद में हासिल किया। तो ये थे अब तक के FM रेड में मुख्य समाचार। इंतजार कीजिए अगले प्रोग्राम का।

हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल यूर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया है आपके खास हम खास प्रोग्राम का जिसका नाम है आपकी याद आती रही। और आज आपकी याद आती रही के साथ स्टूडियो में उपस्थित आपका दोस्त होस्ट प्रवीण शर्मा। तो रहिएगा हमारे साथ यादों के इस खूबसूरत सफर में। आइए चलते हैं मिलकर एक साथ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
4: हवा में ढूंढ रही है कोई सदा मुझको, हवा में ढूंढ रही है कोई सदा मुझको, पुकारता है पहाड़ों का सिलसिला मुझको। मैं आसमाओं जमी की हदें मिला देता, कोई सितारा अगर झुक के चूमता मुझको।

0: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक दोस्तों, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों, यादें हमारी जिंदगी की अनमोल धरोहर होती हैं, इसमें कोई शक व शुभा नहीं है। यादों की हमारे जीवन में बहुत बहुत

अहमियत होती है। इन्हीं यादों के झरोखों से झांकने पर हमें अतीत के सुनहरे पल दिखाई देते हैं, जिनमें खोकर हम उन यादों को एक बार फिर से जीने लग जाते हैं, है कि नहीं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

जब भी दिल ने दिल को सता दी, जब भी दिल ने दिल को सता दी, सन्नाटों में आग लगा दी, मिट्टी तेरी पानी तेरा, जैसी चाही शक्ल बना दी। छोटा लगता था अफसाना, मैंने तेरी बात बढ़ा दी, सोचने बैठे जब भी उसको अपनी ही तस्वीर बना दी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, बबुन आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं म्यूजिकली और आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

दिल्ली और एनसीआर के अलावा दोस्तों आप हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मुख्तलिफ जगहों पर सुन रहे हैं। आप इस वक्त आपकी याद आते हैं कि खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ दोस्तों आपके संदेश हमें मिल रहे हैं के बाद एक लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको गीत अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिएगा, आपकी याद आती रही, क्योंकि यादें बड़ी अनमोल होती हैं दोस्तों, जो हमेशा हमारे दिल में रची बसी होती हैं। कभी वक्त मिले तो डूब जाएगा उन यादों में, डूब जाएगा उन बातों में जो कभी आपने किसी से की थी। शायद कुछ वादे थे, कुछ इरादे थे। आइए हम भी खो जाते हैं कुछ वक्त के लिए उन यादों में।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने।

वो फार्म हो या सिटी, सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

मैंने जिस वक्त तुझे पहले पहल देखा था, मैंने जिस वक्त तुझे पहले पहल देखा था, तू जवानी का कोई ख्वाब नजर आई थी। हुस्न का नगमाए जावेद हुई थी मालूम, इश्क का जज्बाए बेताब नजर आई थी।

दोस्तों फिलहाल अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त भी आने वाला है। बिल्कुल अब आपसे लेंगे हम इजाज़त, लेकिन इससे पहले हम सिर्फ इतने ही कहने चाहेंगे, किसी ने क्या खूब कहा है, चिरागों को आंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, जहां वादियों में नए फूल आए हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, जरूर मुलाकात होगी। और फिलहाल प्रवीण शर्मा लेता है आपकी याद आती रे से इजाजत, लेकिन रात 11 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे, प्रोग्राम होगा रंगे महफिल। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। इट्स योर होस्ट शुभांकर, बैक ऑन द हॉट सीट फॉर योर फेवरेट शो ऑफ द वीक, रेनबो शोकेस, वेयर वी टेक अ

0: And that was The Man Who Stole the World by Nirvana. When Nirvana performed this song, the stripped-down performance and Kurt's gentle vocals revealed the side of the band that the world had rarely seen. Today, the live album of this performance is lauded as one of the greatest of all time, becoming the second highest-selling unplugged album just behind Eric Clapton once. It's time for a quick break. You're listening to Rainbow Showcase.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
0: Welcome back to Rainbow Showcase of Grunge Music, only on Akashvani Rainbow 102.6 MHz. Up next, in today's Rainbow Showcase of Grunge Music, here's the final track by the band Nirvana. You guessed it, Smells Like Teen Spirit.

0: That was Jeremy by Pearl Jam. This is an important track, not just in the grunge scene, but in pop culture at large, as it addressed mental health crisis among the youth with no sugarcoating, but straight honesty, which gave voice to an entire generation to speak out and seek help. And that's the power of great music, and that was the power of Pearl Jam. Time for another break, but don't go anywhere. More rock and music waiting for you on the other side.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
0: वेलकम बैक टू रेनबो शोकेस, वेयर टुनाइट वी आर सेलिब्रेटिंग ग्रंज रॉक म्यूजिक। Bringing an end to our grunge music tribute to Pearl Jam, here is their biggest song, Even Flow.

0: That was Rotten Apples by Allison Chain with Lane Staley on vocals, Jerry Cantrell on guitar, Mike Starr on the bass, and Sean Kinney on drums. In the initial days, their roots were firmly in hard rock and heavy metal as they were deeply inspired by Black Sabbath. And you can see the influence of Black Sabbath as well in this particular track. If you heard the song Planet Caravan, so you can see that influence there. But what made them stand apart was the chemistry between Cantrell's riffs, Staley's voice, and those hypnotic harmonies, which you may have felt as well on this particular track. So, time for another short break in this grunge rock music odyssey, but don't touch that dial. More Alice in Chains is waiting for you on the other side.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: वेलकम बैक टू रेनबो शोकेस ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। ड्यूरिंग द मेकिंग of their critically acclaimed EP, Jar of Flies, Alice in Chains took a pivot from their usual heavy rock sound, experimented with acoustic guitars, and the results were an uncompromised melodic grunge arrangement and their first number one hit song on the mainstream rock charts. Here is No Excuses.

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: With that, dear listeners, we have reached the end of our program, Rainbow Showcase. We hope you had a great time indulging with this rocking hour of grunge music tonight. Here's your host, Shubhankar, signing off. We wish you blue skies and golden sunshine all along your way. And here's the last track of the night, Nutshell by Alice in Chains.

ये पेश है अब तक के एफएम रेड में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कीन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वो कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हुआ। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। फुटबॉल में FC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

अब वक्त हो गया है गजलों के खास प्रोग्राम का जिसका नाम है रंगे महफिल। तो रहिएगा हमारे साथ इस खूबसूरत से सफर में आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

0: याद से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों, जब तक हमें हमारा सच्चा प्यार नहीं मिलता, तब तक जाहिर है कि मटकते रहते हैं, दर दर की खाक छानते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक मुसाफिर चलते चलते जब थक जाता है ना, तो एक सहारे की तलाश करता है जहां उसे कुछ पल सुकून के मिल सके। बिल्कुल एक अनजान राही की तरह जो अपनी मंजिल की तलाश में शहरों की खाक छानता फिरता है, दर दर की ठोकरें खाता फिरता है।

सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं। सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं। मैं जन्म जन्म से उसी का हूं, उसे आज तक ये पता नहीं। ये खुदा के देन अजीब है कि उसी का नाम नसीब है। ये खुदा के देन अजीब है कि उसी का नाम नसीब है। जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैंने चाहा मिला नहीं।

आपकी वाणी आकाशवाणी। वेलकम बैक। एक बार पुनः दोस्तों ब्रेक के बाद आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दोस्तों आप इस वक्त रंगे महफिल की खूबसूरत और हसीन महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं खूबसूरत गजलें। तो देते रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत से प्रोग्राम में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दोस्तों, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुनना ना भूलें, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, आकाशवाणी एफ एम रेनबो पर। कहीं में जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और दोस्तों अब फिलहाल आपसे हम रंगे महफिल से लेते हैं इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ अर्ज करना चाहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, आज से मैं अपने गीतों में आतिश पारे भर दूंगा, आज से मैं अपने गीतों में आतिश पारे भर दूंगा, मध्यम नचकीली तानों में जीवन धारे भर दूंगा, जीवन के अंधियारे पथ पर मशाल लेकर निकलूंगा, धरती के फैले आंचल में सुर्ख सितारे भर दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों प्रवीण शर्मा को दीजिए रंगे महफिल से इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम द जीरो आर शो। करते हैं शुरुआत कुछ अच्छे शांत जो रात के लिए बहुत ही मुफीद हैं ऐसे गीतों के साथ।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े पहलू को मजबूत करने पर चर्चा हुई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मौत। फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यू देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिश्केक में शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ भी बातचीत की, नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मौत। फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आय हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

सड़कों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिश्केक में शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन के साथ भी बातचीत की, नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मौत। फुटबॉल में एफसी अंडर-20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेमो चैनल के साथ। समय उछला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

बालों में।

वायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण प्रकृति संरक्षण जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 2 बच्चों सहित करीब 11 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। नेपाल में आई अचानक बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड के उद्घाटन अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई। विदेश मुद्रा बाजार में कल रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले 22 पैसे मजबूत होकर 95.17 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मौत। फुटबॉल में FC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना की जर्सी में उनका 2 दशक लंबा सफर समाप्त हुआ। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेमो चैनल के साथ। यूं ही जुड़े रहिए हमारे अगले प्रोग्राम सारे गामा में और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। प्रातः के 5 बजे है, ये सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से मुलाकात की। चौथा भारत जर्मन पर्यावरण फोरम आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। केंद्रीय पर्यावरण

अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कल हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हादसे में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। नेपाल में बाढ़ से अब तक 900 से अधिक लोगों की मृत्यु, 4,247 से अधिक लोग लापता, उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड के उद्घाटन अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मृत्यु। विदेशी मुद्रा बाजार में कल रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे मजबूत होकर 95.17 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। फुटबॉल में FC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना के साथ उनके 2 दशक लंबे सफर का अंत हुआ। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 MHz पर। प्रातः के 5:03 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुना।

0: आएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।